एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है हिंदी में, सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने

0: ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।
3: वंदन बार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। खुद को जानना ही इस जीवन का सबसे बड़ा अध्यात्म है और यही ज्ञान सारी चिंताओं का एकमात्र समाधान है। और अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं झरोखा के अंतर्गत आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस। इसका भाग 227 आज प्रसारित किया जाएगा। छह 6:45 पर संगीत सरिता, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। इसका भाग 5 आज प्रसारित होगा, जिसे आप पुनः शाम 6:45 पर सुन सकते हैं प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 आप सुनेंगे त्रिवेणी। कार्यक्रम चित्रलोक सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता अमरीश पुरी पर। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पिटारा के अंतर्गत आज सुबह 10 सुनिएगा उजाले उनकी यादों के। रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का भाग 1 आज प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। रंग तरंगे कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11:00। 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी और 1 आप सुनेंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। सखी सहेली दोपहर 3:00, 4:00 आज शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा, जिसमें डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का भाग 1 आज आप सुनेंगे, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। छाया गीत ये आप सुनेंगे शाम 5:00, 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम। संध्या रंजन का

का समय होता है शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे सुनिएगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। सात बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म खिलौना के गीत। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिएगा नाटिका वो आए घर में हमारे। लेखन राजकुमार डाक का है, निर्देशन सत्येंद्र शरद का। कार्यक्रम आपके लिए 9 बजे। रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान का भाग 227।

मुनि याज्ञवल्क ने महाराज जनक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी कि श्रीराम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या तथा अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाया और फिर अपने डेरे वापस लौट आईं। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ पुत्री सीता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने डेरे आईं। उनका तापस वेश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया। पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का स्वागत है। पंडित जी, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से फिल्म संसार से जुड़ते जुड़ते आप अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में और संगीतकार जयदेव जी के कहने पर शास्त्रीय संगीत की ओर फिर मुड़े
2: जी।
1: तो शास्त्रीय संगीत की बात हमें करनी है तो जितने भी समकालीन कलाकार हैं
2: जी,
1: उनमें से कौन से मुख्य कलाकार हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे और उनके बारे में बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को महत्वपूर्ण योगदान दिया है?
2: शास्त्रीय संगीत के एरिना में जब आते हैं हम लोग तो मुझे ये देखने में आता है कि नॉर्थ इंडिया में कम आर्टिस्ट हुए और कम आर्टिस्टों में गिने चुने, जैसे जोग साहब का जिक्र कर चुके हैं, जगजन राव जोशी जी का कर चुके हैं, डी के दातार और एन राजम जी और शिशिर कणादर चौधरी, ये भी लेडी आर्टिस्ट थी और अली अकबर खान साहब की बहुत अच्छी शागिर्द थी, इन्होंने भी अच्छा बजाया। तो समकालीन लोगों में एन राजम जी का वायलिन योगदान बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने हर जगह बजाया। अच्छा, टेक्निकली बात करें तो राजम जी के वायलिन में साउथ की टेक्निक है, क्योंकि साउथ में ये बाजा बहुत पहले पहुंचा हुआ था और उनकी टेक्निक में पूरा साउथ इंडियन कर्नाटक म्यूज़िक की जितनी खूबियाँ हैं वो आती हैं। और जब वो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की शिष्या हुई तो वो नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक उन्होंने सीखा, और बाद में और एक महापुरुष की शिष्या हुई वो जिनका नाम था पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा बनारस वाले, जो बहुत अच्छी ठुमरी दादरा गाते थे, उनके साथ मैंने भी बजाया महादेव मिश्रा साहब के पास। मैंने दो तीन लोगों की संगत की जिसमें महादेव प्रसाद मिश्रा जी, गजानन राव जोशी जी के साथ भी मैंने बजाया इंदौर में, एक रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठाया, और पंडित रामाश्रय झा जी के साथ। तो

0: बनारस। तो बनारस के संगीत को एन राजम जी ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया और ग्रहण करके ठुमरी दादरा भी उन्होंने बहुत अच्छा बजाया।
1: एन राजम जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग की प्रमुख थी,
0: प्रमुख थी,
1: और उन दिनों आप भी इलाहाबाद में पहुंचे थे
0: जी।
1: तो कैसे थे वो दिन, वो रिकॉर्डिंग के लिए जब आकाशवाणी आया करती थी?
0: बड़ा मेमोरेबल टाइम था वो
1: जी। जी
0: एन राजम जी, किशन महाराज, गुदई महाराज, महादेव प्रसाद मिश्रा जी,
1: जी
0: कई सारे, एम आर गौतम, मतलब बहुत सारे म्यूजिशियन थे जो इलाहाबाद से ब्रॉडकास्ट करते थे। अच्छा, राजम जी उन दिनों में, मुझे वायलिन तो उनका पसंद था, इसमें कोई शक की बात नहीं।
1: हाँ।
0: तो वो आती थी और मैं हर एक आर्टिस्ट के प्रोग्राम में मौजूद रहता था व्यक्तिगत रूप से। आजकल ये परंपरा ख़त्म हो गई, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कहीं होता है और आर्टिस्ट बेचारा कहीं रिकॉर्ड कर रहा है। तो एनीवे, ये समय की बात, समय परिवर्तनशील है। तो राजन जी की एक खूबी ये रही कि उन्होंने साउथ इंडियन टेक्निक को नॉर्थ इंडियन म्यूजिक बजाने में बड़ी दक्षता हासिल की, बहुत अच्छा बजाया। अब उनके घर में तो उनके भाई साहब टी एन कृष्णन साहब,
1: हाँ,
0: वो भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, और अभी इनकी बेटियाँ और नातिन वगैरह सब वायलिनिस्ट
1: बजाते हैं।
0: हाँ, बजाती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इनकी कोई रिकॉर्डिंग बजाएं राजम जी की, और इनका वायलिन वादन श्रोताओं को सुनवाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही मौका है पंडित जी। हम विदुषी एन राजम जी का बजाया राग यमन की झलक सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
0: अच्छी बात है।

0: विदुषी एन राजम का बजाया राग यमन की ये झलक आपने सुनी श्रोताओं। पंडित जी लगे हाथों राग यमन की चर्चा कर लेते हैं, इसके आरोह आरोह के बारे में हमें बताइए।
1: देखिए, राग यमन पहला राग है जो स्टूडेंट्स भी सीखते हैं
0: जी,
1: और मास्टर्स भी बजाते हैं। जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी राग यमन को बजाया और इसका कोई था नहीं पाई उन्होंने, और स्टूडेंट्स को भी हम लोग शुरुआत
0: राग से सिखाते हैं जी।
1: तो इसमें वादी संवाद मतलब शुद्ध स्वर के अलावा एक तीव्र मध्यम लगता है, सारे गा मा तीव्र लगता है, और पाधा निशा ये सब शुद्ध स्वर हैं, और वादी संवादी इसके जो हैं गंधार और निषाद हैं, ये दो सुर इसके वादी और संवादी हैं। अब मैं आपको मतलब थोड़ा सा बजा के इसके आरोह अवरोह या इसका एक स्वरूप कोशिश करता हूँ, ठीक है।

ये देखिए निषाद इसकी जो है बड़ा प्राण स्वर है निषाद। तरे ना रे

0: हम लोग केवल आरोह अवरोह से राग का बहुत स्केलेटन मालूम पड़ता है
1: जी,
0: स्केलेटन में और एक शक्ल में पूरे व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। आप और मैं बैठे हैं, हड्डियों का ढांचा अंदर है हमारे, लेकिन हम हड्डियों के ढांचे से नहीं पहचाने जाते हैं
1: जी।
0: हम अपनी अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं। तो राग एमन की शक्ल

0: इस राग की शक्ल बनती है।
1: वाह।
0: तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को ज्यादा आप इंतजार मत कराइए।
1: जी जी। और इस शक्ल को और थोड़ा साफ दिखाई दे इसके लिए
0: देखिए, थोड़ा सा बजा के बताता हूँ।
1: जी हाँ।

0: वाह पंडित जी, इस राग पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत याद आ रहा है।
1: कौन सा?
0: जिया ले गयो जी मोरा सावरिया।
1: अरे बहुत अच्छा गीत है
0: जी, लता जी की आवाज है
1: बिल्कुल।
0: और ये राजा मेहदेली खां का लिखा गाना है, संगीतकार इसके हैं मदन मोहन साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आइए सुनते हैं।

0: राग यमन पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं, लता जी की आवाज में संगीतकार मदन मोहन।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

0: कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है शंकर जयकिशन के संगीत से। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, गाया लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम हलाकू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी ये गीत आपने सुना लाला रुख इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, कैफी आज़मी का लिखा गीत था और खय्याम का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अदल ए जहांगीर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। कमर जलाल आबादी का लिखा गीत था, हुस्न लाल भगत का संगीत। श्रोताओं, अब कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में एक बार फिर से स्वागत है। इस अंतराल के पहले आपने गीत सुना अदले जहांगीर फिल्म से, हुस्नलाल भगतराम के संगीत से सजा ये गीत था। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत।

0: रानी रूपमती इस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे थे भरत व्यास ने और एस एन त्रिपाठी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

जन्म जन्म के फेरे इस फिल्म का गीत शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने सुना। भरत व्यास ने इस गीत की रचना की थी एस एन त्रिपाठी की बनाई धुन पर।

ये आवाज़ थी गीता दत्त की फिल्म फैशन से। ये गीत था भरत व्यास रचनाकार और गीतकार भरत व्यास और संगीतकार हेमंत कुमार थे।

भाभी फिल्म से ये गीत था। आशा भोसले ने आवाज़ इस गीत को दी। तन्वीर नकवी की रचना थी और तर्ज बनाई थी चित्रगुप्त ने, और इसी गीत के साथ

0: कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं संपन्न हुआ।
1: भूले बिस्तरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती से, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार की।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। मस्ताना फिल्म का गीत है, रचनाकार आनंद बख्शी है, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
4: जब जब हम तुमको देखे हैं रे छेला, मन मोर

ऐसा काहे को होवत है रे लैला, ऐसा काहे को होवत है रे लैला, मन मोर

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: अब आपको सुनवाते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा ये गीत। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है। फिल्म का नाम है गीत। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: सच्चाई फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफीक की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।
3: Hey girls, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
7: इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
8: और ये
9: मेरी गुड़िया के नाम।
10: पर दादी, आपके नाम?
11: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या?
11: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम जोली इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में धरती फिल्म का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर।

0: धरती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है।
1: FM बैंड 101.3

9 मेगाहर्ट्ज पर यह विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में रिले होंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वही स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार।

0: पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ में 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्धविराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया। ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है सीमा।

0: पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
3: भारत आज अपने पूरे maritime ecosystem को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
3: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉर मेकिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ योग 2026 अ ग्लोबल सेलिब्रेशन। द प्राइम मिनिस्टर सेड इट इज एनकरेजिंग टू सी योग ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ अक्रॉस नेशंस इन द शेयर्ड परस्यूट ऑफ वेलनेस एंड गुड हेल्थ। He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base, and relatively low human disturbance. More from our correspondent.
4: President Draupadi Murmu went on a safari at Kuno National Park this morning. The president

0: सुबह की शुरुआत हो गई है और वो कार्यक्रम लेकर हम हाजिर रह गए हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम जिसमें फिल्मी तराने होते हैं, कई बातें हम आपके साथ में साझा करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका अपना रेडियो दोस्त शमील,
1: और मैं हूं मीनाक्षी। तो स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन, नमस्कार। और देखो शमील, आज है फिट लाइफ मंडे।
0: बिल्कुल।
1: तो टुडेज ग्लैंस में आज प्रमुख स्थानीय खबरों के साथ साथ अपडेट देंगे फीफा वर्ल्ड कप की और महिला T20 विश्व कप की। साथ ही स्वस्थ आदतों के अंतर्गत जानेंगे पर्याप्त नींद कैसे है स्वास्थ्य की कुंजी।
0: बिल्कुल सही बात है। बात करें आगे तो हम सिटी अपडेट्स यानी शहर की हलचल के बारे में जानकारी देंगे, को वर्किंग स्पेस और उद्यमिता इस बारे में जानकारी अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। साथ ही श्रोता संवाद लिसनर कनेक्ट ये कार्यक्रम जिसमें आपकी सहभागिता हमारे साथ रहती है, तो आप इसमें हमें अपने संदेश भेज सकते हैं। अगर हमारे फ़ोन नंबर की बात करें तो 9462697568, 9462697568 इन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप संदेश कर सकते हैं।

0: बिल्कुल, जब हम मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, तो बातें तो होती हैं शमील, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और कार्यक्रम होता ही इतने विविध रंग लेकर आया हुआ है कि सोचते हमारे श्रोता भी कि आज क्या खास रहेगा। और इसी की अपडेट हम हमारे श्रोताओं को पहले, एक दिन पहले भी देते रहते हैं, शाम से बता देते हैं कि आज यानी अगले दिन नमस्कार उदयपुर में क्या कुछ होने वाला है। तो वैसे अगर कल के दिन की बात करें शमील, तो कल का बड़ा हलचल भरा दिन रहा, रविवार रहा कहें तो, क्योंकि देखो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपूर्ण भारतवर्ष में स्वास्थ्य के प्रति अपने संकल्प को याद किया गया। जहां विश्व भर में लोगों ने योग किया, वहीं झीलों की नगरी भी ध्यान और योग में लीन नजर आई। जिला स्तरीय समारोह हुआ आयोजित महाराणा भोपाल स्टेडियम यानी गांधी ग्राउंड में, जहां हजारों लोगों ने एक साथ कई योग मुद्राओं को साधा। कई गणमान्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आमजन उपस्थित हुए। फतेह सागर पाल पर भी योग के रंग में नजर आई ये पाल। सुबह की ठंडी हवा, झील की लहरों और प्राणायाम का अलौकिक संगम देखने को मिला। शहर के कई बाग बगीचे सेहत की मुस्कान से खिले नजर आए। स्कूल कॉलेज में भी योग प्राणायाम के महत्व को समझाया गया। साथ ही रविवार होने के बाद भी विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संगठनों में, कोर्ट हॉस्पिटल्स में कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया और नियमित योग आसनों के अभ्यास का संकल्प लिया। साथ ही संगीत प्रेमियों ने संगीत दिवस, क्योंकि ये भी था संगीत दिवस, उसको भी उमंग के साथ मनाया। वहीं छोटे बड़े सभी बच्चों ने फादर्स डे सेलिब्रेट कर पिता के साथ रिश्तों को और मजबूत किया और खूबसूरत पलों को यादगार बनाया। वहीं शहर के 29 केंद्रों पर री नीट परीक्षा कड़ी सुरक्षा और सख्ती के बीच संपन्न कराई गई।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, ये बात की हमने कल पे, कल के हमारे मुख्य जो कार्यक्रम थी, जो खबर थी, उनके बारे में हमने श्रोताओं को जानकारी दी। बात करें आज की, तो कई बार बिजली जहाँ कटौती होती है, जब उसकी पूर्व सूचना मिल जाती है, तो हमारे जो जरूरी काम होते हैं वो हम उसे समय से पहले कर लेते हैं ताकि परेशानी से बच सकें। तो हम बिजली कटौती की जानकारी अपने श्रोताओं को देते हैं कि आज किन क्षेत्रों में कटौती होने वाली है और लगभग 7 घंटे की बिजली कटौती रहेगी।
0: बहुत बड़ा टाइम है।
1: बिल्कुल, सुबह 10 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। जिन क्षेत्रों में रहेगी उनकी बात करते हैं। उदय विहार, रिको कॉलोनी, आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी के सामने की कॉलोनी, सूर्यनगर, अरिहंत विहार, पुरोहितों की मादरी, कालाभाटा, लक्ष्मी नगर, परमात्मा विहार, कल्याण विहार, रूपश्री नगर और संबंधित क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक। UIT कॉलोनी, राजस्थान विद्यापीठ, चंद्रा कॉलोनी, मीरा नगर, कृष्णा विहार, रेबाड़े का गुड़ा, रकमपुरा, ओड़ बस्ती, स्वास्तिक नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुखेर रोड, शमशान रोड, संबंधित क्षेत्रों में भी सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
0: देखो, बिजली बंद रहेगी और मौसम जो है वो बिल्कुल गर्मी का हो रहा है, उमस बढ़ रही है और तापमान भी बढ़ रहा है। कल भी जो है अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। रात में भी गर्मी ने बेहाल किया और आने वाले 2-3 दिनों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वैसे प्री मानसून के असर देखने को मिलेगा क्योंकि आसमान में छुटपुट बादल छाए रहेंगे। लेकिन एक बात कहें कि मानसून की दस्तक से पहले जल भराव, बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए

0: हमारा प्रशासन और संबंधित विभाग जो है वो अभी से मुस्तैद हो गए हैं शमील।
1: बिल्कुल सही बात है। और
0: सभी आधुनिक संसाधनों को तैयार कर लिया गया है। 21 ट्रेंड वॉलंटियर्स की विशेष टीम रेडी की गई है। रक्षक उपकरणों का मॉक ड्रिल के माध्यम से परीक्षण भी कर लिया गया है और क्विक रिस्पांस जो टीम बनाई गई है 24 घंटे सक्रिय रहेगी, जिसमें कुशल गोताखोर भी शामिल हैं।
1: बिल्कुल, ये खबर आपने दी और हम एक और खबर अपने श्रोताओं के साथ साझा करते हैं कि पीएम श्री स्कूल भर्ती के बारे में जो जानकारी है वो हम अपने श्रोताओं को बता रहे हैं। वंचित शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है क्योंकि अब ईमेल से वे अपना दस्तावेज भेज सकेंगे। राज्य के पीएम स्कूल में चयन के लिए चल रही साक्षात्कार प्रक्रिया के बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वंचित अभ्यर्थियों के लिए एक राहत का काम किया है। तकनीकी और अन्य कारणों से जो पात्र कार्मिक समय पर दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे वे अब ईमेल आईडी पर इन्हें भेज सकते हैं और जिन्होंने 16 जून की शाम 5 बजे तक पहले से अपने दस्तावेज जमा कर दिए उन्हें दोबारा ईमेल करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ईमेल किस पे करना है उसकी जानकारी आपको मिल सकती है। एक जानकारी हम आपको देते हैं कि प्राचार्य, प्रिंसिपल और उपप्राचार्य के लिए pmshreeinterview@gmail.com पर आप दे सकते हैं और बाकी और भी जानकारी आपको मिल सकती है pmscsection@gmail.com पर। प्राध्यापक, लेक्चर, विभिन्न विषय के लिए अपनी जो है दस्तावेज भेज सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 और समकक्ष संबंधित संयुक्त निदेशालय कार्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित ईमेल आईडी पर अपने दस्तावेज भेज सकते हैं।
0: तो ये हो गई आज की खास जानकारियां, प्रमुख खबरें। तो एक गीत और फिर हम खेल जगत की तरफ चलेंगे।

0: वैसे नींद चुराने की बात करें ना शमील, तो अभी तो फीफा वर्ल्ड कप ने नींद उड़ा रखी है युवाओं की।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: क्योंकि जो फुटबॉल प्रेमी है ना, क्योंकि इसके टाइमिंग्स ही मैच के ऐसे हैं तो वो तो बिना देखे रह ही नहीं पाते।
1: बिल्कुल सही बात है, जो खेल प्रेमी हैं उन्हें खेल बेहद पसंद आता है, और रोमांचक खेल जब होते हैं तब तो वो और भी इसे ज़्यादा पसंद करते हैं।
0: और अभी कल के मैचेस और आज के मैचेस की बात करें तो ग्रुप एच का जो मैच रात को 9:30 पर खेला गया था स्पेन और सऊदी अरेबिया के बीच अटलांटा के ग्राउंड पर, तो उसमें सऊदी अरेबिया की टीम कोई गोल नहीं कर पाई और स्पेन 4-0 से मैच जीत गई। उसके बाद ग्रुप जी का मैच सुबह हुआ 12:30 पर बेल्जियम और ईरान के बीच इंगलवुड के ग्राउंड पर, कोई भी टीम गोल करने में नाकाम रही और स्कोर 0-0 रहा दोनों ही टीम्स का। ग्रुप एच का 3:30 पर जो मैच हुआ उरुग्वे और केप वर्दे के बीच मायामी गार्डन्स में, और दोनों ही टीम्स ने 2-2 गोल किए और बराबरी पर रहा मैच। ग्रुप जी का 6:30 पर जो अभी मैच थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है न्यूजीलैंड और इजिप्ट के बीच, तो इजिप्ट ने जीत दर्ज की है, 3 गोल किए हैं, न्यूजीलैंड एक ही कर पाई। ये मैच वैंकूवर में हुआ था। और आज ग्रुप जे का रात को 10:30 पर मैच होगा अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, ये बात अभी हम कर रहे हैं खेलों की, और जहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप की हम बात की तो वहीं पर अब हम लोग महिला T20 वर्ल्ड कप की भी बात कर लेते हैं। कल मैच खेला गया महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, और यहाँ पे इस वीमेंस वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका 6 विकेट से जीत गया। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को कल के मुकाबले में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सबसे ज़्यादा 31 रन 15 गेंदों में बनाए। वहीं पर साउथ अफ्रीका की पारी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 162 रन बनाकर जीत हासिल कर ली, और मारिजन केप ने तूफानी 81 रन बनाए मात्र 45 गेंदों में। साथ ही मारिजन केप ने 2 विकेट भी हासिल किए, इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।
0: तो ये थी खबरें खेल जगत की।

0: तो मीनाक्षी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हेल्दी हैबिट्स की बात करते हैं, स्वस्थ आदतें। और आज हम बात करेंगे, पर्याप्त नींद स्वस्थ जीवन की कुंजी है। ये जो लाइन है अपने आप में बहुत गहरी और बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्याप्त नींद वास्तव में एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की असली कुंजी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर रात 7 से 9 घंटे की गहरी और बिना रुकावट वाली नींद बहुत ज़रूरी होती है। यह शरीर की ऊर्जा को रिचार्ज करती है और कई गंभीर बीमारियों को बचाती है। मीनाक्षी, हम आपको बता दें, अपने श्रोताओं को बता दें कि अच्छी नींद मानसिक शांति और एकाग्रता यानी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सोते समय हमारा मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है, जिससे याददाश्त तेज़ होती है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अगर आप कम सोते हैं तो उससे चिड़चिड़ापन और अवसाद का खतरा बढ़ जाता है। जब आप सोते हैं तो शरीर साइटोकिन्स नामक प्रोटीन बनाता है, जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। पर्याप्त नींद लेने से आप जल्दी बीमार नहीं होते, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
1: बिल्कुल, और नींद की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित 7 से 8 घंटे सोने से जो हार्ट डिजीज है और स्ट्रोक का खतरा है वो काफी हद तक कम हो जाता है। शमील, यानी हेल्दी हार्ट के लिए पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। नींद हमारे शरीर में भूख बढ़ाने वाले और घटाने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। जब नींद पूरी नहीं होती तो अनहेल्दी चीजें खाने की इच्छा होती है, लगातार खाते रहते हैं, मोटापा बढ़ता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और नींद जो है वेट को, यानी कह सकते हैं कि मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। गहरी नींद के दौरान शरीर की कोशिकाएं, मांसपेशियां खुद की मरम्मत करती हैं और नई ऊर्जा का निर्माण करती हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप बंद कर देना चाहिए। इसमें मौजूद नीली रोशनी आपकी नींद के हार्मोन को रोकती है, नींद में परेशानी होने लग जाती है। शाम के वक्त कोशिश करें चाय कॉफी पीने से आप बचें और नशे से भी आपको दूर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, जो मोबाइल की बात आपने कही ना शमील, तो मोबाइल आजकल ऐसा हो गया है कि जब रील्स देखने बैठते हैं तो वो पता ही नहीं चलता कहाँ घंटों गुजर जाते हैं। तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो और अच्छी नींद के लिए आरामदायक लाइट मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। और वैसे संगीत थेरेपी की बात करें ना, तो इतनी प्राचीन है कि कई जो है समस्याओं का समाधान संगीत ही कर देता है। और हम बचपन से भी देखते सुनते आते हैं ना कि जब बच्चे को सुलाने की कोशिश की जाती है तो माँ जो है मीठी सी लोरी गाती है, तो वो एक संगीत थेरेपी ही है अच्छी नींद के लिए। और कमरे का तापमान नमी को नियंत्रित रखें। मौसम भी बदल रहा है और अब आगे बारिश का दौर भी आएगा, तो बारिश में उमस बढ़ जाती है, जिससे बेचैनी होती है। कमरे में सही वेंटिलेशन इसके लिए ज़रूरी है। यदि आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो तापमान को 22 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें, जो गहरी नींद के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और सोने से 2-3 घंटे पहले हल्का सुपाच्य भोजन खाएं, रात के समय भारी या मसालेदार खाना खाने से बचें।
0: बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी। हम ये भी अपने श्रोताओं को बता दें कि हर दिन कोशिश करें एक निश्चित समय पर आप सोएं और निश्चित समय पर उठने की आदत डाल दें। बारिश में बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ने की आदत डालें, कोई किताब पढ़ें या कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ें जिससे आपको कोई ना कोई लाभ हो। हल्की सी स्ट्रेचिंग करें और गुनगुने पानी से नहाना आपको गहरी नींद में आसानी देती है। साथ ही बारिश के मौसम में कई बार कीट पतंगे हो जाते हैं और मच्छर भी आपको कई बार साधारण दिनों में परेशान करते हैं, तो वो आपको नुकसान ना पहुंचाएं, इसके लिए भी आप मच्छरदानी और अन्य उपाय ज़रूर कर सकते हैं।
1: और शमील, मालिश भी ये बहुत आराम पहुंचाती है। पैर में या तलवों पर जब हल्की मालिश की जाए ना सोने से पहले, तो वो भी अच्छी नींद दिलाती है। सोते समय सूती ढीले कपड़े पहने, इंसेक्ट से बचाव करने के लिए फुल आस्तीन के कपड़े, पायजामा इनको चुने और बेडशीट भी सूती ही बिछाएं। तो ये सारे उपाय करेंगे तो आपकी नींद भी पूरी होगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। और देखो, हम गीत प्ले करना चाहते थे लेकिन जो समय है वो तो कह रहा है कि हमें तो जयपुर अजमेर केंद्र चलना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, हम जुड़ते हैं जयपुर अजमेर केंद्र से, जहां से हम आपको सुनवाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। और 9:10 पर हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर के शेष भाग के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाई माधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े सुरक्षित उपायों के मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल उदयपुर की महत्वाकांक्षी देवास 3 और 4 पेयजल परियोजनाओं का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन बांधों के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के सभी काम उच्च गुणवत्ता और पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से उदयपुर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों की वर्तमान तथा भविष्य की पेयजल आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बांध, टनल निर्माण और पुनर्वास से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि राजस्थान का डेयरी क्षेत्र बेहद मजबूत है और इस पर गुजरात डेयरी या अन्य किसी बाहरी का हस्तक्षेप का कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: हमारा डेयरी सेक्टर इतना मजबूत है कि यहाँ पर उन नियमों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा गांव-गांव तक, हर किसान तक हमारा डेयरी सेक्टर फैला हुआ है। हम किसानों को फैट के आधार पर, दूध पालकों को फैट के आधार पर तो पैसा देते हैं, लेकिन 5 रुपए सरकार की तरफ से पर लीटर उनको अनुदान भी देते हैं। इसलिए जो लोग, जो किसान, जो पशुपालक हमारी डेयरी से जुड़े हुए, निश्चित रूप से वो हमारी डेयरी से जुड़े रहेंगे। उनके नियमों से हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
0: रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां देने के बजट घोषणा पर तेजी से अमल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर जिले को विकास की 2 बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने 42.80 करोड़ रुपए की लागत से कल नटनी का 12 से जैसमन बांध नहर को पक्की करने के काम का शिलान्यास किया। साथ ही 3.34 करोड़ रुपए से निर्मित भाखेड़ा एनिकेट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र का भूजल स्तर रिचार्ज होगा, जिससे वन्य जीवों, किसानों और आमजन की पानी की जरूरतें पूरी होंगी। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इन सभी महिलाओं की शनिवार को सिजेरियन डिलीवरी कराई गई थी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होने लगी, जिसके बाद उनका उपचार शुरू किया गया।
2: पावटा अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कुलबीर चोपड़ा ने बताया कि शनिवार को अस्पताल में 8 सिजेरियन ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के बाद भी सभी का ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होने लगा। इनमें से 2 महिलाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल में रेफर

0: किया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। दोनों मरीजों की किडनी भी प्रभावित हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। सवाईमाधोपुर में आज से राज्य स्तरीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान वन विभाग की ओर से हो रहे दो दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य CSR के माध्यम से वन और वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री होंगे। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता।
2: राजस्थान वन विभाग द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के माध्यम से वन और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज से राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में विभिन्न कॉरपोरेट संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग समूहों, गैर सरकारी संगठनों, वन अधिकारियों, संरक्षण विशेषज्ञों तथा नीति निर्माताओं की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र के मध्य प्रभावी साझेदारी स्थापित कर वन और वन्य जीवों का संरक्षण प्रभावी बनाना है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में राजस्थान की पहली सफेद बाघ सफारी शुरू हो गई है। यहां सफेद बाघ भीम और सुनहरी बाघिन सस्कंधी को टाइगर सफारी क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। रविवार को पर्यटकों ने सफारी के दौरान इन दोनों बाघों को नजदीक से देखा। इससे पहले ये बाघ केवल जैविक उद्यान क्षेत्र में रखे गए थे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो JRF सहायक प्रोफेसर पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। NTA ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। नीट UG पुनर्परीक्षा कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेशों के 14 केंद्रों पर कुल 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नीट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में भी रविवार को नीट UG की पुनः परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राज्य में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कल सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान फलोदी में दर्ज किया गया। आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में 25 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। इस बीच विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खुले में रखी तैयार फसलों और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाईमाधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तो बिल्कुल ब्रेक के बाद फिर से आपसे मुलाकात का वक्त हो गया है। 9:10 हो रहे हैं। कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर के शेष भक्त के साथ मैं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त शमील मेरे साथ है
1: मीनाक्षी। और देखो एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को शमील याद दिला देते हैं कि आज दिन है लिसनर्स कनेक्ट का। तो कार्यक्रम आधारित संदेश हम शामिल करेंगे जिसमें हमारे सभी श्रोताओं की सहभागिता होगी। नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं 9462697568। तो कार्यक्रम से संबंधित संदेश आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।

0: तो शमील, अब समय है रात के अंधेरे से निकलकर हम सुबह के उजाले में आ जाते हैं और अब जो है शहर की हलचल की ओर चलते हैं। और अब हम कोवर्किंग स्पेस और उद्यमिता की बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही आधुनिक व्यापार जगत के प्रमुख स्तंभ हैं। कोवर्किंग स्पेस एक कॉमन कार्यस्थल है, वहीं उद्यमिता व्यावसायिक अवसरों को पहचान कर जोखिम उठाने और नया उद्यम शुरू करने की प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा मीनाक्षी, कोवर्किंग स्पेस एक ऐसा साझा ऑफिस होता है जहां पर अलग अलग कंपनियों के लोग, फ्रीलांसर, स्टार्टअप और रिमोट वर्कर एक ही छत के नीचे बैठकर काम करते हैं। सरल शब्दों में अगर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहें तो अगर आपके पास खुद का ऑफिस खरीदने या किराए पर लेने का बजट नहीं है तो आप एक बड़ी बिल्डिंग में सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से एक सीट या केबिन किराए पर ले लेते हैं।
0: इसके कई फायदे होते हैं शमील। अलग से ऑफिस किराए पर लेने और बुनियादी ढांचे का जो भारी भरकम खर्चा होता है ना, वो बचता है, लागत में कमी आती है।
1: बिल्कुल, पूरा बिजली का बिल, वाईफाई, फर्नीचर, साफ सफाई, अलग से इसका खर्च नहीं उठाना पड़ता। आप इसे एक दिन, एक महीना या एक साल के लिए भी किराए पर ले सकते हैं और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ जाती है और आप ज़्यादा सीटें ले सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग फील्ड के लोग बैठते हैं जिससे आपको नए दोस्त, पार्टनर और क्लाइंट्स भी आसानी से मिल जाते हैं।
0: इंटरनेट, प्रिंटर, मीटिंग रूम और पेंट्री जैसी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध होती हैं। दूसरे प्रोफेशनल्स और उद्यमियों से संपर्क बनाने, सहयोग करने के बेहतरीन अवसर भी आपको मिलते हैं। मासिक, दैनिक या घंटे के हिसाब से डेस्क बुक करने की सुविधा इसे लचीला बनाती है।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, और कार्यक्रम में जैसा कि आज हमारा है शहर की हलचल में कोवर्किंग स्पेस और उद्यमिता, तो उद्यमिता की हम बात करते हैं जिसे हिंदी में हम उद्यमशीलता भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बाजार में किसी भी समस्या या कोई भी ज़रूरत है उसको पहचानना, समय पर पहचानना और उस पर एक नया बिजनेस शुरू करना, उस पर जोखिम उठाना और उसे आगे बढ़ाना।
0: विशेषताओं की बात करें तो नवाचार के जरिए यानी इनोवेशंस के जरिए नए उत्पादों या सेवाओं को बाजार में लाया जाता है। व्यावसायिक अनिश्चितताओं और वित्तीय जोखिमों का सामना करना होता है इसमें, न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आय के साधन यानी पैदा होते हैं और नौकरियां दी जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, एक उद्यमी जो है वो खुद के लिए काम नहीं करता, जल उसका बिजनेस बढ़ जाता है तो वह दूसरों को भी नौकरी देना शुरू कर देता है।
0: उद्यमी अक्सर अपने शुरुआती दिनों में महंगे कार्यालयों का खर्च उठाने के बजाय कोवर्किंग स्पेस का उपयोग करते हैं। ये उन्हें कम लागत में पेशेवर माहौल और देव एक्स वर्क जैसी जगहों पर नेटवर्किंग का लाभ देते हैं, जिससे उनके व्यवसाय को तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा कि आपने कहा उद्यमी का अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा पैसा है वो अपने बिजनेस आइडिया को मजबूत करने में लगाने में आसानी रहती है।

0: तो मीनाक्षी, चलते चलते हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर हमने अपने श्रोताओं से बात की थी, श्रोता संवाद पे, कार्यक्रम आधारित संदेश, जिसके लिए हमारे फ़ोन नंबर अपने श्रोताओं को हमने बताए थे कि आज के कार्यक्रम के बारे में आप अपनी बात हमसे साझा कर सकते हैं व्हाट्सएप संदेश के जरिए 9462697568 9462697568। ये हमारे आज के नंबर हैं। कुछ संदेश हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो ये जो संदेश है वो है कमल सोहाल का और कौशल्या सोहाल का, और ये लिखते हैं कि आप दोनों ने नींद के बारे में जानकारी दी जो कि बहुत ही अच्छी जानकारी रही, साथ ही संगीत और नृत्य जिससे हम अपने मन को बहला सकते हैं। साथ ही इन्होंने सुझाव दिया कि नींद के लिए हम सब एक कॉमेडी फिल्म देखकर भी सो सकते हैं, कोई भी कॉमिक फिल्म देखेंगे तो नींद अच्छी आएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि योग से जीवन को सफल बनाना चाहिए।
1: बहुत अच्छा संदेश। और इसके बाद एक किरण कुमावत जी का संदेश हम तक पहुँचा है, खम्मा घनी शमील जी, मीनाक्षी मैडम जी, और इनको हर दिन नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम पसंद आता है, इसमें आप जो भी जानकारी देते हैं बहुत अच्छी लगती है, साथ ही बीच बीच में आप जो गाने सुनाते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल, एक और संदेश हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और ये भेजा है बेदला से सीता श्रीमाली ने। इन्होंने लिखा है, शमिल जी और मीनाक्षी जी, आप दोनों को नमस्ते। आपका यह कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर बहुत अच्छा है। हमारी कोशिश रहती है कि हम रोज़ सुबह की शुरुआत इसी कार्यक्रम से करें। इसमें आपके द्वारा साझा की गई जानकारी काफ़ी अच्छी होती है।
1: बिल्कुल, और हम एक बार फिर से कह देते हैं कि 5 मिनट हमारे पास अभी भी हैं श्रोताओं, अगर आप कोई संदेश हमें भेजना चाहते हैं 9462697568 व्हाट्सएप नंबर पर हमें कार्यक्रम से संबंधित मैसेज कर सकते हैं।

0: तो कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, अभी आपने सुना, हम चाहते हैं और भी बातें आपसे करना और भी गीत आपको सुनवाना, लेकिन अब वक्त का इशारा है कार्यक्रम से विदा लेने का। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त शमील
1: और मैं थी मीनाक्षी, तो दीजिए इजाजत अब, नमस्कार।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.

मौन रहकर जो कहा जा सकता है वो शब्दों से संभव नहीं, और जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं। वेलकम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एफएम रेडियो लेक सिटी की आज की लोकल विंडो में आप सभी का स्वागत। आज हैं आप मीनाक्षी के साथ। तो जल्दी से करते हैं गुड मॉर्निंग लेक सिटी की शुरुआत।

और दोस्तों थोड़ा प्यार खुद से भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आज है इंटरनेशनल बींग यू डे। ये दिन लोगों को बिना किसी आत्मनिंदा के अपनी विशिष्टता, अपनी यूनिकनेस को अपनाने और समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर खुद की प्रामाणिकता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। ये दिन लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि दूसरों की नकल करने या भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने सच्चे रूप को स्वीकार करना ही उत्तम है। यह ग्लोबल मूवमेंट है जो डॉन हीर की पुस्तक बीइंग यू चेंजिंग द वर्ल्ड के विचारों पर आधारित है। दूसरों से तुलना करना बंद करें और अपनी खूबियों पर गर्व करने के साथ ही अपनी कमजोरियों को सहजता से स्वीकार करें। लेकिन हाँ, गर्व करें, घमंड नहीं। मुझसा कोई और नहीं इस जहां में, ये मेरा गुरूर नहीं, मेरा विश्वास है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, और मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। फिर देखिए, ये दुनिया भी मानेगी और कहेगी, यस, यू आर द बेस्ट।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, आज है विश्व वर्षावन दिवस। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का संरक्षण करना और उनकी रक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन जलवायु नियंत्रण में वर्षावनों की भूमिका के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करता है। वैसे आप जानते हैं, वर्षावन हमारी पृथ्वी के लंग्स कहे जाते हैं, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जलवायु परिवर्तन को धीमा करते हैं। ये केवल 6% भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं, लेकिन दुनिया के लगभग 50% पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है। और इस वर्ष की थीम है द फॉरेस्ट विद इन यू, आपके भीतर का जंगल। और ये विषय इस बात पर प्रकाश डालता है कि वर्षावन हमसे अलग नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस, संस्कृति और जीवन का अभिन्न अंग है। सच दोस्तों, हमारी ये प्रकृति ईश्वर की अनमोल सौगात है। हम सभी प्राणियों के लिए ऊपर वाले की जादूगरी वाकई कमाल है।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बोल बोल के थक गया।
7: क्या हुआ?
6: नया किड बैग चाहिए।
7: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट।
7: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है,
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

दोस्तों, ये आवाज आपने सुनी अमजद फरीद साबरी की। साबरी ब्रदर्स के नाम आपने जरूर सुना होंगे और इस नाम से दो जोड़ियां लोकप्रिय हुई। एक जोड़ी गुलाम फरीद साबरी और मकबूल अहमद साबरी की, दूसरी जोड़ी है गुलाम फरीद साबरी के बेटों की यानी कव्वाल अमजद फरीद साबरी और अमीन साबरी की। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। आज के दिन वर्ष 2016 में इंतकाल हुआ था मशहूर कव्वाल अमजद फरीद साबरी का। उन्हें याद करते हुए उन्हीं पर फिल्माया उन्हीं की आवाज़ में ये गीत, ये सूफी कलाम आप सुन रहे हैं।

0: दोस्तों, आज मशहूर अभिनेता टॉम अल्टर यानी थॉमस बीच अल्टर का जन्मदिन भी है। 22 जून 1950 में उनका जन्म हुआ था और उन्हीं पर अब प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम।
1: उम्दा चरित्र अभिनेता, रंगकर्मी, पत्रकार, लेखक, खेल प्रेमी, पद्मश्री से सम्मानित टॉम अल्टर। 1916 में इनके दादाजी अमेरिका से भारत आए। पिता का जन्म सियालकोट में हुआ। विभाजन के बाद पिता परिवार के साथ पहले इलाहाबाद रहे, फिर जबलपुर, सहारनपुर और फिर 1954 में मसूरी में बस गए। टॉम ने क्रिकेट जर्नलिस्ट के रूप में भी कार्य किया। सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लेने वाले वे प्रथम पत्रकार रहे। कलम से इतना प्यार रहा कि सुबह उठते ही अपनी भावनाओं को, कल्पना को कागज पर उतार देते। द लॉन्गेस्ट रेस, रीरन एट रियल्टो, द बेस्ट इन द वर्ल्ड उनकी चर्चित रचनाएं हैं। स्पोर्ट्स पर भी उन्होंने काफी लिखा। क्रिकेट का शौक भी रहा और उर्दू शायरी का भी। जानिए उर्दू जुबान के बारे में उनके ख्याल।
2: मैं उर्दू जबान से मोहब्बत करता हूँ, ताउम्र रहेगी, बचपन से रही। मेरे वालिद साहब मरहूम और मेरी वालिदा भी, उन्हें जबान हिंदुस्तानी बहुत पसंद थी। मैं मसूरी में पैदा हुआ जब हम छोटे थे, जब मैंने कभी उर्दू की स्टडी की नहीं थी, तो कुछ जो अल्फाज हैं उर्दू के वो मेरी जबान पर आ गए थे।
0: जब आराधना फिल्म देखी तो सुपरस्टार राजेश खन्ना के अभिनय से वे बेहद प्रभावित हुए। फिर 2 वर्ष अभिनय की तालीम हासिल की, कई नाटकों में बेहतरीन काम किया, कई वर्षों तक रंगमंच से जुड़े रहे। मशहूर गीतकार कवि साहिर लुधियानवी के जीवन पर बने नाटक में उन्होंने साहिर साहब को जीवंत किया मंच पर।
3: अच्छी खासी लकड़ियां काट आया हूं, गट्ठर बना के रख ली है, सुना तूने, कल पहुंचा देना डाक बंगले पे। समझ में नहीं आता ऐसे बर्फ पानी के वक्त में जान जोखिम में डालने क्यों चले आते ये लड़की।
4: सब नहीं भैया, सिर्फ एक आया है जान जोखिम में डालने वाला, वो भी मेरी जान।

0: कई टीवी सीरियल्स में भी वे नजर आए और कई यादगार किरदार निभाए, जैसे शक्तिमान में कैप्टन व्योम, जुबान संभाल के भारत एक खोज, द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, संविधान, खामोश सा अफसाना।
1: और मुझे कितने दिन इस कमरे में बंद रखेंगे सर? दूसरे हॉस्टल कब ले जाएंगे?
2: ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हें यहाँ दूसरे हॉस्टल में दाखिल कराने लाया हूँ। दरअसल बात कुछ और है। मैं अगर बॉम्बे में तुम्हें ये राज

0: की बात बताता तो तुम इतनी आसानी से मेरे साथ यहां ना आती। It's about time you learned the real reason why we've come here. मैं तुम्हारी शादी कराने तुम्हें यहां लाया हूं। हमारी यहीं की संस्था का लड़का है।
1: लेकिन सर।
0: लेकिन क्या? क्या? यही कि तुम उससे मिली नहीं हो ना, यही कि तुम उसे जानते नहीं हो ना, या ये कि तुम उससे प्यार नहीं करती, तुम प्यार किसी और के साथ करती हो ना।

हिंदी भाषा के अलावा हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया। मराठी, गुजराती, कन्नड़, असमी फिल्मों में भी अभिनय किया। कुछ उनकी यादगार फिल्में हैं, शतरंज के खिलाड़ी, क्रांति, सरदार, राम तेरी गंगा मैली, चरस, कर्मा, आशिकी, वीर जारा, देश परदेश, नौकरी, नास्तिक, त्रिदेव, परिंदा, गुमराह, तहलका, कुदरत।

67 वर्ष की उम्र में स्किन कैंसर की बीमारी ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। अंतिम समय तक फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहे टॉम अल्टर। और श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का गुड मॉर्निंग लेक सिटी बस यहीं तक। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, क्योंकि सुबह के 10:01 हो चुका है और कार्यक्रम वो अब शुरू होगा जिसमें शामिल होंगे आपके नाम, क्योंकि ये है लेक सिटी के तराने व्हाट्सएप के बहाने। गीत प्ले करेंगे हम हमारी पसंद के, और यदि आपको भी अच्छे लगें तो कीजिएगा हमें व्हाट्सएप मैसेज 9462697568 नंबर पर। आपसे विनती करते हैं कि एक साथ बहुत सारे नाम भेजने से बचे ताकि कार्यक्रम की रोचकता और मिठास बनी रहे। तो नोट कीजिए आज की फिल्मों के नाम जिनके गीत आप तक पहुंचने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि सभी फिल्मों के गीत प्ले कर पाए। दलाल, दर्द, आहिस्ता आहिस्ता, वंश, डॉन, बॉर्डर, सिर्फ तुम, ये दिल आशिकाना। तो चलिए बिना देरी के सबसे पहले दर्द फिल्म का गीत।

ये मीठा सा प्यारा सा संगीत खयाम का, मधुर आवाज़ आशा भोसले किशोर कुमार की और पसंदकर्ताओं के नाम हम तक पहुंच गए हैं बहुत सारे। तो चलिए एक के बाद एक पहुंचाते हैं इन सब के नाम आप तक। ये उदयपुर वारी की घाटी से सत्यनारायण वारी, शांति वारी, जगदीश चौक से सीमा वारी, नाहर सिंह वारी। अगला संदेश हम तक पंजाब से आया है, ये है सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल। और इसके बाद जो संदेश है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और ये मजनू का टीला से हैं। सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा और माही। इसके बाद अगले संदेश की तरफ बढ़े, जितेंद्र, मंजू मासी, पुष्पा मासी, चिराग मौनी, ये न्यू भोपालपुरा से हैं। ये हमारे श्रोता देखिए हर बार हर नाम, दो नाम लिखते हैं, तीन नाम लिखते हैं और उसके साथ में न्यू भोपालपुरा लिखते हैं, जबकि हम कितनी बार रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे बार बार जगह का नाम ना लिखे अगर सेम ही नाम है तो। निर्मला जी, मनीष जी, हेमंत जी, तारा माली, सोनिया और रोहित, रमेश, प्रदीप, रीना, डॉली और ये हैं जमुनाबाई, रूपलाल जी और ये युग और मदन, मंजू, माहिर। इसके बाद अगला संदेश पढ़ते हैं, विनोदपुरी, वीपी, रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, ये हैं बीके, कैलाश, नीलम, रमा, पाली, सुनील पाठक और विनोदपुरी। अपने इन्होंने अपने नाम दो बार लिख दिए हैं। लुधियाना पंजाब से ये श्रोता हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। संजय शर्मा, गीता शर्मा, निकेश, विकास, ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं। सुरेंद्र, संधु, अनीता, रोहित, रितेश, शिक्षा और प्रतिष्ठा, ये हमें और इनके साथ मैक्स भी हैं, ये हर गोविंद नगर से हमें संदेश भेज रहे हैं, नवन शहर। और इसके बाद अगला व्हाट्सएप पढ़ें, ये है छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल जी और ये ओम प्रकाश भावसर, मधु भावसर, निर्जन, प्राची, दीपेश, सुरभि और नमः, ये मोहली चौहटा उदयपुर के श्रोता हैं। आप हर नाम के बाद एक बार कॉमा ज़रूर लगाएं। राजकुमार शर्मा, पुष्पा और इसके साथ हैं चंद्रशेखर भावसर, संगीता, कपिल, दामिनी, लविशा। चेटक सकल से मुकेश जिंगर, रेणु जिंगर, प्रेमपुरी गोस्वामी, सहेलियों की बाड़ी से अजय जिंगर, प्रिंस जिंगर, कुलदीप सज्जन, कॉम्प्लेक्स आज़ाद नगर के श्रोता हैं। ये हैं छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति। और अगला व्हाट्सएप पढ़ें, ये हैं कृष्णा पार्क, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोटा, सिटी दीवाना। और इसके बाद का संदेश आया है गाँव बांडी वाला, फाजिल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, बेबी गरिमा और मनीष चौधरी का। इसके बाद मजनू का टीला से हैं कमल बालूजा, मधु, सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा, माही मलिक का। और ये हैं सलमा अटारी, होजिमा, सुरगा अटारी, सुगरा अटारी, संजीदा, तबस्सुम, अलीशा, खारोल कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं ये। हरजिंदर छिपा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता नथाना पंजाब से हमें संदेश भेज रहे हैं। और अगला ये व्हाट्सएप पहुंचा है गगनदीप थांदी का और इनके साथ हैं तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका, वाणी थांदी। आभार के साथ इनका संदेश आया है नवा शहर पंजाब से। अगला व्हाट्सएप ये है दर्द फिल्म के गीत को इन्होंने पसंद किया है, आराध्या, पंकज, शीतल, अनिल, उत्कर्ष, जानवी, सुभाष नगर उदयपुर के श्रोता हैं ये। इसके बाद नरगौड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से महाराज, कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी हैं। अगला संदेश प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता को हमारा प्यार भरा नमस्कार, ये हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। इसके बाद दर्द गीत को ही पसंद करते हुए संदेश भेजा है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब।

आपके श्रोता है। इसके बाद बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, पूरा वर्मा परिवार छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग से व्हाट्सएप कर रहा है। ये हैं अशोक जी, सुशील जी, जब्बार, श्याम जी, हरिओम और भवर, दिनेश मकवाना और सभी सीनियर सिटीजन्स गुलाबबाग से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। तो आपका भी संदेश शामिल कर लिया है। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी ये है छाबड़ा नई दिल्ली से। इसके बाद अगला संदेश है देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और इनका पोता है अलकबीर, ये भी बालोद छत्तीसगढ़ से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी का नेपा नगर मध्य प्रदेश से हम तक व्हाट्सएप आ गया है। ये संदेश आया है ताज मोहम्मद अंसारी का, इन्हीं के साथ है गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता हैं ये, अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री, ये गांव पांडर कबड़ा के श्रोता हैं और कहते हैं आपका हर पल खुशियों भरा हो, धन्यवाद। दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा भी हमें व्हाट्सअप कर रहे हैं। दर्द फिल्म के गीत को ही पसंद किया है ये हयात कॉलोनी अररिया बिहार के श्रोताओं ने, फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण इनके नाम। इसके बाद ये नागपुर महाराष्ट्र से हम तक संदेश आया है धन्यवाद के साथ, कमल साहनी, मिसेस पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम इफ्जाल, रामकंड झारखंड से है निप्पी और इनके साथ सुनीता जी। इसके बाद ये अगला संदेश भोपालपुरा उदयपुर से भाग्यवंती चौहान, सत्येन चौहान, तरुणा, एडवोकेट कमलेश, मधुकांता, नव्याश्री, नित्याश्री, हम सभी ने प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा सा इस सुंदर गीत को काफ़ी पसंद किया, धन्यवाद आप सभी का। इसके बाद ये हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, श्री गंगानगर से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस और भी हैं, नाम पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन पहले पहुंचाते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का ये गीत।

आशा भोसले के साथ ये आवाज़ अनवर की, और पसंदकर्ताओं के नाम आप तक पहुँचाएं तो पुराना आरटीओ ऑफिस से प्रताप नगर उदयपुर से हैं मनीष यादव, ममता यादव दर्शिल, और इसके बाद का संदेश हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पपी भाटिया का जमशेदपुर से हम तक पहुँचा है। वंडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, और इन्हें भी गीत पसंद आया है। दर्द फिल्म के गीत को पसंद किया उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण शांति वारी, और जगदीश चौक से सीमा वारी नाहर सिंह वारी ने। और अच्छा, इन्होंने पहले के मैसेज डिलीट करके दोबारा मैसेज किया इसलिए इनका नाम दो बार रिपीट हो गया। और ये हैं गांव फ्रांसी ज़िला हिसार से राजकुमार डूंडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, इन्हें भी दर्द फिल्म का गीत अच्छा लगा था। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। जय श्री राम, चेतन दीक्षित, भूपेश हितांशी उदयपुर के श्रोता हैं। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस, ये सहारनपुर के श्रोता हैं। इसके बाद जो संदेश आया है ये थैंक्स के साथ आदर्श नगर मलौट पंजाब से है, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव, सायना और निवान शर्मा का। इसके बाद ये पंजाब के ही श्रोता हैं भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाडी, शालिनी, टिवांशी, वाणी, आर बी खेड़ा। और इसके बाद अगला संदेश पढ़ें तो ये है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से, दुबिहा नेवादा ज़िला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल। इसके बाद नमस्कार के साथ ये हैं एकता कॉलोनी रोहतक के श्रोता सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड निखिल कांगड़ा, तन्वी और अंकित कांगड़ा। ये हैं लता झाला, प्रेम सिंह झाला, निशा और मानवता, मीना, विदिशा, और ये दिवाली उदयपुर के श्रोता हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि नामों के बीच में कॉमा लगाएं। दर्द मूवी के गीत को इन्होंने पसंद किया था, चेतना कुंवर झाला, लावण्या, और इनके साथ हैं गंभीर सिंह, साथ ही हैं दिव्यांशु, निखिल, ये भी दिवाली से ही संदेश कर रहे हैं। सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर से हैं निकिता खतूरिया, कशिश, और ये हैं दीपक मीर कीयू, और कुड़ी जोधपुर से हैं रवीना, स्वरा और भरत चांदवनी, कीयू भी इनके साथ, दोबारा इसी का नाम। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के गीत को पसंद किया है तरुणा झमक पूर्बिया, सोहन देवी पूर्व

पूर्विया, साथ ही हैं इनके पूरव लक्ष्मी, लक्ष्यराज, हाथीपुल उदयपुर से इन्होंने व्हाट्सएप किया है धन्यवाद के साथ। इसके बाद बड़गांव रंगास्वामी कॉलोनी से हैं शिवदास रंगास्वामी, श्रीमती द्रौपदी, साधना पूजा, भानु प्रताप दास, महिमा भास्कर, चित्रानशी, शांति जी, कमला जी और भगवान दास जी, इनका पूरा खुबानी परिवार। इन्हें आहिस्ता आहिस्ता का गीत बहुत ही अच्छा लगा है। इसके बाद ये हैं चंद्रप्रकाश चित्तौड़ा जी, साथ में विकास चित्तौड़ा, भावेश रोनाली, विनीता, कृतिका, दिया, प्रियांश, तनिष्क। देव डुंगरी बाऊजी से हैं लक्ष्मी नारायण जी, कालका माता रोड से धन्य कुमार चित्तौड़ा, नवनीत कुमार, मनीष कुमार। देव डुंगरी बाऊजी के यहाँ से लक्ष्मी नारायण हैं, कालका माता से वापस ये इनके दोबारा ही नाम आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए एक बार ही, आपने कई बार मैसेज उनको रिपीट कर दिया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर भी इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं, लेकिन आप मैसेज को शॉर्ट करिए और बार बार रिपीट ना भेजें। इसके बाद ये हैं हितेंद्र दास, एक ही नाम इन्होंने भेजा है, असम के ये हमारे श्रोता हैं। और इसके बाद करणवीर

नाम आ रहे हैं तो आप देख लीजिए एक बार ही, आपने कई बार मैसेज उनको रिपीट कर दिया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर भी इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं, लेकिन आप मैसेज को शॉर्ट करिए और बार बार रिपीट ना भेजें। इसके बाद ये हैं हितेंद्र दास, एक ही नाम इन्होंने भेजा है, असम के ये हमारे श्रोता हैं। और इसके बाद करणवीर हाउस भूचो कैंचियाँ भटिंडा पंजाब से हैं, प्रेम सिंह जौटा, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, दमन, अभिजोत, इन्होंने भी धन्यवाद लिखा है। धर्मचंद, रेखा, घनश्याम, ज्योति, नविशा, योगेश, आकाश, शिवानी, वैशाली, सौरभ, इनका पूरा गोयल परिवार खत्री मोहल्ला राजनगर राजसमंद से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। मैम सुप्रभात, मुस्कुराकर मेरा नाम ले दीजिए, हम सभी के नाम मुस्कुराकर ले रहे हैं। शिव पार्क दुर्गा नर्सरी से यह हैं एडवोकेट कुमार, राजेश नागौरी, वीरा नागौरी और वैभव नागौरी, दिव्या नागौरी, एडवोकेट वैभव ही हो गए हैं, ओके। उसके बाद है ये मास्टर अधिराज, और शुक्रिया के साथ, आभार सहित के साथ इनका मैसेज हमने शामिल कर लिया है। और इसके बाद अगला व्हाट्सएप है राजकुमार माथुरा, स्मिता माथुर, निलय, अक्षिता, आलिंद, बोहरा गणेश जी के श्रोता हैं और गानों का चुनाव इनको बहुत अच्छा लग रहा है, आपका धन्यवाद। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से ये हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। इसके बाद ये व्हाट्सएप पहुँचा है तीज का चौक से राजकमाल खंडेलवाल, शैलेंद्र खंडेलवाल, इंद्रलाल, दीपक, सहीवालों की हवेली से जगत सिंह चौहान, सविता चौहान, मोना और धीरज। इसके बाद ये हैं डॉक्टर निदा अनबिया, रहना बानो, मिफ्ता हुसैन, फरीदा जब्बार सुल्तान, डॉक्टर नाहिद, और भी इन्होंने नाम भेजे हैं मौला तलाई से, फ़ायज़ हुसैन, रसिया, फरीदा, मोहम्मद सैफ, रुबीना, और ये हैं धान मंडी से कृष्ण कुमार हरिव्यासी, सरोज बाला हरिव्यासी, मेघा गीत व्यासी, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। आप चाहें तो अगले गीत के साथ भी कुछ नाम भेज सकते हैं, एक साथ इतने नाम ना भेजने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, शुभदीप, गुरलाल सिंह, अविराज, ये फिरोजपुर पंजाब के श्रोता हैं। और नाम पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन पहले पहुंचाते एक गीत। तो अगला फिल्म का जो गीत है, फिल्म है डॉन।

0: व्हाट्सएप मैसेज हम तक आ चुके हैं, लेकिन पहले कुछ संदेश सुनेंगे।
1: Hey girls, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
6: इतनी भी क्या जल्दी थी?
5: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये
7: मेरी गुड़िया के नाम।
8: पर दादी,
5: हाँ,
8: आपके नाम?
9: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो।
8: क्या?
9: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: चलिए, जिन श्रोताओं के व्हाट्सएप हम तक पहुंच चुके हैं उनके नाम आपको बता दें। तो ये हैं देवाली से ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिया, रजत और नन्हा टप्पू। इसके बाद ये है नारायण लाल जिंगर, इंदिरा जी, डॉक्टर पंकज जिंगर, कविता हानी, लक्ष्य राज। प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है। ये सेक्टर 5 शांति नगर हिरण मगरी के श्रोता हैं। इसके बाद ये है अनिल भावसर, भगवती भावसर, पूजा मोहली चौहटा उदयपुर से, राहुल भावसर दामिनी, हर्षल कुसुम और ये हैं आकाश सोनी, निशा सोनी भी इन्हीं के साथ। और इसके बाद फिल्म आहे

आहिस्ता आहिस्ता के गीत के लिए वारियों की घाटी से भावना रावत, नितिन रावत, जगदीश चौक से उमा वारी, साक्षी वारी का ये व्हाट्सएप पहुंचा है। इसके बाद खम्मा घड़ी के साथ ये हैं तुलसी राम जी चौहान, सूरजपोल से गजेंद्र सिंह सारंग देवोत, भव्यराज सिंह भुरकिया भुरकिया खुर्द बोहेड़ा से, भूपेंद्र सिंह चौहान, शेर सिंह चौहान, गोपाल चौहान, ये साथ में हैं मनोज बागड़ी, एडवोकेट महेश बागड़ी, आदर्श नगर पहाड़ा से विकास सिंह जयपुर से, और ये हैं कुशाल बागड़ी, मन बागड़ी, ललित सिंह चौहान, उमेश दाहिमा, हेमेंद्र दाहिमा, दक्षिणी आयर कलालवाटी से, इंदर सिंह राजावत सज्जनगढ़ रोड से हैं, और तनिष्क सूरजपोल कालका माता चौक से हैं। इसके बाद ये हैं सरपाल सिंह, सुकुमार जी और प्रेम प्रजापत, दीनू रंजन भाई, नरेंद्र, ये सहेलियों की बाड़ी से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। इसके बाद ये सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर से हैं, सूर्यनगरी जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष। इसके बाद अभिजीत सिंह रानावत का संदेश है, इन्हीं के साथ है बेबी काहिनी, करमजीत सिंह रानावत, अनीता कुंवर, और ये हैं रानावत गांधी नगर गुजरात के श्रोता हैं। अच्छा जी, शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, ये मुरादाबाद से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। इसके बाद भरत खारोल, नीतू खारोल, दिग्विजय, हर्षवर्धन खुश, कव्यश, भवि, भोनू, कामिनी, वैभव, हिमांशी, ये हमें खारोल कॉलोनी फतेहपुरा उदयपुर से व्हाट्सएप कर रहे हैं राम राम सा के साथ। ये जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजवा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। और इसके बाद बहुत अच्छा सॉन्ग इन्हें डॉन का लगा है, इसके ये भेजने वाले हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, सुरेंद्र सोलंकी की आईडी से हम नाम बता रहे हैं, और प्रोग्राम इन्हें पसंद आ रहा है, धन्यवाद। हरिशंकर शर्मा, जीत, रीना काजल, मारवाड़ी स्ट्रीट से रविंद्र सरणी, कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं, इन्हें भी डॉन फिल्म का गीत पसंद आया है। इसी के बाद अगला व्हाट्सएप है विजय व्यास, उषा, जयेश, विनीत, पूनम का, आशीर्वाद नगर यूनिवर्सिटी रोड के श्रोता हैं, रामपुरा से नारायण सेन, और गुड मॉर्निंग के साथ इन्होंने अपना व्हाट्सएप भेजा है। ये गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं बबलेश पवार, डैनी, मनीष, रामदेवरा से दिनेश चौहान, और डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रेडियो दीवाना इन्होंने ब्रैकेट में भी लिखा है, और पारस मणि रेडियो श्रोता क्लब के इनके सदस्य हैं ये। इसके बाद ये है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और अगला संदेश अंबाजी से है लकी दास रंगास्वामी, पूजा रंगास्वामी, निकुंज नक्श का, इन्हीं के साथ है नया गांव पाली से जगदीश दास, साधना भास्कर, चित्रानशी और पूरा भीमर परिवार, और कहते हैं नज़र न लगे उनके साथियों को, बिल्कुल डॉन फिल्म का गीत ही इन्हें पसंद आया। और इसके बाद ये सेक्टर 5 से है कन्हैया लाल, डॉक्टर चंद्र प्रकाश चितौड़ा, वापस आपने अपने नाम और बहुत सारे नाम भेज दिए हैं, गौतम प्रकाश गांधी, मंजू गांधी, रिदांश गांधी केशव नगर से हैं, डॉक्टर इकबाल शका साहब जी प्रोफेसर हैं, और आप प्लीज़ ये प्रोफेशन साथ में ना लिख के भेजें तो मैसेज और शॉर्ट हो सकता है, और एक ही नाम आपने दो दो बार भी भेज दिए हैं वो भी ध्यान रखिए। शैलेंद्र पालीवाल, कालू मिस्त्री, हितेश मेघवाल हैं, और ये कहते हैं कि सभी हमारे आसपास वाले प्रोग्राम चलता है तो इकट्ठे हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं। और रोशन लाल सालवी, राजकुमारी, ललित, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिन, विवांश, हैथविक और पूरा सालवी परिवार हमें व्हाट्सएप कर रहा है, उदयपुर से ही हैं ये। और इसके बाद सदर बाजार, मारवाड़ा, बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण, प्रतीक हैं। इसके बाद है राजेश भंडारी, नम्रता, एडवोकेट लक्ष्य राज भंडारी और पृथ्वी राज भंडारी, ये भोपालपुरा के ही श्रोता हैं। और इसके बाद डॉन फिल्म के गीत को पसंद किया है 80 फीट रोड से नजीब खान, सबीहा खानम, शिबा और शीला ने, कुतुबपुरा से अशरफ खान, रईजा खातून, मंजू निमी ने भी गीत को पसंद किया है। बहुत सारे मैसेज और भी हैं, लेकिन अब पहले गीत, और अब की बार फिल्म का नाम दलाल।

श्रोताओं, जब हम आपके नाम पढ़ते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि कितने सारे श्रोता हैं जो हमारे प्रोग्राम्स को सुनते हैं, पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं और चाहते हैं कि उनके नाम हमारे कार्यक्रम में भी शामिल हो। और चलिए अब नामों का सिलसिला शुरू ही कर लेते हैं। तो फिल्म डॉन के गीत को पसंद करते हुए ये संदेश है धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता, प्रीति, ऋतुराज, संकल्प का और प्यारे सी गुड़िया वेदा सिंह का। इसके बाद ये हैं मोहाली चंडीगढ़ से डी टी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज। और इसके बाद सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा का भी व्हाट्सएप हमने शामिल कर लिया है। ये हैं पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा।

0: पूनम, ज्योति और शिवांश। इसके बाद अगला संदेश शामिल करते हैं, ये है सनावद मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाई जान और भाई राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप। अगला संदेश शामिल करते हैं, ये हैं जाखौद राजस्थान से। शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा। और इसके बाद ये हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। दिल्ली गेट से एडवोकेट राज बॉस और लेक सिटी लिसनर्स क्लब के सभी मेंबर्स, थैंक्स के साथ इनका संदेश डॉन फिल्म के गीत के लिए। आयुर्वेदिक चौराहे से यह हैं अशोक चौहान, मंजू चौहान, उषा चौहान। पनिहारी वारियों की घाटी से दीपक रावत, किरण और नक्ष रावत। इसके बाद ये कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित, हैप्पी। ये शायद इन्होंने वापस से ही संदेश भेज दिया, अगर एक बार आपका नाम शामिल हो गया है तो दोबारा हमें संदेश ना भेजें। और इसके बाद पसंद करते हुए कई सारे संदेश और भी पहुँच रहे हैं। जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी, ये रतलाम एमपी के श्रोता हैं। इसके बाद नागा नगरी से हैं अब्दुल भाई, बाबू भाई और टिंकू भाई, सोनू और सैफन। इसके बाद उदयपुर से हैं मोहम्मद सलीम शाह, रजिया बानो, एनाया टेलर, अक्सा इकरा, मुस्तफ़ा कॉलोनी सलूम्बर के श्रोता। अच्छे गानों के लिए थैंक्स, आपका भी धन्यवाद। और खेल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य, लाडो कोयल, पापा जी नानक चंद, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का कोयल और डुगो भाविक सिक्का। इसके बाद एमबी कॉलेज कुमारों का भट्टा से हैं मांगी लाल, पूर्विया, पुष्परानी, हमें गीत बहुत पसंद आया है। मोती चौहट्टा करजाली हाउस से माधवलाल सिल्ली। और इसके बाद ये है प्रजापति जॉनी भाई कुल्लड़ वाले। अगला संदेश पहुंचा है सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफीमा, आफिया, इब्राहिम सद्दाम अदीब का। और इसके बाद संजय दुग्गड़, ललिता, मनवाखेड़ा रोड, हिरण मगरी सेक्टर 4 उदयपुर से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। भोपालपुरा उदयपुर से भाग्यवंती चौहान, इन्होंने भी शायद दोबारा ही संदेश किया है, तो एक बार नाम आपका शामिल हो जाए तो दोबारा संदेश ना भेजें। रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत और मिथिल, ये है प्रगति नाचानी इनके साथ में, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता। ये है नारवा इंद्रोका, जोधपुर राजस्थान से नरपत सोनी, वैशाली, गणेश चौक, रातानाड़ा, जोधपुर राजस्थान से नरेंद्र भाटी और वीणा भाटी। अगला संदेश शामिल करें तो इन्होंने भी कुछ नाम रिपीट ही लिखे हैं। ये हैं फिल्म दलाल को पसंद करने वाले खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा, शबनम, निदा, इरम कलीम और प्रताप नगर से नरेश दवे, रंजना और अंशुल दवे, अंशुल होगा ये शायद, विनोद सालवी, अनीता, पीयूष, शालू और लक्षिता, ये सुथारवाड़ा उदयपुर के श्रोता हैं। अडार नांद घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश ने भी दलाल फिल्म के गीत को पसंद किया है। भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ, जगदीश, ये भी इन्होंने भी वापस से ही जो है संदेश भेजा है, इनका नाम शामिल हो चुका है। धनौरी तेलीवाड़ा से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान बाबू। और इसके बाद प्यार भरे नमस्कार के साथ हनुमानगढ़ टाउन से भेज रहे हैं संदेश रजाक मोहम्मद, समीम, इमरान और इरफान। अब अगला गीत
1: रेडियो लेक सिटी, लेक सिटी, लेक
0: सिटी। फिल्म का नाम है दिल आशना है, माफ कीजिए, ये दिल आशिकाना है।

लेक्स जी के तराने व्हाट्सएप के बहाने ये प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे नाम अभी और आ चुके हैं, तो बताते हैं अब इन नामों के कहाँ कहाँ से व्हाट्सएप पहुँचे हैं ये हमारे पास। तो ये नाम दादरी गेट भिवानी से हैं, कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल और दलाल फिल्म के गीत को इन्होंने पसंद किया। शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली, ये झारखंड के श्रोता हैं। इसके बाद मीनाक्षी शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, चिंतामणि की घाटी उदयपुर के, छोटा सा संदेश, और ये एक और छोटा सा संदेश कुमारवाड़ा से है, ललित कुमार प्रजापत, अशोक कुमार, नामदेव और जाकिर हुसैन का। इसके बाद शक्ति नगर उदयपुर से संतोष खतुरिया, कामिया, विकास खतुरिया, भानु और हिताक्ष इनके साथ में हैं, जय सालवी, संतोष खतुरिया और यज्ञा सालवी, दूध तले उदयपुर के श्रोता इनके साथ में। इसके बाद सोनू राजकुमारी और इस ये कहाँ से मैसेज कर रहे हैं ये इन्होंने नहीं लिखा है। इसके बाद राहुल शर्मा, योगेश, योगी, विक्रम, अमल का कांटा उदयपुर के श्रोता हैं। हिरण मगरी उदयपुर से ये व्हाट्सएप आया है। डी एस भट्ट, वरिष्ठ नागरिक लिसनर्स क्लब के सभी सदस्य साथी हैं इनके साथ में। इसके बाद ये हैं भीलू राणा कॉलोनी उदयपुर से सोन यादव और पिंकी यादव, विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग, राहुल, अक्षय, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा,

नीता वशिता भवर गौतम, ये धौली बावड़ी उदयपुर के श्रोता है और दिल आशिक काना फिल्म को के गीत को इन्होंने पसंद किया है। रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, ये लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं और इन्होंने बड़े अलग स्टाइल में छत्तीसगढ़ लिखा है, 36 और गढ़। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक टावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर टावर और राजेंद्र कटारे। और इसके बाद अगला ये व्हाट्सएप ये दिल आशिकाना फिल्म के गीत को ही पसंद करा है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विन और विपुल कामड़े ने। और इसके बाद इसी गीत के लिए एमपी कॉलोनी से महेंद्र चावला, यश गीत और दीपा का भी मैसेज हमने शामिल कर लिया है। चलिए अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं सिर्फ तुम फिल्म से, ये कव्वाली साबरी ब्रदर्स की गाई हुई।

अमीन साबरी, फरीद साबरी और जसपिंदर नरिल्वा की आवाज़ में ये गीत, और जिसे पसंद किया है उदयपुर वारियों की घाटी से हरीश रावत, मीना रावत, एसएन रावत, भोपालवाड़ी से रवि भाई, सत्तू भाई, दिलीप खत्री, और बापू बाजार से चेतना रावत, साक्षी रावत वारियों की घाटी से ही हैं गुनगुन। और इसके बाद यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संतोष खड़से और विनोद, और इसके बाद ये हैं जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी, कलश मार्ग से लाला सोनी, अशोक तोलानी, मोहन कसारा और शेर सिंह राजपूत। इसके बाद इसी गीत को, ये जो प्ले हो रहा है इसके लिए ये व्हाट्सएप आया है, सविता पायल, पूनम, पुनीत, विनीता, अदितिका, और इसके बाद सिर्फ तुम फिल्म के गीत को ही रहमान कॉलोनी से मोहम्मद इदरीश, रुखसाना बानो, मुस्तफ़ा राजा ने भी पसंद किया, और आपने भी नाम वापस भेज दिए हैं, कृपया ऐसा ना करें। और इसके बाद अब चलिए ट्रैक चेंज करते हुए एक आखिरी गीत बॉर्डर फिल्म से आप तक पहुंचाते हैं।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आज के सभी गीत बेहतरीन चल रहे हैं, और इसके बाद जो संदेश आए हैं माधुरी इंडस्ट्रियल एरिया से, दुर्गा शंकर पालीवाल, रेखा पालीवाल, रोहित, निकिता, हितेश और चिन्मय, इसके बाद बॉर्डर फिल्म के गीत के लिए रहमान कॉलोनी उदयपुर से ही अब्दुल समद, फिरदौस बानो, मोहम्मद असलम, मोहम्मद रजा का मैसेज आया है, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य बुलंदशहर से हमें संदेश भेज रहे हैं। गणेश नगर, महावीर जैन चितौड़ा का भी व्हाट्सएप हमने शामिल कर लिया है। रमेश चंद्र ठाडा, मीना बेदला से हमें संदेश कर रहे हैं, और करजाली हाउस से ये हैं हरीश सोनी, पवन सोनी, चंद्रप्रकाश सोनी, त्रिलोक, सुंदरलाल जी पूर्विया और जय श्री राम, इन्होंने लिखा। साथ में हैं ये चाखौद राजस्थान से शंभुदयाल खट्टक, ये शायद वापस इन्होंने नाम भेज दिए हैं। तो तमाम श्रोताओं का शुक्रिया, आभार आज के कार्यक्रम में हमें व्हाट्सएप करने के लिए।

0: वंस अगेन वेलकम दोस्तों, आप हैं मीनाक्षी के साथ और एफएम रेडियो लेक सिटी पर. अब समय है यादों के झरोखे से का और आज क्या खास है बताते हैं.
1: नवंबर खुश हुआ
2: ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है लेकिन

0: कोई रॉन्ग नहीं होता।
1: एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, वहां केदार का भाव पता चल जाएगा।
2: प्रेमी है, पागल है, दीवाना है।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
4: शाम शाम शाम शाम
5: बिल्कुल दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे ये आवाज़ सुन के कि आज हम याद करने वाले हैं अमरीश पुरी को।

दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत में जब भी खलनायक की बात होती है और उसका जिक्र अमरीश पुरी के नाम के बिना अधूरा लगता है। उन्होंने अपने हर किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि आज भी उन्हें उन भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। आज हम अमरीश पुरी जी को याद कर रहे हैं क्योंकि 22 जून 1932 को पंजाब में उनका जन्म हुआ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े खलनायक में से एक माने जाते हैं। उनकी दमदार आवाज़ और रौबीले अंदाज ने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया। अमरीश पुरी के डायलॉग बोलने का लहजा भी इतना अलग था कि वे जो भी कहते उससे अपने किरदार में एक नयापन लेकर आते। अमरीश पुरी ने अपने करियर में अधिकतर नेगेटिव रोल प्ले किए, लेकिन उनके पॉजिटिव रोल्स वाली फिल्में भी हमेशा सराही गईं।

अमरीश पुरी चार भाई बहन उनके और थे, यानी कुल मिलाकर वो पांच भाई बहन थे। दोनों बड़े भाई चमन और मदन पुरी भी जाने माने अभिनेता रहे। वे लेजेंड अभिनेता और गायक केएल सहगल के चचेरे भाई थे। अपने चचेरे भाई की प्रसिद्धि से प्रेरित होकर पुरी के बड़े भाई चमन और मदन 1950 के दशक में फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले गए और चरित्र अभिनेता के रूप में काम करने लगे। पुरी भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आए, लेकिन पहले स्क्रीन टेस्ट में असफल रहे। फिर नौकरी करने लगे और रंगमंच से जुड़ गए। एक प्रसिद्ध मंच अभिनेता बने और 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्होंने जीता। थिएटर में मिली इस पहचान के कारण उन्हें जल्द ही टेलीविजन विज्ञापनों में काम मिला और अंततः 40 वर्ष की अपेक्षाकृत देर आयु में फिल्मों में काम करने का अवसर मिला।

1970 में देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी रिलीज हुई, जिसके साथ ही इंडस्ट्री में एक नया चेहरा भी लॉन्च हुआ। इस मूवी में अमरीश पुरी का रोल कुछ खास तो नहीं था, लेकिन प्रेम पुजारी ने उनके लिए हिंदी फिल्म जगत में एक्टिंग की राह खोल दी।

अमरीश पुरी कई मूवीज में पिता के रोल में नजर आए, लेकिन विलेन बनकर उन्होंने अपने किरदारों की जो छाप छोड़ी उसे कोई नहीं भूल सकता। मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो हो या रामलखन का विशंभर या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के चौधरी बलदेव सिंह का किरदार, चाहे दामिनी के इंद्रजीत सिंह चड्ढा हो, घायल के बलवंत राय, मेरी जंग के ठकराल या नगीना के भैरोनाथ, अमरीश पुरी ने हर किरदार से खौफ भी पैदा किया और एंटरटेन भी किया।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फूल और कांटे, गर्देश परदेश, मुझसे शादी करोगी, विरासत, घातक, हलचल, खुशी, मुझे कुछ कहना है और चाइना गेट जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने पॉजिटिव शेड्स भी बखूबी दिखाए।

अमरीश पुरी के तमाम किरदारों में जो मोगैम्बो का कैरेक्टर था उसमें ढलने के लिए उन्होंने डायलॉग से लेकर हर चीज पर बारीकी से काम किया। मोगैम्बो के किरदार के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की कि शूटिंग में इतने व्यस्त रहते थे कि कई दिनों तक सूरज की रोशनी ही नहीं देखी। ब्लैक आउटफिट में मोगैम्बो का पूरा लुक उन्होंने अपने डिजाइनर के साथ मिलकर तैयार करवाया था, साथ ही मोटी आईब्रो और बिना दाढ़ी वाला लुक भी उन्हीं का आइडिया था। कहते हैं इस कैरेक्टर के लिए पहले मंझे हुए अभिनेता अनुपम खेर को चुना गया था और काफ़ी शूटिंग उनके साथ हो भी गई थी, लेकिन मेकर्स डायरेक्टर संतुष्ट नहीं थे और फिर ये रोल दिया गया अमरीश पुरी को। बहुत अच्छे खलनायक साबित हुए हमेशा अमरीश पुरी।

अपने जीवन में 400 से अधिक फिल्म्स में बेहतरीन अभिनय का परिचय दिया अमरीश पुरी ने। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी भाषा की फिल्मों में काम किया, लेकिन वे तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और मराठी भाषा की फिल्मों में भी नजर आए। वे कला सिनेमा में सक्रिय थे, जिनमें श्याम बेनेगल और गोविंद नेहलानी की फिल्में भी शामिल थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में भी अपनी उम्दा अभिनय छाप छोड़ी।

मेरी जंग, घातक विरासत फिल्म्स के लिए वे पुरस्कृत भी किए गए। गर्दिश, तहलका, सौदागर, त्रिदेव, कर्ण अर्जुन, कोयला, ताल, गदर एक प्रेम कथा, बादशाह, दामिनी और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म्स के लिए भी पुरस्कारों के नॉमिनेशंस में उनका नाम शामिल किया गया।

2004 में दुर्लभ प्रकृति के ब्लड कैंसर का उन्हें पता चला, जिसने उनके ब्रेन को भी प्रभावित किया। और फिर 12 जनवरी 2005 का वो अशुभ दिन आया जब असाध्य रोग ने उन्हें सदा के लिए अपने प्रशंसकों से दूर कर दिया। 2005 में आई फिल्म किसना उनकी आखिरी फिल्मों में से एक थी जो उनके निधन के बाद रिलीज हुई। उनकी यादगार फिल्म में उनका उम्दा अभिनय कौशल आज भी उनके जैसे मंझे हुए कलाकार को सिने प्रेमियों के दिल में बसाए हुए है। यादों के झरोखे से इस कार्यक्रम का सुनिए अंतिम गीत और मीनाक्षी को दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।

यादों के झरोखों से ये प्रोग्राम अभी आपने सुना, ये है एफएम रेडियो लेक सिटी। समय देखिए हो चला है राजस्थानी लोकगीतों के कार्यक्रम गोखड़ा का।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
4: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
4: कहाँ से पता चलेगा?
3: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
5: आज ही सर्च करूंगा।
3: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: राजस्थानी लोकगीतहरू कार्यक्रम गोखडा बार फुनी रहो छ आउँछ हुना कार्यक्रम रो अग्लो लोकगीत भने पहिला हुना सन्देश
1: बोल बोल के थक गया
2: क्या हुआ
1: नया किडबैग चाहिए
2: तो पहले कैप्टन से बोलो नहीं सुना तो मैनेजर से
1: करेक्ट
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर चले ले आ गया नया किडबैग
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन

शिवम मिश्रा के गाए इस राजस्थानी लोकगीत के साथ ही राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम गोखड़ा अब यहीं समाप्त होता है। FM 101.9 MHz पर यह है FM रेडियो लेक सिटी। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके बाद सुनिएगा कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और

0: स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी विरसिक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादें सजाई हैं गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकले हुए बोलों के साथ, यानी उनके द्वारा लिखे गए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह पहला गीत, जिसे लिया है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में शैलेंद्र की कलम से निकले सुंदर गीतों का संयोजन आज हमने किया है। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, जो कि फिल्म आवाज़ है मुकेश की, और इसे लिया गया है फिल्म आवारा से। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला नगमा, जिसे लिखा है गीतकार शैलेंद्र ने।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी

0: सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलते सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल से। यह गीत है चोरी चोरी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं अगला नगमा। मधुमती फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म शरारत से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ।

0: हम सुन रहे थे गाइड फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल हमने सजाई है गीतकार शैलेंद्र की गीतों के साथ में। आइए सुनते हैं परख फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र के बोल हैं और संगीतकार हैं सलिल चौधरी।

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आइए सुनते हैं

हम सुन रहे थे ये गीत मेरा नाम जोकर फिल्म से मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र के बोलों के साथ शंकर जी किशन का है संगीत। आप सुन रहे यादों की महफिल और यादों की महफिल का यह अंतिम गीत हमने आज याद किया गीतकार शैलेंद्र को आज यादों की महफिल के साथ। आगे दीजिए कार्यक्रम यादों की महफिल से मुझे। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर हम भेजते हैं आपके पास एक इबारत और उस इबारत से पूछते हैं बहुत सारे प्रश्न। हालांकि हमारे श्रोता इतने होशियार हैं कि प्रश्नों के उत्तर पूछे बिना ही कई सारे उत्तर खुद ही दे देते हैं, और उस समझदारी के लिए ये जो इबारत है वह हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इबारत कुछ ऐसी है कि कुछ शायरियाँ जो या शेर जो फिल्मों में उपयोग किए गए हैं या फिल्मों में बोले गए हैं, उन शेरों को आज हमने संकलित किया है और आप सबके बीच में लेकर आए हैं। बस आपको पहचानना है कि ये शेर किस फिल्म से है। हो सकता है कोई शेर 1, 2, 3, 4 कई फिल्मों में उपयोग किया गया हो, तो ये भी आंकते हैं कि आपकी पहचानी हुई फिल्म और हमारी पहचानी हुई फिल्म क्या एक ही है, ये प्रश्न भी आज बनता है। तो चलिए चलते हैं उन शेरों की तरफ, और हम ऐसा करेंगे कि आपके बीच में एक एक शेर अदायगी करते जाएंगे और उस शेर के बारे में बात करते जाएंगे।

तो इबारत की इबारत पढ़ लेंगे और इसके साथ ही हम आपके बीच में वो शेर भी रख देंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इबारत के साथ, और इबारत का पहला शेर है कि न जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, न जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, जफा करते हैं वो लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं। और इस इबारत की, इस शेर की तरफ बढ़ूं उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। हमारे ये श्रोता लिखते हैं कि भावनाओं और विचारों को सुंदर, लयबद्ध और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने का माध्यम है शेर, और उर्दू और हिंदी साहित्य की एक बेहद लोकप्रिय विधा है। इसमें प्रेम, विरह, खुशी, दर्द और समाज की सच्चाई जैसे तमाम जज्बातों को बयां किया जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं, आज की इबारत में चुनिंदा शेरों का निचोड़ यह है कि जिंदगी मोहब्बत, उम्मीद और तन्हाई का एक हसीन सफ़र है, जहां दिल हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद खुद को बहलाने के लिए हसीन ख्याल बुनता रहता है। अधूरी ख्वाहिशों और मौत के दरिया से भी परवाह यह शायराना रूह अपनी ही मोहब्बत से नफरत करने के बावजूद ईश्वर के फानूस तले हर मुश्किल को खूबसूरत मोड़ देकर जिंदगी के चिराग को रोशन रखती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के शेर और संवाद प्रेम, तन्हाई, उम्मीद, वफा और जीवन दर्शन के रंगों से सजे हुए हैं। कहीं मोहब्बत की कसक है, कहीं बिछड़ने का दर्द, तो कहीं जीवन को सहजता से स्वीकार करने का संदेश। कुछ गानों की लाइनें भी हैं जिनके बारे में आपने लिखा है, तो चलिए हम चलते हैं पहले गीत की तरफ और पहले प्रश्न की तरफ भी। आप ये बता दीजिएगा कि इस गीत को गाया किसने है, यानी गायक कलाकार का नाम बता दीजिए, और इस शेर के साथ एक प्रश्न है जो पूरे समय आपके साथ में चलेगा। ये प्रश्न ये है कि ये बताइए कि कौन सी शायरी या कौन सा शेर या कौन सी कविता ऐसी है जो आपके दिल में आज भी है, जिसे आपने कहीं किसी रोज़ किसी फिल्म में सुना था। अपनी पसंदीदा शायरी, अपना पसंदीदा डायलॉग तो नहीं कहेंगे, उसे शेर कहेंगे या कविता कहेंगे, जिसे पद्यात्मक रूप से लिखा गया है, वो कौन सा है जो आपके दिल में आज भी सजा हुआ है। साझा कीजिए इस बात को और बताइए ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे गीत फिर वही दिल लाया हूँ, फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मजरूह के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ में। हमने आपसे बात करी और हमने पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सही उत्तर दिया। हमारे एक श्रोता ने उत्तर भी बड़े अच्छे तरीके से दिया कि फिल्म का टाइटल गीत है। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, संगीतकार ओपी नैयर जी। बिल्कुल सही बात है, इसमें आशा भोसले की जी की आवाज़ नहीं थी, तो हमने इस गीत को सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। चलिए अब हम चलते हैं आगे की जो बातें आपके साथ में चल रही थी उन बातों की तरफ। और हमारे श्रोता लिखते बहुत अच्छा है, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि शायरियाँ तो मुझे याद नहीं, पर मैंने फिल्म देखी थी मीना कुमारी और दिलीप कुमार की यहूदी, उसमें काफ़ी बड़े चुनिंदा और अच्छे शायर थे, शेर थे, तो जो मुझे याद तो कम है पर बहुत अच्छे शेर थे। फिल्म देखने के बाद वो शेर मैंने अपनी डायरी में भी नोट किए हुए हैं। ये कितनी अच्छी आदत है ना कि जो कुछ अच्छा लगे उसे अपने पास लिख लें, तो आज नहीं कभी ना कभी तो काम आता ही है। बहुत अच्छा किया आपने उन्हें अपने पास लिखकर। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि कोई शायर या कोई शेर या कोई शायरी अगर आपको पसंद है तो वो आप हमारे साथ साझा करें, परंतु अगर वह फिल्मों में उपयोग की गई है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, हालांकि उनका प्रसिद्ध गज़ल का एक हिस्सा, दुष्यंत कुमार की गज़ल का यह हिस्सा जो है वह उन्हें बड़ा पसंद है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कितना बढ़िया कहा आपने। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, अन्य कई श्रोताओं ने भी बहुत बढ़िया लिखा। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप तक, आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ मिल रही है, सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मिर्ज़ा गालिब का शेर याद है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे शेर और बहुत अच्छे दिल के जज्बात ये लोग लिख देते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही लिख दिया गया है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, कई सारे श्रोताओं ने कई सारे अन्य शेरों के बारे में भी लिखा है, शायरियों के बारे में भी लिखा है, परंतु अगली जो पंक्ति है इबारत से वह ये है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती। अब फिल्म तो आप पहचान ही चुके हैं क्योंकि ये तो हम सबको याद है। इस पर हमारे श्रोताओं ने लिखा है, तन्हाई पर एक छोटी सी बात, तन्हाई में बिताए हुए कुछ पल कभी कभी पूरी महफिल से ज़्यादा याद रह जाते हैं क्योंकि वहाँ हम दुनिया से नहीं अपने दिल से बात कर रहे होते हैं। बहुत गंभीर बात लिखी है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, तन्हाई का अपना एक अलग संगीत होता है, जब आसपास कोई नहीं होता तब यादें धीरे से आकर दिल में बैठ जाती हैं, कुछ मुस्कुराती हैं, कुछ आंखें नम कर जाती हैं, कुछ हमें खुद से मिलवा जाती हैं। तो तन्हाई वो आईना है जिसमें हम दुनिया को नहीं खुद को देखते हैं, भीड़ में जो बातें सुनाई नहीं देती वे अक्सर तन्हाई की खामोशी में साफ सुनाई दी जाती हैं। तन्हाई बुरी नहीं होती, बस उससे यादों का साथ हो तो वह खामोशी भी बहुत प्यारी लगने लगती है। क्या उम्दा बात लिखते हैं, क्या बढ़िया बात आप लिखते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जाने किस लिए उम्मीदवार पर बैठा हूँ, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। वाह, बढ़िया शेर।

आपने पेश किया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ और शेर हैं जो अर्ज़ कर रहे हैं, उनमें से मैं एक दो शेर पढ़ देती हूँ। उन्होंने लिखा कि बेवक्त बेवजह बेसबब सी बेरुखी तेरी, फिर भी बेइंतहा तुझे चाहने की बेबसी मेरी। वाह, बहुत बढ़िया। हमारे उन्हीं श्रोता ने एक और लिखा है कि कुछ एहसास मेरे हमारे जीवन में बारिश की तरह आता है, हथेलियाँ तो भीग जाती हैं मगर हाथ खाली रह जाते हैं। बढ़िया शेर लिख रहे हैं। हमारे एक और शेर, हमारे लिए एक बड़ा प्यारा सा शेर आया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते तमन्ना का खून हो गया। आते आते आपके शेरों के जवाब में एक और शेर उन्होंने हमें पहुंचाया है, और ऐसे ही कई सारे शेर हमारे बीच में आए हैं। तो ये जो बात है वो आप भेजते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। थैंक यू। तेरे प्यार की तमन्ना गुमाए जिंदगी के सया अबदी, तेज आंधियां ये चिराग बुझ न जाए। आप जब रोमन में लिखते हैं तो पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, प्रयास करें कि देवनागरी में लिखें तो अच्छा होगा, परंतु फिर भी बढ़िया है आप जो लिख रहे हैं, आप जो हमसे जुड़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे उस प्यारे से गीत की तरफ जिसे हमने आपके लिए सजाया है इस फिल्म से। अच्छा, आप बस इतना बता दीजिएगा कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं, और ये जो शेर है, ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का क्या अर्थ आपको समझ आता है?

सिलसिला फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में जावेद अख्तर के बोल, और हमारे श्रोता ने बिल्कुल सही पहचाना कि इसके संगीतकार हैं शिव हरि यानी शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। और इस प्यारे से गीत को हम सुन रहे थे, और इसके बाद जब अगली शायरी करने की बात आती है तो मैं आपको पहले ही एक प्रश्न दे दे रही हूँ। वो प्रश्न ये है कि कभी किसी अपने को, यानी हो सकता है वो आपके प्रेयस हों, प्रेयसी हों, पति हों या पत्नी हों, कोई इतना इतने दिल के करीब जो होता है उसको कभी कोई शायरी तो सुनाई होगी। कौन सी शायरी सुनाई है वह ज़रूर साझा कीजिएगा। हो सकता है वह आपके जीवन की पहली शायरी हो या फिर आपकी खुद की लिखी कोई शायरी हो, वो शायरी ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपके दिल की बात कहना भी बनता है ना। तो अपनी पत्नी, पति, प्रेयसी, प्रेयस, किसी के लिए कोई शायरी या कोई कविता की कुछ चंद चार पंक्तियाँ कही हो तो हमारे साथ साझा कीजिएगा। और अब हम अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे, पर उसके पहले हमारे श्रोताओं ने कुछ लिख भेजा है, वो आपके साथ साझा करती हूँ कि मुझे गुलजार की वो शायरी पसंद है, समझने को कठिन है लेकिन अच्छी लगती है, कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट आँखों पे खींच कर तेरे आँचल के साए, औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए। बहुत बढ़िया पंक्तियाँ हैं ये। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। बहुत बढ़िया। हमारे एक और श्रोता ने शायरी लिखी, तन्हाई में खामोशी ही जवाब बन जाती है, वो ना रहकर भी हम सफ़र बन जाती हैं। मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के कई सारे शेर इन्हें पसंद हैं, उनमें से इन्होंने लिखा है, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और उन्होंने कभी कभी फिल्म के इस शेर को भी लिखा कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अच्छा, इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर ख्वाहिश को जुनून ना बनाए, ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। जी बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया शेरों को हमारे साथ साझा किया, और भी लोगों ने किया है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है नीट की परीक्षा हो रही है, तो नीट की परीक्षा को सरल करने के लिए हमने आपको ये प्रश्न दिया है कि पहला शेर, पहली शायरी अपने प्रेयस, प्रेयसी, पति, पत्नी, महबूब के लिए कब पढ़ी थी, तो और कौन सी पढ़ी थी वो ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अगले नगमे की तरफ, जिसे हमने आपके साथ जो शायरी साझा की है इबारत में वो ये है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और इसके आपने पहचान लिया कि फिल्म कभी कभी से है, बहुत बढ़िया बात है। बस बताइएगा कि इसके संगीतकार कौन है, संगीतकार का नाम बताइए और सुनिए ये गीत।

एक बहुत सुंदर सा गीत हम अभी सुन रहे थे कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, बिल्कुल सही बताया आपने, खयाम। और अब हम चल रहे हैं हमारे कुछ और शायरों की तरफ, जो हमारे बड़े प्यारे से श्रोता हैं और उन्होंने बहुत सारी शायरियाँ हम तक पहुँचाई हैं। एक एक लिखते हैं कि कुछ इस तरह से ज़िंदगी को हमने आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। वाह, हमारे श्रोता ने याद किया है वो खूबसूरत से नगमे को कि फिर छिड़ी बात बात फूलों की बात है या बारात फूलों की। जी बिल्कुल, तलत अजीज़ की गज़ल बड़ी प्यारी सी है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, तन्हाई हमारे दिल में झांक कर बीते हुए पल को याद करने का जरिया है, यहाँ हम शांति से अपने आप से बात कर लेते हैं। बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बसीर बद्र का ये शेर वो लिख रहे हैं। इसके साथ, वो लेटे हुए हैं कल से बिस्तर पर जख्म लिए हुए, गिरा जो हाथ से फूल सीधा पांव पर।

0: जा लगा। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में, यानी ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने भी बताई है कि सूरत गुजरात में बारिश शुरू हो गई है, और वह कह रहे हैं कि गार्डन में टेबल पर रेडियो बज रहा है सुरीला सफ़र, हाथ में गर्म चाय का कप और सामने बारिश है, स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है जी। बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही है आपने, और मैं आपको सुनवा रही हूँ ये संदेश, लेकिन एक बात आपसे कहनी है। रोमांटिक तो शायरियाँ बहुत सारी हो गई, कोई ऐसी बात है जो आपके दिल को छू जाती हो, थोड़ा वीर रस की जो पंक्तियाँ हो, शेर हो, शायरी हो, कविता हो, पंक्तियाँ हो, कुछ भी जिसमें वीरता जगाती हो, ऐसा कोई एक जरूर बताइएगा। तब तक सुनिए संदेश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर, और इस सुरीला सफर में हम आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं शेर और शायरी के बारे में, और आप बड़े अच्छा अच्छा लिखते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो हमारे श्रोता ने बताया है कि उन्हें शेर और शायरी की बात हो रही है, तो जिस गाने से शुरू में शेर हो ऐसे गीत होने चाहिए थे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ने एक जहाँ आरा का तलत जी का तलत का गाया हुआ ये गीत उन्होंने लिखा है कि तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, गाने के पहले भी शेर है और आगे उनको पंक्ति याद नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे शेर हमारे बीच में आते जा रहे हैं। हमारे साथ में एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारी सगाई के बाद पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मिलना हुआ अजमेर में, तो उन्होंने कहा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और आशा करती हूँ ये प्यार आपका सदा बना रहे। और इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि बस हमको ऐसी महफिल मिल जाए तो हम लंच का भी दरकिनार कर सकते हैं। जी, हमारी श्रोता लिख रही है कि अगर देवनागरी में लिखेंगी तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा। रोमन में लिख रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह लिखती हैं कि मेरे पति को शायरी समझ में नहीं आती तो उन्हें इंग्लिश में बोलती हूँ, यू आर माई फेवरेट वेस्ट ऑफ टाइम, और वो बहुत खुश होते हैं। क्या बात है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, सबसे अच्छा समय गुजारते हैं ना हम इन लोगों के साथ में। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पत्नी को प्रेम निवेदन में कही थी कि तनकी सुराही में यौवन का हाल, यौवन की हाला, चितवन में मधोशी अंगों में ज्वाला, छल छल छल के यूं

का प्याला गोरी तू लागे है पूरी मधुशाला। धन्यवाद, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ आपने कही हैं। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखे हैं कि कई सारे शायर जो हैं वो लिखते हैं बड़े प्यार से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनकी फेवरेट है कि सपने चरे फूल से, मीत चुभे शूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रह गए, कारमा गुजर गया और हम गुबार, क्या बात है। जॉन एलिया की पंक्तियाँ ये लिखते हैं कि क्या तकल्लुफ़ करें या कहने में कि जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं, यूँ जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ऐसी बात है। हमारे श्रोता ने बहुत बढ़िया शायरी बनाई है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ऐ विविध भारती, तुझे बनाया गया है मेरे लिए, हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये विविध भारती हम सभी के लिए ही बनाई गई है। शेरो शायरी दिल बहलाने का जरिया है साहब, लफ्ज़ कागज़ पर उतारने से महबूब नहीं लौटा करते। बड़ी प्यारी सी बात कह दी है आपने। और चलिए अब हम जल्दी से हमारे ना अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। और जो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमारी जो अगली शायरी है, अभी हम बड़ा प्यारा सा ये गीत सुनकर निकले हैं कभी कभी फिल्म का, और अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे एक और श्रोता ने श्रोता की बात को हम थोड़ी देर बाद करते हैं। हम ये शायरी आपको बता देते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। ये शायरी हमारे बीच में है, फिल्म से ली गई है। और आपसे हमने पूछा कि हो सकता है कि कोई बड़ी देशभक्ति की पंक्तियाँ या बड़ी शौर्यवीरता की पंक्तियाँ, कोई पंक्ति जो शेर में हो, कविता में हो या फिर शायरी में हो, तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन तब तक हम आपको ये बता दें, हमारे श्रोता ने उसका एक उत्तर भेजा है कि मैं तूफ़ानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं और इस गीत की गायिका को पहचानिए। बहुत आसान है इस आवाज़ को पहचानना, क्योंकि आप बराबर इन्हें सुनते रहते हैं। गायिका की आवाज़ को पहचानिए और पहुँचते हैं आपके अगली बात की तरफ कि आपको कुछ देशभक्ति से भरा या फिर कोई वीर रस से भरा हो, कोई शेर शायरी या कविता, कुछ पंक्तियां हम तक साझा करें।

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से यह गीत सहरयार के बोल खयाम का संगीत। और आप सबसे पूछा था कि आवाज़ किसकी है, तो आप सबने सही पहचाना, सुमधुर आवाज़ आशा भोसले की है, बिल्कुल सही। और अब हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, उनको हम साझा करते हैं कि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उन लोगों की कमी नहीं शाख पर, ये शेर थोड़ा सा कुछ अलग है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कुछ शेर इस तरह का है जो आप कहना चाह रहे हैं। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि शबे फिराक उठे दिल में और भी कुछ दर्द, मैं कैसे कह दूं तेरी याद रात भर आई, क्या बात है। हमारे को श्रोता ने लिखा है कि उनके जीवन साथी का जन्मदिन 71वां जन्मदिन था और सीनियर सिटीजन उसी दिन पिकनिक पर गए थे दोस्तों के अनुरोध पर। तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाइए, हसरत जयपुरी की पंक्तियाँ बोल दी थी, बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि वह भी अपनी पत्नी से बहुत उनकी समझदारी से प्रेरित हैं और वह उनका सदा साथ देती हैं और उनके जीवन के मंगलमय की प्रार्थना वो कर रहे हैं और हम भी आप सभी के जीवन की मंगल की कामना करते हैं, ऐसे ही साथ बना रहे। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप बढ़िया कोई ज़बरदस्त सी, बड़ी जोरदार सी, कोई बढ़िया सी शायरी दीजिए जो देशभक्ति की बात हो या वीरस की बात हो। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल, बहुत प्रोत्साहन देने वाला शेर है और आपने भी यही बात लिखी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनके शहर में आग बरस रही, इस पर लिखते हैं, समय दिल शायरा न होने के बजाय दिल गर्मी से जल रहा है। अरे बारिश हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, बस समय की बात है, अपने समय से सब कुछ आ जाता है। और हमारे श्रोता ने लिखा, इश्क का नमक की मोहब्बत की चाशनी में तेरी हम डूब रहे, मेरे प्रेम कहानी का रशाई मोहब्बत। अच्छा, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। जी बहुत बढ़िया होता है ये प्रेम भी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारे, शेर हमारे एक ये पंक्ति हमारे एक बड़े प्यारे से श्रोता ने लिखी है दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए हमारे देश में हाथी का नाम राम सिंह है, चेतक का नाम, घोड़े का नाम चेतक, और इनमें भी वही देशभक्ति है जो एक देशभक्त में, एक देशभक्त राजा में है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो, जी वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ये पंक्तियां उन्हें पसंद है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की, क्षमा दया त्याग तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कब कहाँ कब हारा, सच पूछो तो शेर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की है, बिल्कुल सही। बलिदान और पराक्रम जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर, जिसमें सुदेश से प्यार नहीं,

हर्षिता लिख रही हैं कि कैसे लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को, गहरी बातों को लिख देते हैं। वो शेर व शायरी की बात के बारे में कह रही हैं कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ, यही काम कवियत्रियों ने भी करा है कि कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, कितनी सुंदर बातें और जीवन का ज्ञान दे जाते हैं। मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ उनको पढ़कर, क्या कला है इन सब में। बिल्कुल सही है। और अब हम जल्दी से अगले गीत की तरफ बढ़ें, और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हुए अगला जो शेर है वो हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं कि जो अगला गीत हम आपको पहुंचाने वाले हैं, देने वाले हैं, वो अगला गीत बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा प्यारा सा है। इस गीत के लिए आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ जो हैं ये गाई किसने हैं, यानी गायक कलाकारों के नाम बता दीजिएगा। और हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, ये हमने अपनी इबारत में साझा किया है। आप अपनी शायरियाँ देशभक्ति से भरी अगर कुछ हैं तो भेजते जाइएगा और सुनिए ये।

0: मिर्ज़ा गालिब की इन पंक्तियों को मिर्ज़ा गालिब फिल्म से ही हम सुन रहे थे। ग़ुलाम मोहम्मद ने इन्हें संगीत दिया और गाया है, जिनके बारे में हमने आपसे पूछा था कि गायक कलाकार कौन है, तो सुरैया और तलत महमूद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

बात है, वतन की धूल भी आंखों में सुरमा लगाती है। ये धरती की माँ की गोद की गर्माहट रखती है, हमारा सिर हमेशा झुका रहे इसके सम्मान में, यही दुआएं सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में रहती हैं। बढ़िया बात लिखते हैं आप। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने जो बढ़िया सी लिखी है कि असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी अराति सैन्य सिंधु में सुवाडनी से जलो प्रवीर हो जय जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ ये लिख रहे हैं कि आदमी को खुदा मत कहो, आदम खुदा आदमी खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदमी जुदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बात कहते हैं और लिखते हैं कि उन्हें एक कविता बचपन से पसंद है और कविता का वो कहते हैं सिंहासन हिल उठे वाली जो कविता उन्हें पसंद है उसके बारे में जिक्र किया है। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार सी कविता आई है, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पर तोड़ दूँ तेरी गली ना छोड़ूं दुनिया में छोड़ दूं। और ये शायरी हम सब बचपन में बहुत पढ़ा करते थे, शायद याद हो आपको। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती हैं निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं कभी होंठ पर मुस्कान बनकर तो कभी आंखों में पानी बनकर। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता ने एक कविता खुद ने शायद ये स्वयं ने लिखी है या उन्होंने भेजी है, वो लिखती है मानवता भट गई ये युद्ध के ऊपर ये कविता लिखती हैं और अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ। बस करो अब ये युद्ध बन जाओ सारे बुद्ध, सारी सरहदों में शांति से रहो ना किसी की आंखों में आंसू भरो। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है मुंह ढक के सोइए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। एक बार कहते हैं हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार किसी को उन्होंने शायरी कही थी, वो किसी कौन है हम आप समझ सकते हैं, पर वो पलटकर उर्दू शब्दों का अर्थ ही पूछने लग गई। आप हिंदी में शायरी कह देते, हिंदी में भी कई सारी शायरियाँ बनाई गई हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं वतन की आबरू पर आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तहां होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे कि जब बिस्मिल जमी अपनी और अपना आसमां होगा। जी बिल्कुल सही। ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं, जो गए हैं वही तो लौटते हैं, जो गए ही नहीं वो क्या खाक लौटेंगे। क्या बड़ी बड़ी बातें आज पढ़ने में आ रही हैं, हमारे शायर निकल रहे हैं सारे श्रोताओं के हृदय से। तो मैं आप सबके शायरों को प्रणाम करती हूँ और अगला जो नगमा है, अगली जो शायरी है वो आपको भेंट करती हूँ। और वो भेंट है कि हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब ये शोर फिल्म का शेर है, हो सकता है किसी और फिल्म में भी इसे उपयोग किया गया हो, तो ज़रूर सुनिए और बताइए कि ये गीत आपको कैसा लगता है। और संतोष आनंद की अगर कोई पंक्ति आपको पसंद आती है इसके अलावा, तो ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा।

एक प्यार का नगमा है शोर फिल्म से हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाज़ में संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि बहुत सारी बातें उनसे पूछी और उसमें एक पूछा था कि जीवन दर्शन को छू लेने वाला ये बहुत प्यारा गीत है, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी की छोड़ आए कहीं अपनी जवानी, कहीं एक संतोष होता था शायर, गजल बन गई है दर्द की राजधानी। ये वो लिखते हैं संतोष फिल्म का ये गीत उन्हें पसंद है। और हमारे कई सारे श्रोताओं ने इस गीत को बहुत पसंद किया है और हमारे श्रोताओं ने शायरियों को भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, यानी समझाया है, उनको बहुत खूबसूरती के साथ बताया है, उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं तुम साथ

ना दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है जिंदगी, और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। हाँ, इस बात को, इस इन शब्दों को रिकॉर्ड नहीं किया गया, परंतु ये उसके वर्जन में थे, उस गाने में थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद के साइड वर्जन वाला इस गीत का उन्हें पसंद है कि जो दिल को तसल्ली दे वह साज उठा लो, दम घुटने से पहले आवाज उठा लो। जी, बहुत बढ़िया बात, और बहुत प्यार साथ सुख हो, शांति हो, कल्याण हो, बस यही प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। नमस्कार।

0: आजकल जंक फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तमाम तरह के ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनके जरिए आप खाना ऑर्डर करें और फटाफट आपके पास भोजन पहुंच जाता है। इनमें से ज्यादातर भोजन जंक फूड होता है, ज्यादा तेल मसालों वाला नुकसानदेह खाना। इसकी वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग घर के खाने से मुंह चुराने लगे हैं, बल्कि ये भी हो रहा है कि घर पर खाना खाने की बजाय बाजार से ऑर्डर कर देने का चलन बढ़ता चला जा रहा है। विज्ञापन लोगों को इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, जबकि घर का खाना सही सेहत का खजाना है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

पुराने जमाने में मौसम के हिसाब से फलों और सब्जियों का सेवन किया जाता था। सर्दियों के मौसम में कुछ खास पकवान बनते थे, गर्मियों के मौसम की डिश अलग हुआ करती थी और बारिश के मौसम में बहुत संयम के साथ अलग तरह की सब्जियां खाई जाती थी। लेकिन समय बदलने के साथ अब ये हो रहा है कि सारी सब्जियां साल भर उपलब्ध होती हैं, यानी मौसम बेमौसम आप जो मर्जी वो खा सकते हैं। युवा और किशोर पीढ़ी के साथ तो संकट ये है कि उन्हें पिज्जा बर्गर या दूसरे तरह के जंक फूड के सिवा घर का सादा खाना पसंद नहीं आता। जब आपको बहुत चटखदार और मसालेदार खाने की आदत लग जाए तो उसके आगे घर का खाना फीका लगने लगता है, जबकि घर के खाने में सेहत है, प्रेम है, लगाव है, अपनापन है।

0: जब बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं, जब पेट बिगड़ने लगता है, जब मोटापा बढ़ने लगता है, जब एसिडिटी या सिर दर्द या दूसरी तरह की तकलीफें आपको तंग करने लगती हैं, तब डॉक्टर कहते हैं कि सादा खाना अपनाइए, सही नींद लीजिए, और तब जाकर समझ में आता है कि जंक फूड ने आपके शरीर की हालत खस्ता कर दी है। जरूरत इस बात की है कि हम समय रहते चेत जाएं और हम इन एप्लीकेशंस या बाजार के चटकदार खाने के लालच से खुद को बाहर निकालें, संयमित और संतुलित भोजन लें और अपनी सेहत की हिफाजत करें, वरना ये हाल होगा।
1: साने की दवा, चक्रम की दवा,
2: धड़कन की दवा, धड़कन की दवा, तड़पन की दवा, और पेट में बंद पवन की दवा,
1: झटके की दवा, झटके की दवा, भटके की दवा, रास्ते के बीच झटके की दवा,
2: चक्कर की दवा, चक्कर की दवा, शक्कर की दवा, दिल से दिल की टक्कर की दवा,
1: ओमार बना रगड़ा,
2: मिट जाए झगड़ा,
1: ओमार बना रगड़ा,
2: मिट जाए झगड़ा,
1: धनक धनक धन दबड़ा, ओम धनक धनक धन दबड़ा, ओम धनक धनक धन,
3: हाय मेरा पेट बगड़ा,
4: अरे मेरा गुरु रखड़ा।

0: आयुर्वेद के पंडा।
1: आए आयुर्वेद के पंडा लेके दवा का डंडा। हे बोलो बोलो क्या है रोग तुम्हारा, कर दे उसको ठंडा।
0: अरे ब्रह्मा जी ने खुद बांधा है हाथ हमारे गंडा, और आसमान पर उड़े हमारे मगर ध्वज का झंडा।
1: हे धरती माता,
0: हे धरती माता।

0: सबको फांसी।
1: ओ माफ करो, बचपन ही में निकल पड़े थे होके ये सन्यासी।
2: अरे ऊंट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस में आसी। अरे ऊंट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस में आसी। अरे क्या है तुम्हारा है जा बैजा, क्या है तुम्हारी खांसी। अरे हम चाहे तो पल में दे दे जम राजा को फांसी।
1: हो बोलो।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक

0: लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया। एक

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल है। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रुपए बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

0: सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान

0: चौहान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में

0: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के

0: साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे।

0: और किससे
1: प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, भरत व्यास के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।

0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाली उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया। जिनकी हर

0: प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफ़ी ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

रफ़ी की आवाज़ों में हसर जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा। संजोग फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जंगली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सबका मंगल हो।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है दीपा महेश्वरी। तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं
2: मंजरी? बिल्कुल अच्छे हैं, और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: क्या बात है,
2: हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें।
1: बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, तो इस तरह की हम उन्हें याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज, गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया,
2: सही बात,
1: तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी, स्वस्थ मस्त रहेंगे।

0: के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास वक्त है और जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर समर्पित कीजिए।
1: बिल्कुल। और दीपा, आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे ही करेंगे, और हमारे साथी जो कुछ लिखकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे।
0: बिल्कुल। और देखो, वर्षा ऋतु आने को है, इंतज़ार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो, तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाव, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें।
1: बिल्कुल। और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग, अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है, और हम देखते हैं दीपा कि आज बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है, या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल। और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें, और आप सारे संदेश तो आएंगे, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: ला ला ला।
1: मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदासुदा की तरफ।
2: बिल्कुल,
1: जहां पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4।
2: जी,
3: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
4: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।
5: पिछले भाग में आपने सुना,
6: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही, अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
7: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
8: भैया, क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
5: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का 4वां और अंतिम भाग।
6: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर

0: तिला प्रसन्न हो रही है, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र? शीतला जब नखशिख से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
1: इतनी जल्दी सुधली?
0: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट? उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी, शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थीं। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
2: अम्मा ये देखता क्या हूं?
3: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
2: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
3: वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
2: बहुत अच्छा होता।
1: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे?
2: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूँ।
1: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो?
0: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला,
2: अम्मा अम्मा मुझे यहां से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
0: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा। मां ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी। साथ साथ

0: घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्तदाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा, मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा, शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
1: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

0: संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के 3रे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। 3रे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
2: मुझे यहां डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगीं। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
3: मैंने घोर अत्याचार किया है,

0: से उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
1: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
0: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा।
1: इस पत्र का उत्तर आया,
2: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
1: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गईं और बोली,

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो दीपा, हम लोग ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
4: बिल्कुल, और कहानी तो सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
3: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूँ कह लें कि बच्चे अगली क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
4: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
3: बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती, जैसे वहाँ पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, नया माहौल होता है चूँकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहाँ पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊँगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं।
4: हाँ,
3: तो
4: ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, वो जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर, और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है, और

0: एक दबाव सा शुरुआत में लगता
1: बिल्कुल,
0: है, फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल, और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा, और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं। उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाई से पीछे भागते, क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियाँ होती लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है, तो नए सत्र में ये चीजें रहती। तो वही माता पिता और शिक्षक
0: देखो
1: बच्चों की मदद करें,
0: बिल्कुल इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, छोटे बच्चे जहाँ अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना, फिर बच्चों को डराने के बजाय, हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे। फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत ज़रूरी हो गया है, जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज़ देखना होती है। तो थोड़े से एक रूटीन, जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ रूटीन ही नहीं था असल में, और अब एक सिस्टम बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, उनको छोटी छोटी चीज़ें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज़ भी सही जगह से तुमने रखे हैं पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो हम
0: वहीं देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की और बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण का है। इस तरह से इन्होंने बातें लिखी हैं, लेकिन देखा जाए दीपा तो हम लोग के समय में भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए, मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है, फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था, लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है, है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि तो, ये आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
1: बिल्कुल, तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराया नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं सबको।
0: चलिए

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में
1: मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने वाली
0: है। हम इतना मतलब ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी।
1: बिल्कुल, गर्मी
0: और हर एक अच्छी चीज के साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ में होती है।
1: देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश के फुहारे आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो उसके लिए कि पहला तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाएँ। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और
0: बिल्कुल, और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से हैं ये, और कह रही हैं कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मूड में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी। और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें, घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है, गर्मी और बरसात की जारी है। मच्छरों से बचाव के लिए अपने आस पास जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पानी जमा ना होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो, और सफाई करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं, और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
0: बिल्कुल, और साफ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है, तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर

0: कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़ी का कि साल भर इसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता है, तो हम उसमें हाँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी
1: बिल्कुल
0: है।
1: और शाम हो, जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां आप बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में, हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे और मच्छरों से
0: बचना है। और इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं, तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा न करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विशेष तौर पे मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे घर में हैं तो उनको कपड़े पूरे बाहर के और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो।
1: और देखो इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए। अगर हम गहरे रंगों के, भूरे हैं, काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं,
0: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं चाहते।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला।

0: फिर से तो
1: दिलीपा, अब तो भाई
2: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की, तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफ़ेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1/2 चम्मच, नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरे धनिया की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा, और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियाँ कहेंगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाई मज़ा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलूओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर गोल और चपटी टिक्कियाँ तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से, सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए, उसके ऊपर गरम जो माफ़ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है, और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फेंटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का भो रखना है, और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजाकर सर्व कीजिए।
1: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया के पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए।

0: तो दीपा देखो, बात तो करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला, तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल, तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मज़ेदार लगेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा ज़िद करेंगे या मन उनका नहीं होगा, तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के।
0: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से, सभी को मंजरी वर्मा और
1: दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओ, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूँगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर
1: अच्छा।
2: है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अब 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गाँवों में चले जाएँ, छोटे शहरों में चले जाएँ, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊँगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज़्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना ज़रूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज़्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है और अगर लिवर ख़राब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज़्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफ़ी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज़्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को ख़राब करता है। डायबिटीज़ होना, प्री डायबिटीज़ होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज़्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुँच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
2: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफ़ी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक

0: खराब हो चुका
1: ओ
0: होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़ें तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या
1: क्या
0: होते
1: है
0: हैं।
1: और
0: तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं। कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज़ हो सकती है या प्री डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर। तो ये दो तीन लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं। सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
1: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज़ है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वज़न कितना है। अगर वज़न हमारा बढ़ रहा है या ज़्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पर डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज़्यादा हो तो देर इज़ अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है। अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसानदेह दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे OPD में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है।
1: जी,
0: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफ़ी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज़ टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के ज़रिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। ख़ास तौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। फिर 14 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था, शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है मेरा।
0: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे। तीन तीन
0: जी
1: साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है
0: जी
1: हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू इट। तो मैंने 1 साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं हम,
0: जी
1: एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ERCP
0: जी
1: करके टेस्ट होते हैं, जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स
0: जी
1: पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे
0: जी
1: पढ़ने को।
0: जी
1: फिर
0: जी
1: 4-5 साल उधर काम किया। फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया
0: अरे
1: वापस।
0: क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, वो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें।
0: जी
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5 to 10% भी वज़न कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5 से 10% आपने वेट कम कर लिया तो ये बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाई है, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में दो और दवाइयाँ अभी अप्रूव हुई हैं, एक 1 साल पहले हुई थी और कभी 6 महीने पहले हुई।

0: आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो
1: जी
0: आजकल
1: जी
0: काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल हैं दवाइयाँ, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसन्स होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयाँ थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूँ कि वेट लॉस करो। अगर वे वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
0: हाँ, तो बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर, स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम
1: कर
0: कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूँ, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है।
1: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, अब 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, आई मीन ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें, हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है, एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है। तो लिवर, फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा।
1: जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को?
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ, लाइक थोड़ी बीट सोनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना,
1: क्या बात है,
0: मुझे पसंद है।
1: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है, सुनते हैं यही गाना। और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इट इज़ इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और ज़िंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो

0: आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है, हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी है, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
0: हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है,

0: है, क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है या क्या
1: हाँ,
0: है?
1: ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है
0: जी
1: उनका हम अगर डायबिटीज़ का चेकअप करें तो काफ़ी लोगों को प्री डायबिटीज़ होता है,
0: जी जी
1: मतलब डायबिटीज़ शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7 5.8 होता है मोस्ट प्लेसेस में। अगर आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6 5.7 है, आपको प्री डायबिटीज़ है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज़ शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीज़न, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज़ है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज़ वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज़ हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफ़ी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल के जो डायबिटीज़ की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज़ के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है। सो इट वर्क्स बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए
1: ना,
0: पहले?
1: अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो।
0: हाँ
1: हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफ़ी पुअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है,
0: ओके
1: प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल सब आधे लोग बोलते हैं हाँ वॉक करते हैं। तो वॉक इज़ नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की ज़रूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और
0: जी
1: थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए हफ्ते में 2 दिन, थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज़ नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज़्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा
1: हाँ,
0: बताइए।
1: ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर
0: बिल्कुल
1: होता है,
0: जी
1: और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे 70 to 80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10 से 15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो
0: यस
1: प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज़्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम, इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे
0: बिल्कुल
1: आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
0: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बताते हैं, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे है, किसी ने लिखा मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है, IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है, तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज़्यादा लो, फल फ्रूट ज़्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाए और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी। हर एक बीमारी को अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी,

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हैवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ और लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है
0: जी। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा, 10-15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज़ कहूँगा, जो चीज़ आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज़्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: जी जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को
0: जी।
1: जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है
0: जी जी।
1: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
0: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस, एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
1: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम

0: सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं
1: जी.
0: बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम. बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं. जैसे IBS बोला मैंने पहले,
1: जी, जी, जी.
0: सब टेस्ट कर लिए, कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया. मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं, मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो
1: जी,
0: उसको
1: जी.
0: हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो.
1: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
0: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं. अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं. कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती हैं, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं. कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है. माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं. अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
1: दोनों एक दूसरे के पूरक हैं.
0: Correct.
1: और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए.
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया.
1: चल छैया छैया सुनते हैं यही गाना.

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयाँ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज़्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्जॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए। तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी हैं। है हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे अपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा ज़रूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूँ कि एक बार आपका कोर्स ख़त्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
0: जी,
1: सो दैट इज़ कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज़ प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत न डाल लें, ये गड़बड़
1: करेक्ट,
0: है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियाँ होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियाँ, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: हाँ, अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी

0: होता रहे, तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम
1: जी
0: क्या है.
1: जी
0: इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके. आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर डायबिटीज़ बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो
1: जी
0: डायबिटीज़ पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरीसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है. अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है. एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो.
1: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग. इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय. रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

0: अब आपके मोबाइल में हमारा रेडियो कहीं भी कभी भी। अब आप सुन सकते हैं FM रेडियो लेक सिटी के प्रोग्राम्स देश और दुनिया के किसी भी कोने में।
1: रेडियो लेक सिटी, लेक
0: सिटी। हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR ऐप। यहीं आपको मिलेगा हमारा चैनल AIR उदयपुर FM लेक सिटी।
2: नॉन स्टॉप म्यूजिक, नॉन स्टॉप फन, इट्स कूलेस्ट वन, कूलेस्ट
0: वन। अब आप इसके आइकन को दबाएं और आनंद लें हमारे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का कहीं भी कभी भी।
3: हंड्रेड वन पॉइंट नाइन FM रेडियो लेक सिटी।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.

11.9 मेगाहर्ट्ज पर ये है एफएम रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को हैं और ये वक्त होता है हमारी इवनिंग लोकल विंडो के प्रोग्राम्स का, जिन्हें हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। और आज की इवनिंग लोकल विंडो में शुरुआत करेंगे युववाणी से और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम बातें मुलाकातें। शाम के 5 बजने को है और युवा साथियों के लिए आपके लिए सबसे पहले आएगा प्रोग्राम बातें मुलाकातें युववाणी, जो भरा होगा खास मनोरंजन और संगीत के साथ।

श्रोताओं, शाम के 5 बजने को है। अब युवा साथियों के लिए होगा ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर उनका खास कार्यक्रम युववाणी।

0: युवाओं की सोच, नए सपनों की उड़ान और ज्ञान से भरी एक नई शुरुआत के साथ आपका स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में,
1: जहां हर बात होगी कुछ खास, हर जानकारी होगी नई और हर विषय लेकर आएगा एक नई नजरिया। मैं हूं साहिल।
0: और मैं हूं गार्गी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर, जहां बात होगी विज्ञान और तकनीक की, नई दुनिया से लेकर इतिहास के अनसुने पन्नों तक।
1: आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे वर्चुअल रियलिटी जैसी आधुनिक तकनीक के बारे में, जहां हमें अलग ही डिजिटल दुनिया का अनुभव कराती है।
0: साथ ही सफर करेंगे एक खूबसूरत ऐतिहासिक जगह वाल्डेस पेनिनसुला की ओर, जहां प्रकृति और समुद्र के जीवन की अद्भुत कहानी देखने को मिलती है।
1: और साथियों, इतिहास के पन्नों से जुड़ेंगे तराइन के प्रथम युद्ध के साथ, जहां वीरता, रणनीति और संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कहानी छुपी हुई है।
0: इसके अलावा जानेंगे सिनेमा जगत की मशहूर पर्सनालिटीज अमरीश पुरी और जोसेफ थेलेपति विजय के सफर के बारे में, उनकी फिल्मों को और यादगार पलों के साथ।
1: और कार्यक्रम में आगे आज होंगे आज का इतिहास, खेल जगत की अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी जरूरी बातें।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये है वो मंच जहां सोच को मिलती है नई उड़ान और युवाओं को मिलता है ज्ञान का नया आसमान।
1: आप सुन रहे हैं युवाणी, युवा सोच नई उड़ान, सिर्फ आकाशवाणी उदयपुर पर।

0: दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने इंसान को एक अलग ही दुनिया का अनुभव देना शुरू कर दिया है। एक ऐसी दुनिया जहां हम बिना सच में वहां मौजूद हुए बिना भी खुद को उस जगह महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी यानी VR की।
1: बिल्कुल गार्गी, वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर द्वारा बनाई गई एक आभासी दुनिया को इस तरह से पेश किया जाता है कि यूज़र को लगता है जैसे वह सच में उसी वातावरण का हिस्सा हो। VR में 3D हेडसेट, सेंसर, मोशन ट्रैकिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इंसान उस डिजिटल दुनिया को देख, सुन और कई बार महसूस भी कर सकता है।
0: अगर आसान भाषा में समझे तो VR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, नई दुनिया है, जिसे तकनीक की मदद से इतना वास्तविक बनाया जाता है कि हमारा दिमाग उसे कुछ समय के लिए असली अनुभव की तरह महसूस करने लगता है। VR हेडसेट पहनने के बाद आप चारों तरफ देख सकते हैं, उस दुनिया में घूमने जैसा अनुभव ले सकते हैं और डिजिटल चीज़ों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और आजकल जो है वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल सिर्फ गेम्स तक लिमिटेड नहीं है, मनोरंजन के अलावा इसका उपयोग जो है शिक्षा, मेडिकल ट्रेनिंग, रिसर्च, बिजनेस और सेना की ट्रेनिंग में भी किया जा रहा है। सोचिए, एक डॉक्टर को बिना किसी असली मरीज को नुकसान पहुंचाए सर्जरी की प्रैक्टिस करने को मिल सकती है, और साथ ही साथ पायलट को असली विमान उड़ाने से पहले वर्चुअल सिम्युलेटर के साथ ट्रेनिंग करने को मौका मिल सकता है। वही VR की खासियत है।
0: VR का इतिहास भी काफ़ी रोचक रहा है। 1950 के दशक में मॉर्टन हेलिंग ने ऐसी तकनीक के बारे में सोचा जिसने इंसान की कई इंद्रियों के जरिए किसी अनुभव को महसूस कर सके। उन्होंने सेंसोरोमा नाम की मशीन बनाई जो देखने, सुनने और महसूस करने का अनुभव देने की कोशिश करती थी।
1: इसके बाद 1968 में इवान सुदरलैंड ने पहला हेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम बनाया। यह डिवाइस जो था काफ़ी भारी था और शुरुआती स्तर का था, लेकिन इसी ने आगे आने वाली VR तकनीक की नींव रखी थी।
0: 1970 से 1990 के बीच VR का इस्तेमाल मेडिकल, फ्लाइट सिमुलेशंस, कार डिज़ाइन और मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों में होने लगा। इसके बाद 1990 के दशक में यह तकनीक आम लोगों तक पहुंचने लगी और गेमिंग इंडस्ट्री के तौर पर यह लोकप्रिय बनी।
1: साथियों, आज के समय में VR हेडसेट काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। इनमें हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन्स, 3D ऑडियो और ना मोशन सेंसर और कंट्रोल जैसी सुविधाएं होती हैं जो यूज़र को वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा वास्तविक अनुभव देती हैं।
0: VR के साथ एंगुमेटेड रियलिटी यानी AR और मिक्स्ड रियलिटी जैसी तकनीकों में भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। AR असली दुनिया के ऊपर डिजिटल चीज़ों को जोड़ती है, जबकि मिक्स्ड रियलिटी में असली और डिजिटल दुनिया आपस में मिलकर काम करती है।
1: साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में VR बहुत उपयोगी साबित हो रही है। छात्र किसी जगह या घटना को सिर्फ किताब में पढ़ने के बजाय

0: उसे वर्चुअली अनुभव कर सकते हैं। मेडिकल स्टूडेंट सर्जरी की ट्रेनिंग कर सकते हैं और इंजीनियरिंग के छात्र मशीनों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
1: मेडिकल क्षेत्र में वीआर ने एक नई दिशा दी है। सर्जन वीआर सिमुलेशंस की मदद से अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। इससे मरीजों की सुरक्षा बढ़ती है क्योंकि डॉक्टर पहले डिजिटल वातावरण में अभ्यास कर सकते हैं।
0: लेकिन इस तकनीक के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। वीआर उपकरणों की कीमत, ज़्यादा कंप्यूटर क्षमता की ज़रूरत और लंबे समय तक इस्तेमाल करने में अपनी परेशानियां जो है वो मौजूद हैं। आने वाले समय में इसे और ज़्यादा आसान और किफ़ायती बनाने पर काम किया जा रहा है।
1: भविष्य में वीआर सिर्फ गेम या मनोरंजन का साधन नहीं रहेगी, बल्कि पढ़ाई, काम, मीटिंग्स और ट्रेनिंग का भी एक आसान और अहम हिस्सा बनेगी।
0: वर्चुअल रियलिटी हमें दिखाती है कि विज्ञान और तकनीक से मिलकर ऐसी दुनिया बना सकता है जहां हमारी कल्पना नए अनुभवों को बदल सकती है।

0: दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि धरती पर एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ समुद्र, रेगिस्तान और अनोखे जीव एक साथ देखने को मिल जाए? एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत और अलग रूप में नज़र आती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही खास जगह की, वाल्देस पेनिनसुला की।
1: बिल्कुल गार्गी, वाल्दे पेनिनसुला अर्जेंटीना के पैटागोनिया क्षेत्र में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थान है। यह जगह अपनी बायोडायवर्सिटी यानी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और समुद्र जीवन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
0: वाल्दे पेनिनसुला को 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। यह जगह समुद्र से घिरी हुई है और इसका आकार भी काफ़ी अनोखा है। यहाँ आने वाले लोगों को ऐसा अनुभव होता है जैसे प्रकृति की एक खुली किताब के बीच खड़े हों।
1: इस जगह की सबसे खास बात है यहाँ मिलने वाली समुद्री जीव। वाल्दे पेनिनसुला को खास तौर पर सदर्न यानी कि दक्षिणी राइट व्हेल के लिए जाना जाता है। हर साल ये व्हेल प्रजनन के लिए अपने बच्चों को जन्म देने के लिए इस इलाके के शांत पानी में आती है।
0: सोचिए साहिल, समुद्र की लहरों के बीच इतनी बड़ी वेल को देखना कितना शानदार अनुभव होगा।
1: बिल्कुल
0: यहाँ पर्यटक वेल वॉचिंग के लिए आते हैं और प्रकृति को इतने करीब से देखने का मौका पाते हैं।
1: बिल्कुल गार्गी, और सिर्फ व्हेल ही नहीं, यहाँ समुद्री शेर, सील, पेंगुइन और कई तरह के पक्षी भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का पूरा पारिस्थितिक यानी कि जो इकोसिस्टम है वो बहुत खास है क्योंकि यहाँ जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर जीवन की अलग अलग किस्में देखने को मिलती हैं।
0: वाल्दे पेनिनसुला का मौसम भी इसे और ख़ास बनाता है। यहाँ एक तरफ सूखा और शांत रेगिस्तान इलाका दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ नीला समुद्र और समुद्री जीवन की दुनिया देखने को मिलती है। यही विरोधाभास इस जगह को बाकी जगहों से अलग बनाता है।
1: बिल्कुल, और यह क्षेत्र जो है वैज्ञानिकों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ होने वाले शोध से समुद्र जीवों, उनके व्यवहार और पर्यावरण संरक्षण को समझने में मदद मिलती है। कई वैज्ञानिक यहाँ आकर समुद्री जीवन पर अध्ययन करते हैं।
0: लेकिन दोस्तों, इतनी खूबसूरत जगहों के साथ हमारी जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों का असर इन जीवों पर पड़ सकता है, इसलिए ऐसे प्राकृतिक स्थानों को बचाना बहुत ज़रूरी है।
1: वाल्दे पेनिनसुला हमें यह सीख देता है कि प्रकृति कितनी विशाल और अद्भुत है। इंसान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन प्रकृति अपनी एक अलग दुनिया है जिसे समझना और सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है।
0: दोस्तों, यह जगह सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहाँ हमें धरती ने उन जीवों को देखने का मौका मिलता है जो हमारे साथ इस ग्रह को साझा कर रहे हैं।
1: तो वाल्दे पेनिनसुला एक ऐसी जगह है जहाँ हर लहर एक कहानी कहती है और हर जीव प्रकृति का एक हिस्सा दिखाता है और हर नज़ारा हमें पर्यावरण के करीब ले जाता है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भारत का इतिहास वीरता, संघर्ष और ऐसी कई घटनाओं से भरा हुआ है जिन्होंने देश की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, यह सिर्फ दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी बल्कि सत्ता, रणनीति और नेतृत्व की एक बड़ी परीक्षा थी।
4: बिल्कुल गार्गी, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 इसी में लड़ा गया था। यह युद्ध उस समय के शक्तिशाली राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और गौरी वंश के शासक मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। यह युद्ध वर्तमान हरियाणा में तराइन नामक स्थान के पास हुआ, जिसे आज तरावड़ी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
3: उस समय भारत के उत्तरी हिस्से में कई छोटे बड़े राज्य थे और हर शासक अपने क्षेत्र की सुरक्षा और विस्तार के लिए प्रयास कर रहा था। वहीं मोहम्मद गौरी भारत में अपनी सत्ता बढ़ाना चाहता था, इसी उद्देश्य से उसने भारत की ओर यह अभियान किए।
4: मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में अपने प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ तो उसे एक मजबूत चुनौती मिली। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के शासक थे और उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक थी।
3: पृथ्वीराज चौहान की सेना में बड़ी संख्या में सैनिक, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। उस समय युद्ध में हाथियों का बहुत महत्व होता था क्योंकि वे दुश्मन की सेना पर दबाव बनाने में मदद करते थे। राजपूत सेना अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी।
4: और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की सेना भी अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। उनकी सेना में तेज गति से हमला करने वाले घुड़सवार सैनिक शामिल थे और गौरी की रणनीति तेज आक्रमण और युद्ध में चालाकी के लिए जानी जाती थी।
3: जब दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने आई तो एक बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। दोनों तरफ से बहादुरी के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने शानदार प्रदर्शन किया और गौरी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
4: साथियों, इतिहास के पन्नों के अनुसार युद्ध में मोहम्मद गौरी घायल हुआ और उसे युद्ध मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान की ये जीत जो थी वो समय राजपूत शक्ति और एक बड़ी सफलता के लिए मानी गई।
3: लेकिन इस जीत के बाद की कहानी खत्म नहीं हुई।

0: इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने शानदार प्रदर्शन किया और गोरी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
1: साथियों, इतिहास के पन्नों के अनुसार युद्ध में मोहम्मद गौरी घायल हुआ और उसे युद्ध मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान की ये जीत जो थी वो समय, राजपूत शक्ति और एक बड़ी सफलता के लिए मानी गई।
0: लेकिन इस जीत के बाद की कहानी खत्म नहीं हुई। मोहम्मद गौरी ने अपनी हार से सीख ली और अगले ही साल यानी 1192 ईस्वी में वह दोबारा बड़ी तैयारी के साथ भारत आया। इसके बाद हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसने उत्तर भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया।
1: तो साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध इसी बात का उदाहरण है कि इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो आने वाले कई वर्षों की दिशा तय करते हैं। साथियों, अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक नया गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: भारतीय सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़, अंदाज और अभिनय जो है हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है. आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शानदार अभिनेता की जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से हिंदी फिल्मों में एक अलग पहचान बनाई. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी जी की.
4: बिल्कुल साहिल, आज यानी 22 जून को अमरीश पुरी जी का जन्म जयंती है. उनका जन्म साल 1932 में हुआ था. उन्होंने अपनी मेहनत और बेहतरीन अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा मुकाम बनाया जिसे आज भी याद किया जाता है.
3: अमरीश पुरी जी की सबसे बड़ी पहचान है उनकी दमदार आवाज़ और स्क्रीन पर उनकी शानदार मौजूदगी. जब वह पर्दे पर आते थे तो दर्शकों का ध्यान अपने आप उनकी तरफ चला जाता था.
4: उनका सबसे यादगार किरदार रहा है फिल्म मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो. उनका मशहूर डायलॉग है, मोगेम्बो खुश हुआ, आज भी लोगों की जुबान पर है और भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार डायलॉग्स में से एक है.
3: लेकिन अमरीश पुरी जी सिर्फ विलेन के किरदारों तक सीमित नहीं थे. उन्होंने अलग अलग तरह के रोल्स निभाए हैं. फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उनके सख्त लेकिन भावनात्मक पिता के किरदार को भी दर्शकों में बहुत पसंद किया है.
4: इसके अलावा घातक, करण अर्जुन, नायक, विरासत जैसे फिल्मों में भी उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई. उन्होंने हर किरदार को अपनी अलग शैली और ऊर्जा से खास बना दिया.
3: उनकी आवाज़ इतनी प्रभावशाली थी कि उनके डायलॉग आज भी लोगों को याद हैं. फिल्म इंडियाना जॉन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में निभाए गए उनके किरदार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई गई है.
4: अमरीश पुरी जी के अभिनय को कई सम्मान मिले. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और वह हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन कलाकारों में शामिल हुए.
3: अगर उनके गानों की बात करें तो उनकी फिल्मों के कई गाने आज भी लोगों को जो है पहली पसंद है. फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के रोमांटिक गाने हों या फिर पारिवारिक माहौल वाले गीत, आज भी ये सब जो है याद किए जाते हैं.
4: उनकी एक खास बात यह थी कि वह अपने किरदार को सिर्फ निभाते नहीं थे बल्कि उसमें पूरी तरह डूब जाते थे. यही वजह है कि उनका कोई भी रोल छोटा नहीं लगता था.
3: साथ ही उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए मेहनत और धैर्य कितना ज़रूरी है. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने थिएटर किया और लंबे संघर्ष के बाद अपनी पहचान बनाई.
4: आज अमरीश पुरी जी हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी आवाज़, उनके किरदार और उनके यादगार डायलॉग हमेशा दर्शकों के दिल में रहेंगे.
3: क्योंकि कुछ कलाकार सिर्फ फिल्म नहीं करते बल्कि इतिहास का हिस्सा बनते हैं और अमरीश पुरी जी उन्हें महान कलाकारों में से एक हैं.

0: सिनेमा के दुनिया के कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी फिल्मों से नहीं बल्कि अपने अंदाज़, मेहनत और फैंस के प्यार से एक अलग पहचान बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ही सुपरस्टार की, जोसेफ थलीपति विजय की।
1: बिल्कुल गार्गी, विजय का जन्म 22 जून 1900

0: 1974 के चेन्नई के शहर में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक बाल कलाकार के रूप में की थी और धीरे धीरे तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में अपनी जगह बनाई।
1: विजय की खासियत है उनका डांस, स्क्रीन प्रेजेंस और अपने किरदार को यादगार बना देने की क्षमता। उनकी फिल्मों में एक्शन, इमोशन और मनोरंजन का शानदार मेल देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल, और उनकी शुरुआती सफल फिल्मों में गिल्ली, थिरुपाची और पोकिरी जैसी फिल्में शामिल हैं जिन्होंने उन्हें एक बड़े स्टार के रूप में पहचान दिलाई।
1: इसके बाद विजय ने कई अलग अलग तरह के किरदार निभाए। फिल्म तुपक्की में उनका आर्मी ऑफिसर वाला किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आया था। वहीं कत्थी में उन्होंने सामाजिक मुद्दों को एक मजबूत कहानी के साथ पेश किया था।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ फिल्म मार्शल और सरकार ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं मार्शल और लियो जैसी फिल्में जो हैं उन्हें एक्शन और स्टाइल को नई पहचान दी है।
1: विजय के डायलॉग्स भी उनके फैंस के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। उनकी फिल्मों में आत्मविश्वास और प्रेरणा से जुड़े कई डायलॉग्स लोगों को पसंद आते हैं और उनकी स्क्रीन पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाते हैं।
0: उनका स्टाइल, उनका डांस और उनके गानों का अंदाज जो है वो काफ़ी उनकी पहचान का जो है बड़ा हिस्सा है। उनकी फिल्मों के गाने जैसे वायडिस कोलावेरी ही नहीं बल्कि विजय की अपने हिट ट्रैक्स जैसे वाथी कमिंग और अरबिक कुथू भी फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं।
1: विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक शानदार परफॉर्मर है। उन्होंने अपनी फिल्म के जरिए कई बार सामाजिक संदेश भी दिए हैं, जैसे शिक्षा, जिम्मेदारी और समाज में बदलाव जैसे विषय।
0: साथ ही उनकी मेहनत और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें कई सम्मान मिले हैं। उन्हें उन कई फिल्म अवार्ड्स और दर्शकों का प्यार मिला है। उनके फैंस उन्हें प्यार से थैलेपति कहकर बुलाते हैं।
1: विजय की सबसे खास बात यह है कि वह हर फिल्म में खुद को नए तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उनकी एक अलग पहचान बनी हुई है।
0: एक बाल कलाकार से लेकर सुपरस्टार तक का उनका सफर दिखाता है कि लगातार मेहनत और अपने काम के प्रति जुनून इंसान को कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।
1: तो ये थी कहानी जोसेफ थैलेपति विजय की, जिनकी एक्टिंग, डांस और अंदाज ने करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है।

0: साथियों, हमारे विशेष अगले सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं विजय अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस एक्टिविस्ट सिंडिया लॉपर की, जिन्होंने अपनी अलग पहचान और शानदार संगीत से दुनिया भर के लोगों का दिल जीता है, और साथ ही साथ उनके ह्यूमैनिटेरियन और एक्टिविस्ट राइट में भी काफ़ी उनका योगदान है।
1: बिल्कुल, सिंडी लूपर का जन्म 22 जून 1953 को न्यूयॉर्क के यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। बचपन से ही उन्हें म्यूज़िक में इंटरेस्ट था और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है।
0: साथ ही उनके कैरियर की शुरुआत जो है 1980s में हुई, और उनका डेब्यू एल्बम शी इज़ सो अनयूजुअल बेहद सफल रहा। इस एल्बम के कई सॉन्ग्स इंटरनेशनल हिट्स बने और उन्हें दुनिया भर में अपनी पहचान मिली।
1: उनके प्रसिद्ध गीतों में से गर्ल्स जस्ट वॉन्ट टू हैव फन, टाइम आफ्टर टाइम, ट्रू कलर्स और ऑल थ्रू द नाइट शामिल है। उनकी यूनिक वॉइस और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ने उन्हें काफ़ी पॉप म्यूजिक में सफलता दिलवाई है। अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने दुनिया भर में करोड़ों रिकॉर्ड्स बेचे हैं और कई दशकों तक म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाए रखी है। उन्होंने ब्रॉडवे म्यूजिकल किंग के बूट्स भी काफ़ी सफल रहा था।
0: साथ ही उन्हें अपने शानदार योगदान के लिए ग्रैमी अवार्ड्स, टॉनी अवार्ड और एमी अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार मिला, और ईयर 2025 में उन्हें रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। साथियों, बात करते हैं दूसरे हॉलीवुड की महान एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप के बारे में, जिन्हें विश्व सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता है।
1: बिल्कुल, मेरिल स्ट्रीप का जन्म 22 जून 1949 को न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय में रुचि थी और उन्होंने आगे चलकर ड्रामा और

0: थिएटर की पढ़ाई कर अपने कौशल को निखारा था।
1: उन्होंने 1970 के दशक में अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की और बहुत कम समय में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों और क्रिटिक्स का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने ड्रामा, कॉमेडी, म्यूजिकल और बायोग्राफिकल फिल्मों सहित लगभग हर जॉनरा में यादगार अभिनय दिया है।
0: उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में क्रेमर वर्सेस क्रेमर, सॉफीज़ चॉइस, द डेविल वियर्स पराडा, द आयरन लेडी एंड ममा मिया और द लास्ट पोस्ट शामिल हैं। अलग अलग किरदारों को पूरी सहजता से निभाने की उनकी क्षमता उन्हें सबसे अलग बनाती है।
1: साथियों, सम्मानों की बात करें तो मेरिल स्ट्रिप को 3 एकेडमी अवार्ड्स, 9 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, 2 बाफ्टा अवार्ड्स और 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2010 में उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और 2024 में हॉनररी पाल्मे डी'ओर से भी सम्मानित किया गया है।
0: मेरिल स्ट्रीप की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और सीखने की इच्छा किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में असाधारण सफलता दिला सकती है।
1: साथियों, हॉलीवुड के साथ अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की प्रसिद्ध कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट अर्पिता सिंह की, जिन्होंने अपनी अनूठी चित्रकला के माध्यम से भारतीय कला जगत में एक विशेष पहचान बनाई है।
0: बिल्कुल, अर्पिता सिंह का जन्म वर्ष 1937 में वेस्ट बंगाल में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और आगे चलकर कला के क्षेत्र में अपना सफर शुरू किया।
1: उन्होंने न्यू दिल्ली के दिल्ली पॉलिटेक्निक के कॉलेज ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की। शुरुआती दौर में उन्होंने टेक्सटाइल डिज़ाइन से भी जुड़कर काम किया, जिससे उनकी जो कलात्मक शैली है और समृद्ध बन गई।
0: अर्पिता सिंह की पेंटिंग्स अपने चमकीले रंगों, भारतीय लोक तत्वों और रोजमर्रा के जीवन के चित्रण के लिए जानी जाती थी। उनकी कला में विशेष रूप से महिलाओं के जीवन, समाज, स्मृतियाँ, युद्ध, शांति और मानवीय भावनाओं को गहराई से प्रस्तुत किया था।
1: और अगर सम्मानों की बात करें तो उन्हें वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठित कला प्रदर्शनियों में विशेष सम्मान और सराहना प्राप्त हुई है।

0: साथियों, अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट आज के इतिहास का। आइए जानते हैं आज यानी 22 जून के दिन क्या क्या इतिहास में खास बात हुई है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1940 की। इसी दिन फ्रांस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ आर्मिस्टिस पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद पश्चिमी यूरोप में स्थिति बड़ा बदलाव आया।
1: वर्ष 1941 में 22 जून के दिन जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक किया। इस मिलिट्री मिशंस को ऑपरेशन बर्बोसा के नाम से जाना जाता था और यह वर्ल्ड वॉर टू की सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक मानी जाती है।
0: और साथ ही साथ बात करें तो इतिहास ने न केवल बीते हुए समय की जानकारी ही नहीं देता, बल्कि उन घटनाओं को और व्यक्तित्व से भी सीखने की प्रेरणा देता है। और भारत के इतिहास में भी यह दिन खास है, क्योंकि 22 जून 1869 में के पुणे में स्वतंत्रता सेनानियों चापेकर ब्रदर्स ने ब्रिटिश अधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की, और उसका समय जो है प्लेग नियंत्रण द्वारा अपनाई गई कठोर नीतियों के कारण विवादों में थे।
1: इतिहास हमें केवल बीते हुए समय की जानकारी नहीं देता, बल्कि उन घटनाओं को और व्यक्तित्वों से सीखने की प्रेरणा भी देता है जिन्होंने समाज और दुनिया को नई दिशा दी है।
0: साथियों, अब ले चलते हैं आपको स्पोर्ट्स अपडेट की ओर। तो बात करते हैं सबसे पहले फुटबॉल की कारगिल से।
1: जी हाँ, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात। जर्मनी के कॉटे डिलेवर ने डिलेवर के खिलाफ 2-1 की रोमांचक जीत दर्ज की है। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी डेनिस उंदाव ने 2 महत्वपूर्ण गोल कर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई और जर्मनी के नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली।
0: और क्रिकेट की दुनिया से खबर यह है कि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल तकनीकी चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। साथ ही साथ बात करें टेनिस की, तो विंबलडन की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर चल रही हैं और खिलाड़ी प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम के लिए अभ्यास से जुटे हैं।
1: तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारा ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ गार्गी और मेरे साथ है
0: साहिल।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को है, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रूपये से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी और श्रोताओं शाम के 6:05 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम बातें मुलाकातें का, जिसमें आज हमारे मेहमान हैं पर्यावरण प्रेमी और पूर्व बैंक अधिकारी गणपत सिंह राणावत जी, जिनसे बात करेंगे गजेंद्र सिंह राठौड़।
1: श्रोताओं, यह कार्यक्रम बातें मुलाकातें और इस कार्यक्रम

0: आज हमारे मेहमान हैं गणपत सिंह जी राणावत साहब। आप पूर्व बैंक अधिकारी और वर्तमान में, अगर हम कहें वर्तमान संदर्भ में, तो आप पर्यावरण प्रेमी हैं, और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से पर्यावरण के प्रति आपका जो भाव है या जो प्रेम है उस को ध्यान में रखते हुए आपने प्रकृति के संरक्षण में काफ़ी योगदान किया है। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
1: थैंक यू गजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया।
0: तो राणा साहब, अगर हम बात की जाए, पहले बैंक अधिकारी रहे हैं और बैंक में सेवा के दरमियान
1: जी
0: भी जहां आप रहते थे या फिर जो आपका निवास स्थान है वहां पर आपने पर्यावरण से जुड़ी छोटी मोटी पहल शुरुआत की, और पर्यावरण के प्रति जो आपका प्रेम है इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें।
1: मैं बताता हूँ कि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव पोमावा है, पाली डिस्ट्रिक्ट है और सुमेरपुर तहसील है। तो खेती से जुड़ाव स्वरूप से था, मेरे पिताजी कृषक ही थे। और फिर मैंने मेरा बीएससी एग्रीकल्चर उदयपुर राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से किया, तो वहाँ भी पौधों के बीच में घूमना रहता था। मालूम पड़ता है हमारा आरसीए का अगर आप कैंपस देखें तो बहुत ही खूबसूरत है, पेड़ों से हरा भरा है। तो उससे मेरा लगाव पौधों के प्रति हुआ। और मैं जहाँ जा रहा, जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही, किराए के हाउस में भी हमने कोशिश की कि कुछ प्लांटेशन हो, गार्डन हो। मैं खुद अपनी मेहनत से वो गार्डन लगाता था। और फाइनली जब मैं सेटल उदयपुर हुआ, तो उदयपुर में विनायक नगर रामगिरी में है, तो वहाँ पे भी मेरे हाउस, जब मैंने हाउस बनाना शुरू किया तो 5-7 मकान बने हुए थे। और वहाँ पे हमने प्लान किया कि भाई हम पेड़ लगाएंगे। तो मैं और मेरा एक बंदा जो मकान बनाने में सहयोग कर रहा था, उसी से लेबर ली। दिन में वो खड्डे खोदता था, एक प्लॉट के बीच में हम वो गड्ढा बनाते थे ताकि कोई भी दरवाज़ा खोले तो वो हटे नहीं। और वो शुरुआत पेड़ लगाने की हुई। फिर कॉलोनी के 3-4 बंदे और मेरे साथ जुड़ गए, तो वो कारवा ऐसा चला कि वो लगभग 400 पेड़ आज की तारीख में हमारी कॉलोनी में है। और वो कॉलोनी शाम के टाइम में लोग घूमने के लिए आते हैं, पर्यावरण से भरपूर हैं, चिड़ियाँ रहती है, बर्ड्स रहती है। तो वहाँ से मेरी ये शुरुआत हुई। और फिर मैं बैंकिंग में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, मैं एज ए ग्रामीण विकास अधिकारी, जिसको रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, उसके तहत मैं गया। उसमें भी एग्रीकल्चर के एडवांसेस शुरू में हम करते थे, तो खेतों में जाना, किसानों से बातचीत करना, वो हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहती थी। और मतलब एक तरह से किसानों के प्रति हमारी आत्मीयता रहती थी, उनसे जुड़ाव, उनकी प्रॉब्लम को समझने में आसानी रहती थी। तो जब 2019 में अक्टूबर में मेरा रिटायरमेंट हुआ और 2020 में कोरोना आया, और हमारे पास में पूछते नहीं, मेरे और मेरे बड़े भाई साहब के साथ मिला के हमारे पास में 70 बीघा के लगभग एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें ट्रेडिशनल खेती होती थी, और वो भी हम बटाई पे देते थे। तो मुश्किल से कुछ ऐसा खर्चा भी नहीं, मतलब इनकम भी नहीं होती थी कोई उसको मेंटेन भी कर सके। तो मेरा वो था कि इसको बगीचा लगाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। फिर बड़े भाई साहब की डेथ हो गई 2019 में हुई, और मीनवाइल मेरा रिटायरमेंट हुआ और कोरोना आया। कोरोना के टाइम में हमारे सब, मेरे दोनों भतीजे, मेरा जो सन में आर्मी में है वो, और हम सब लोग गांव में इकट्ठे हुए और वहां पे प्लान शुरू किया कि हम लोग इसमें बगीचा लगाएंगे। उसके लिए हमने सर्च शुरू की कि भाई इसको क्या लगावें। सबसे पहले फेंसिंग हमने वो की, उसके बाद में तय करना था कि, हालांकि मैं बीएससी एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर का बेसिक नॉलेज था, लेकिन लगभग 33 साल की बैंक की जॉब में वो चीज़ें हमें याद नहीं थी। और फिर इतने सालों में डेवलपमेंट भी बहुत सारे हुए, तो वो डेवलपमेंट के लिए मुझे लोकल लोगों से, जो लोकल जैसे पाली और सिरोही में, जिले में जितने भी ऑर्चर्ड थे वहाँ पे हमने विजिट की, उनसे जाने कि भाई हमें यहाँ की ज्योग्राफी में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के सॉइल में कौन सी क्रॉप ज़्यादा अच्छी हो सकती है, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो हमें लगभग, मैंने 15 ऑर्चर्ड विजिट किए, और उसमें मुझे फाइनली कोई, आप बागवानी के लिए आप नर्सरी में जाओगे तो वो बोले नींबू लगा दो, या हमारे एरिया में ये भी अनार भी बहुत होता है वो लगा लो। लेकिन एक जो बुज़ुर्ग किसान थे पढ़े लिखे, भंवर सिंह जी चौधरी थे, हमारे गांव के पड़ोसी थे, उनका एक सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ऑर्चर्ड था, वो देखने गए। वो देखते मतलब मन खुश हो गए, उनके पास में सारे पेड़ थे, आम के पेड़ थे, अनार के थे, नींबू के थे, चीकू के थे और आंवला भी थे। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप आंवला लगाओ। आंवला में एक तरह से ऑर्गेनिक ही हैं, थोड़ी बहुत मेहनत कर

0: करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एज बहुत अच्छी है, आने वाला समय इसका बहुत अच्छा है, तो वो आप लगाओ, और फेंसिंग में आप जामुन करो। तो वो हम लोग प्लान करके फिर इसकी कि कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, तो हम लोगों ने उदयपुर में गुलाब बाग के जामुन बहुत फेमस है, तो जामुन की वैरायटी तो हमने यहाँ से ली, और चकाया वैरायटी है आंवली की, वो हम पुष्कर से लाए, और वो हमारा कारवा शुरू हुआ। और उसमें हमारे रूखाड़ा गांव के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में श्रवण सिंह जी है, यंग बॉय है, वो बहुत अच्छी खेती करते हैं, और खेती में साथ में ऑर्गेनिक तरीके से भी करते हैं, तो उनसे मुझे बहुत सलाह मिली और एक तरह से गाइडेंस मिली। वो यंग है लेकिन उसको हमने गुरु बनाया, और तब से हमारा वो हमने मौके पे ये प्लांटेशन किए। प्लांटेशन करने के बाद में हमने ऑर्गेनिक तरीके से कैसे करते हैं उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की।
1: तो रहा सर, जो आपने जर्नी बताई, क्योंकि आपने बताया कि बैंक अधिकारी के रूप में जब आप 2019 में रिटायर्ड हुए और आपने जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ काफ़ी आपने वृक्षारोपण कर दिया, लेकिन आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि एक बैंक एम्प्लॉय को समय नहीं मिलता, तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आपने जो अपना समय का योगदान दिया, या यूँ कहें पूरी कॉलोनी को जो आपने एक बहुत अच्छा रमणीय स्थान बना दिया, तो ये समय कैसे मैनेज होता था उसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
0: समय हमारा शाम का समय रहता था, शाम को बैंक से जाने के बाद में जब पानी पिलाना है तो वो शाम के टाइम रहते थे, और दूसरा संडे हमारे पास रहता था मॉर्निंग आवर्स में, जैसे कॉलोनी वाले लोग भी आते थे, बच्चे भी आते थे, वो भी उनको भी इन्वॉल्व किया था, सफाई का भी करते थे, वो हम साथ में करते।
1: और जैसे आपने बताया, जो पूरी आपने स्टोरी बताई कि किस तरह से 2019 से आपके रिटायरमेंट के बाद, कोरोना के समय के बाद, जिस तरह से परिवार एकजुट होकर आपने जो आपका बगीचा है, जिसको हम फार्म आज डेवलप्ड फार्म है, उसके बारे में बताया, तो सबसे पहले जो आपने ये कहा कि कई कृषि वैज्ञानिकों से आपसे आपने संपर्क किया, कई लोकल लोगों से संपर्क किया कि यहाँ किस तरह की खेती होती है, तो उस समय क्या ये डिसीजन लेने की स्थिति नहीं थी, या फिर आपको ये संशय था कि हम ये काम करने से पहले इसकी सक्सेस की क्या गारंटी है, इस पर संशय था, या लोकल लोगों के अनुभव के बारे के आधार पर आप डिसीजन नहीं लेना चाहते थे?
0: नहीं, संचय तो कैसे था कि सबसे पहले जब भी ऐसा कोई काम करते हैं तो सॉइल टेस्ट और वाटर टेस्ट होता है, वो जो टेस्टिंग हुई वो टेस्टिंग में रिपोर्ट ये आई कि इस ज़मीन में कोई भी क्रॉप नहीं हो सकती, लेकिन जो लोकल लोग थे उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगाइए, देसी गोबर की खाद दीजिए, ऑर्गेनिक चीज़ें दीजिए, मेटाराइजम दीजिए, और भी जो चीज़ें वो उसमें आप डालिए, कुछ भी, हमने होद बना रखा है तो उसमें हम ऑर्गेनिक चीज़ें डाल के लिक्विड रूप में ड्रिप के माध्यम से देते हैं, तो धीरे धीरे धीरे आपकी के वो ज़मीन हो जाएगी। और फिर बगीचा क्या होता है, बगीचा अपने पत्ते नीचे गिराता है, वो पत्ते भी धीरे धीरे सड़ के खाद बनाते हैं, तो धीरे धीरे 5-7 साल में ज़मीन का इम्प्रूवमेंट हो जाता है, और वो हमें दिखा है, वो हमें दिखा।
1: आज भी जब कहा जाता है, कई जमीन ऐसे ही पड़ी है, क्योंकि जब हम सॉइल टेस्ट या सब करते हैं तब कहा जाता है कि ये उपजाऊ जमीन नहीं है और इस पर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब जो खेती कर रहा है उन किसानों से भी जब बात की जाती है या फिर ऐसे लोगों से बात की जाती है, तो वो कहते हैं कि बिना उर्वरक या बिना एक रासायनिक खाद के आज के समय में खेती करना संभव नहीं है। ऐसे समय में आपने ऑर्गेनिक को अपनाया, और ऑर्गेनिक के लिए जितने रिसोर्सेस हैं उसका मैनेजमेंट आपने कैसे किया, उसके बारे में थोड़ी आप जानकारी
0: हम
1: दें।
0: लोगों ने इसके लिए सबसे पहले तो ड्रिप मैनेजमेंट इरिगेशन का किया, जिसके माध्यम से ऑर्गेनिक चीज़ें दे लेते हैं, तो हम लोग जो देसी खाद है वो भी हम देसी खाद जो दे रहे हैं उसको बिल्कुल डिकम्पोज करके दे रहे थे, और साथ ही साथ एक एक गौ कृपा अमृतम है, अहमदाबाद एक डेयरी है जो एक आपको बैक्टीरिया देती है, उसमें 52 बैक्टीरिया देसी गाय की गोबर के होते हैं, वो लिक्विड हम वहाँ तैयार करते हैं मौके पे ही, वो 10,000 लीटर का एक होद है, टैंक है, उसमें वो लिक्विड तैयार करके उसके माध्यम से ड्रिप के माध्यम से हम छान कर देते हैं। उसके साथ भी मेंगनी की खाद है, मेंगनी की खाद का जूस हम देते हैं, आकड़ा है, अभी मौके पे जैसे अभी निम्बोली आई है, निम्बोली को पेस्ट बना के निम्बोली की कुछ हरी पत्तियाँ वो भी डाल के डिकम्पोज करके उसके जूस को भी देते हैं, तो उससे धीरे धीरे आपका सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और हमने यूरिया और डीएपी कभी यूज़ नहीं किया, कभी भी यूज़ नहीं किया, लगभग हमारा पूरा आंवला ऑर्गेनिक है वो कह सकते हैं।
1: पर्यावरण संरक्षण की आपकी इस पहल पर और भी बातें जारी रहेगी, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम है बातें मुलाकातें, और इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं गणपत सिंह जी राणावत। आप पर्यावरण प्रेमी हैं और इनसे हम, इनके अनुभव के आधार पर हम जान रहे थे कि किस तरह से आपने एक जमीन को, जिसको कह दिया गया था कि अनुपजाऊ है, और उस पर इन्होंने बहुत बड़ा बाग और बगीचा आज डेवलप कर लिया है, और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम आपने उठा रहे हैं। सर, जो आपने बताया कि आपने जब वहाँ पर पौधों का चुनाव किया, वहाँ के लोकल लोगों ने आपको कहा कि यहाँ पे आंवला लगाओ और फेंसिंग के लिए जामुन के पेड़ लगाओ, तो जो आपने सबसे पहले, आप ये भी बताया कि आपने वहाँ पर ड्रिप सिंचाई के लिए सेटअप को तैयार किया, तो जो आपने 70 बीघा जो ज़मीन, आपने बताइए किस तरह से, कितने संख्या में फेंसिंग के लिए आपने वहाँ पर जामुन लगाए हैं और कितने वहाँ पर आंवले के पेड़ लगाए हैं जो आज बड़े हो चुके हैं।
1: हमने 2019 में, ये छठवा साल चल रहा है, पूरी लैंड में लगभग 2300 पेड़ आंवले के हैं और 550 पेड़ हैं जामुन के। जामुन के पेड़ केवल फेंसिंग पे हैं, फेंसिंग के पास में लगा रखें, जो कि गर्म हवाओं को और सर्दी में कोल्ड वेव को रोक सकती है, उसके लिए लगाएं। और हमने डिस्टेंस आंवले में दिया 20x20 फिट का दिया दे रखा है, और ड्रिप के माध्यम से, हमारा इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन ड्रिप के माध्यम से देते हैं। और ऑर्गेनिक के लिए हमने एक टैंक बना रखा है 9000 लीटर का, उसमें हम कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ तैयार करते हैं और वो वापस छन करके, फिल्टर हो करके ड्रिप के माध्यम से, इरिगेशन जब भी होता है उसके माध्यम से हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और देसी खाद हम हर साल जुलाई या जन में हम उसको प्रोवाइड कर लेते हैं। इस तरह से धीरे धीरे, आज हमारी ये छठवा साल हमारा क्रॉप का है। आप आंवलों की अगर ग्रोथ देखें, जो लोग देखने के लिए, विजिट करने के लिए आते हैं, ठेकेदार भी आते हैं, आम जन भी आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि साहब ये 15 साल के पौधे लग रहे हैं, इतनी अच्छी हाइट, ये ऑर्गेनिक उनको न्यूट्रिएंट देने की वजह से ही संभव हो पाया। केवल सिंपल आप DAP या यूरिया दें तो उससे नहीं बढ़ेगा, तो इसका हमें बहुत फ़ायदा मिला। और अभी आप देखें तो वहाँ पर एक छोटा तालाब भी है, वहाँ माइग्रेटेड बर्ड रहती हैं, उस तालाब को हम 12 महीना फुल रखते हैं हमारे ओपन वेल से, उसमें जब भी गर्मी में खाली होता है तो उस टैंक को, उस तालाब को पूरा भर लेते हैं। और आप उस फार्म हाउस पे आएंगे तो आपको मोर दिखेंगे, खरगोश दिखेंगे, ढेर सारी बर्ड्स दिखेगी, और मधुमक्खियों के छत्ते अनाप शनाप दिखेंगे। मतलब आपको लगेगा कि एक ऑक्सीजन हब है, मतलब आप जैसे ही आप एंटर होंगे तो आप कैसे भी गर्मी हो, जून की कैसे भी गर्मी हो, आप पेड़ों के नीचे बैठ के पूरा दिन निकाल सकते हो। तो वो आपको एक, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे बच्चे जब भी छुट्टियों में घर आते थे, पहले कोई फॉर्म हाउस पे कई बार 10 दिन भी रहे तो विजिट भी नहीं करते थे। अब हालात ये हैं कि वो जब आएंगे तो पहले रतनबाग जाएंगे, मेरा फॉर्म हाउस का नाम रतनबाग है, पहले वो रतन

0: बाग जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे, गांव की तरफ जाएंगे। मतलब इतना उनका अट्रैक्शन है। और डेली जब भी बच्चे हैं तो डेली उनको वहाँ रतन बाग ले जाना ही ले जाना। तो ये बड़ा फर्क है, ये ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन के अंदर आप रहोगे तो अपना आप खुश हो जाओगे, और फिर पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपको बड़ा सुहाना लगता है।
1: तो राणा साहब, अगर बात की जाए जो 70 बीघा का जो रतन बाग है, और 2019 के बाद जो 2026 चल रहा है, इन 7 या 6-7 सालों में जो वहाँ पे इकोसिस्टम में जो बदलाव हुआ है, क्योंकि आपने कहा वहाँ पर पानी के लिए, इरिगेशन के लिए जो प्राकृतिक एक थोड़ा सा

0: रूप से अभी 2026 में हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर किस हिसाब से वहाँ डेंसिटी बढ़ी है, किस हिसाब से वहाँ जो वन्य जीव जो उनका संरक्षण हुआ है, और जो ऑर्गेनिक आप जो सारा खाद तैयार कर रहे हैं उसकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होती है? क्योंकि कहा जाता है एक किसान को एक खेत में डालने के लिए देसी गोबर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपके पास 70 बीघा के लिए ऑर्गेनिक खाद और न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, ये कैसे किया आपने?
1: मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब ये पेड़ लगाए थे तो ये था कि भाई इसको कैसे ऑर्गेनिक करेंगे। तो शुरू शुरू में मैंने जैसे बताया कि गोकृपा अमृतम हमने दिया, देसी खाद भी दे रहे थे। अभी हमारे पेड़ बड़े हो गए तो हम हमारे गांव की जो भेड़े हैं भेड़ों को बुलाते, दिन भर उनके लिए पानी पीने के लिए खोद बनाए हम लोगों ने, और वो भेड़े फेंसिंग के अंदर रहती तो उनको कोई खतरा भी नहीं, तो 200-250 भेड़े रहती है, तो वो भेड़े उनका मूत्र उनकी मींगनी वो ऑर्गेनिक को बढ़ावा देती है। और हम जब लगातार जब हमने लिया तो हमारे यहाँ अर्थवर्म बिल्कुल नहीं था। अभी आप देखेंगे तो ढेर सारे अर्थवर्म हो रहे हैं पेड़ों के नीचे, जैसे ही पत्ती गिरी तो वो कुछ ही दिनों में डिकम्पोज हो रही है। अर्थवर्म्स की वजह से आपका वाटर टेबल बढ़ा है, मेरे कुआं के वाटर टेबल बढ़ा, वाटर लेवल ऊपर आया। उसकी वजह ये है कि गर्मी के टाइम में अर्थवर्म बहुत गहराई पे ज़मीन के अंदर जाता है, 50-50 फीट की गहराई पे जाता है, तो एक छोटा सा बोर बना दिया जो अपन बोरवेल बोलते हैं, तो वो बोर बना दिया और ऐसे लाखों बोर वो तैयार करते हैं। जब भी पानी बरसता है तो वो पानी उस बोर के जो अर्थवर्म ने जो एक छोटा बोर बनाया उसके माध्यम से पानी नीचे जाता है और वो आपके वाटर टेबल बढ़ाता है। तो मेरे वहाँ का वाटर टेबल बढ़ा है, मेरे वहाँ पे ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती है, जितने भी कार्बन प्रोडक्ट है उनकी एक्टिविटीज़ बनी है, बढ़ी है, जीवाणुओं की वो एक्टिविटीज़। आप हाथ डालोगे तो नीचे से आपको जीवाणु मिलेंगे, तो वो ही आपको चीज़ों को अच्छा बनाता है, पेड़ों को हेल्दी बनाता है। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं रासायनिक खाद को दे दूँ, तो इस तरह से हमने इसको धीरे धीरे डेवलप किया।
0: आमतौर पर जब कभी किसी एक सामान्य किसान से उसकी फसल के बारे में बात की जाती है तो कई बार वो इस विषय को लेकर चिंतित होता है कि उसकी खेती या तो मानसून पर निर्भर होती है, कई बार उसे ये भी चिंता होती है कि जितना मैंने बोया है मुझे उतनी ही रकम नहीं मिल पा रही है, मतलब जितना उसमें भी मुझे घाटा हो रहा है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं एक आर्थिक रूप से एक अर्थ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, अच्छा खासा रुपये पैसे हमें लगाने होते हैं, तो ये सारे जो 70 बीघा का जो एक इकोसिस्टम आपने डेवलप किया, और क्योंकि वो जो तालाब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो उस इकोसिस्टम के नज़दीक है, वो आपके 70 बीघा में भी नहीं है, और वहाँ पर आप बता रहे हैं कि विभिन्न पशु पक्षी और अलग अलग चिड़ियाएँ वहाँ आके निवास कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए क्या किसी प्रकार की सरकारी सहायता या फिर कोई अनुदान या सब कुछ आपने अपने निजी रूप में ही आपने ये काम किया है?
1: इसमें फंड तो लगता है, कोई बोले कि बिना फंड के आप ऑर्चर्ड डेवलप कर लो, पॉसिबल नहीं। जैसे मुझे 5 साल रुकना पड़ा पहली क्रॉप क्रॉप के लिए, तो इतने बड़े फॉर्म को संभालने के लिए मैन पावर, आपके जो भी निराई गुड़ाई वो पूरी लगती है, ये जितने भी खाद लाओगे वो भी सारी कॉस्ट लगती है, तो उसके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता रहती है। तो इसके लिए आपके बैंक हैं जो आपको हेल्प करते हैं, बैंक के माध्यम से आप लिमिट बना के आप ले सकते हैं, और दूसरा गवर्नमेंट की भी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जो पर्याप्त मात्रा में तो नहीं कह सकते लेकिन है। जैसे फेंसिंग करोगे तो आप एक लिमिट के माध्यम से मिलेगी, जो कॉस्ट है उसका तो नहीं मिलता लेकिन मिल जाती है। आप ड्रिप इरीगेशन लगाया उसका लगभग आपको 30-40% मेरे टाइम में वो मिल गया था। मैंने जो पौधे खरीदे पौधों का लगभग 80% अनुदान गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में दिलवाया था, वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का हेल्प रहता है, लेकिन मेंटेनेंस के लिए कोई आपके पास में फंड आपको खुद को ही लगाना पड़ेगा, जो 5 साल का वेट करना है वो आपकी बैंक भी मदद करेगी और फिर आप मन लगा के करेंगे। हालांकि मैंने जब से ये शुरू किया है लेबर प्रॉब्लम बहुत तगड़ी हो रही है, तो मेरा तो कई बार सुझाव रहता है कि नरेगा जो है नरेगा को किसानों के साथ जोड़ना चाहिए कि वही लेबर गवर्नमेंट भी देवे और फला फला खेत में जाके काम करो तो एडिशनल आपको इनकम और मिलेगी, तो इस तरह से गवर्नमेंट को करे तो थोड़ा लेबर प्रॉब्लम गांव में बहुत तगड़ी हो रही है।
0: पर्यावरण संरक्षण की आपकी इस मुहिम पर और भी बातें जारी रहेगी, लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: श्रोताओं, यह है कार्यक्रम बातें मुलाकातें, और बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं गणपत सिंह जी राणावत। आप पर्यावरण प्रेमी हैं और हम इनसे हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इन्होंने 70 बीघा के क्षेत्र में एक इकोसिस्टम डेवलप किया। जब हम किसी चीज़ को शुरुआत में देखते हैं और बाद में जब हम किसी एक स्तर पर पहुँच जाते हैं तो लोग उन्हें काफ़ी रिकग्निशन मिलता है, लोग उससे प्रेरित होते हैं और कई लोग उसे, जैसे आपने बताया कि आपका जो बाग है रतन बाग, जिसे हम जिस नाम से हम जानते हैं, वहाँ पे कई लोगों ने विजिट किया। इन सब बातों से पहले क्या आपने उसके डेवलपमेंट को लेकर कृषि वैज्ञानिक या एग्रीकल्चर से जुड़े जो एक्सपर्ट हैं, जब वो आए, क्योंकि एक बार आपने 2019 में संपर्क किया था और आज 2026 है, जब वो आए तो इस स्थिति को देख के उनका क्या व्यू है?
1: मैम, आपको बताना चाहूँगा कि मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, तो हमारे कई साथी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने पहले भी सलाह दी थी, आने के पहले भी विजिट किया था और बाद में भी आते हैं, तो वो वहाँ का माहौल देख के वो सरप्राइज होते हैं कि भाई इस छोटे से पीरियड में एक बहुत सुंदर एग्रीकल्चर फॉर्म को डेवलप किया गया। उसमें जो मुझे लोगों ने जो विजिट किया, वो आसपास के क्षेत्र के, जैसे देखें तो जब मैं पहली बार लगाने लगा तो आंवले के बगीचे बहुत कम थे, और मेरे आंवले के बगीचे लगाने के बाद में लगभग नाना करके 18 से 20 हज़ार पेड़ अड़ोस पड़ोस में 50 किलोमीटर की रेडियस में लगे। तो उन्होंने, लगभग सभी लोगों ने मेरे बाग को विजिट किया है। मुझे जो अनुभव था, जो मुझे लोगों से मिला, प्लस मुझे ये करते करते जो अनुभव प्राप्त हुआ, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई वो भी मैंने उनसे साझा की, और उन्होंने

0: बहुत अच्छे तरीके से वो लोग भी कर रहे हैं, लोग मोटिवेटेड हुए। और इसमें 5 साल का इंतज़ार है, लेकिन बाद में आंवले का पौधा कैसा है कि वो 10 साल में फुल ग्रोन होता है, 8 to 10 ईयर में। तो अगर आपकी अच्छी केयर है तो 2 से 2.5 क्विंटल आंवले उसमें एक पेड़ से आपको मिल जाते हैं। और वर्तमान में 11 रुपये से लगा के 14-15 रुपये तक पर केजी ठेकेदार आपको मिल जाते हैं। मेरी सलाह ये रहती है कि लगावें बगीचा लगावें तो बड़ा बगीचा लगावें। आप 5 या 7 बीघा में लगाओ तो बड़े ठेकेदार नहीं आएंगे। अब मेरे बगीचे में लगभग गुजरात के ठेकेदार आते हैं, राजस्थान के आते हैं, यूपी के आते हैं। मुझे मार्केटिंग करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लोग अपने आप आए। और अभी मेरे एरिया में आसपास में इतने बगीचे हो गए, तो अब वो आसपास में छोटे बगीचे भी लगाए तो लगाएंगे तो वो चलेंगे। तो इस तरह की ये बात है।
1: अगर हम मॉनेटरी टर्म में इसको देखें कि एक पौधा जो लगभग 6, 7 या 10 साल में एक पूर्ण रूप से परिपक्व होता है, क्योंकि जामुन भी आपने अपने क्षेत्र में लगा रखे, और अगर हम इसको देखें कि जो लागत है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जो उसके उत्पाद है उसका सही दाम भी मिले और मार्केट तक भी पहुंचे, क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत भी है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी है और डिमांड भी है, तो आपको क्या लगता है कि अगर क्या संभावना दिखती है कि जैसे 7 साल में जो आपने ग्रोथ हासिल की है वहाँ पर, आने वाले सालों में इनका जो जीवन काल है पौधों का वो लगभग 20 से 30 या 40 वर्ष का संभवतः होगा, और कहा जाता है जामुन का तो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा सेटअप हो चुका है कि जिसे आर्थिक रूप से भी आपको एक सहयोग मिलेगा?
0: डेफिनेटली। अब इसमें क्या है कि आंवले की एज 80 ईयर के मानते, तो 80 में आप ले 10 साल कम भी कर लो तो आप अगर प्रॉपरली केयर करेंगे तो वो 70 साल तक आपको देता रहेगा। और 4th ईयर में इसकी हल्की क्रॉप शुरू हो जाती है, 8 और 9 ईयर में आपको फुल क्रॉप मिलेगी। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं कि ये आपको इनकम नहीं देगा, ये इनकम 70 साल तक देगा। जामुन का तो उम्र और भी बहुत ज़्यादा है, 150 से 200 साल की इसकी एज रहती है। तो जामुन की आजकल न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बहुत तगड़ी है, जैसी आंवले को अमृत फल भी बोलते हैं। कोरोना के बाद में इनका कंजप्शन बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहा है। जिस तरह से ठेकेदार और जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनसे बात हो रही है, तो वो कह रही है कि आने वाले टाइम में ये मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। तो ये दोनों ही क्रॉप, ये आने वाले टाइम में इनका मार्केट ख़त्म नहीं होने वाला है।
1: और आपको क्या लगता है कि जो ये बाग, जैसे आपने बताया कि आसपास भी कई 5 या 7 बीघा वाले फार्म हाउस भी अब आपको देख के आपसे प्रेरित होकर होने लगे हैं, और आपका 70 बीघा का फार्म है, तो क्या आपको सच में महसूस होता है कि जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं और इस तरह का एक सेटअप डेवलप करते हैं, तो वहाँ पर जो पूरे विश्व में बात हो रही है कि जलवायु तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के हम शिकार हो रहे हैं, तो कितना असर पड़ता है आसपास के एनवायरनमेंट पर, और ख़ास तौर से जब भीषण गर्मी होती है, तो ऐसी जगहों पर आप, क्योंकि आप बड़े शहरों में रहे हैं और अब आप अपने गांव में हैं, तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस होता है, कितना आपका ये बरसात को आकर्षित करते हैं, किस तरह का सिस्टम होता है?
0: वो देखिए, इसमें कोई डिबेट भी नहीं है। जब भी आप फसल लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, आंवला और जामुन दोनों ही ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा को विसर्जित करते हैं। आप जब भी, मैं जब भी जाता हूँ, तो आप लगाएं कि 45 डिग्री अगर बाहर टेम्परेचर है तो वो मेरे में आपको 38-40 के बीच में मिलेगा, और हवा भी ठंडी मिलेगी। मतलब वो एक आपको लगेगा कि एक हल्का फुल्का कोई कूलर चल रहा है। तो एनवायरनमेंट का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और पेड़ आपके पास है आसपास के, आप अरावली को देख लें, जंगल हैं तो बादल अट्रैक्ट होंगे, पेड़ आपने लगा रखे हैं तो पेड़ों से बादल अट्रैक्ट हो गया, और बारिश की मात्रा भी डेफिनेटली बढ़ेगी। जैसे जैसे कृषि जोत बढ़ी है, कल्टीवेशन बढ़ा है, पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई है। पहले पेड़ ज़्यादा थे तो बारिशें भी ठीक ठाक होती थी, हालाँकि 3-4 साल से बारिश ठीक हो रही है। तो पेड़ों का पर्यावरण के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, पेड़ों के बिना जीवन नहीं।
1: कई बार देखते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम में वृक्षारोपण की ओर बात की जाती है, और किसी एक सुनसान जगह पर जाकर एक फ़ोटो खींचाने तक ही वो एक वृक्षारोपण कर दिया जाता है, फ़ोटो खींच के उसकी कोई केयर नहीं करता है। लेकिन जो आपने 70 बीघे में लगभग 6,000 के आसपास आपने पौधे लगाए, और उन्हें आप पिछले विगत 7 साल से कंटिन्यू भरण पोषण और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आप जो

0: भी हमारे कार्यक्रम सुनने में श्रोताओं को क्या ये मैसेज देना चाहते हैं कि वास्तव में पर्यावरण संरक्षण का क्या मतलब है और किस तरह से हमें प्रकृति को संरक्षित करना चाहिए?
1: मेरा तो मानना है कि ये जो फोटो सेशन से जो प्लांट लगते हैं वो बस वो लग गए और उसके बाद में कोई केयर नहीं। पौधा कम से कम 3 साल, आप एक बच्चे को बड़ा करते हो तो बच्चा तो रो के भी बताएगा कि मुझे भूख लगी, पौधा रोएगा नहीं। तो उसके लिए हर तीसरे दिन आपका हाथ उसके पास लगना बहुत ज़रूरी है। शुरू शुरू में आपको केयर करना पड़ेगा, उसको पानी देना है, फर्टिलाइज़र देना है, उसको बड़ा करना है। बड़े करने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप ऐसी फ़ोटो ऐसी लगा दो तो वो नहीं होगा। जंगल, जैसे लोग कहते हैं कि जंगल, वो जंगल ही बोलता है कि आप मुझे कटाई मत करो, मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मैं अपना आप जंगल बन जाऊंगा। तो जंगल बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं, तो उसी से पर्यावरण सुधरेगा।
0: क्या आपके भी कोई भविष्य में इस तरह की योजना है? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट या फिर हर्बल उत्पाद का आजकल काफ़ी चलन है, तो क्योंकि आपके पास जामुन है, आपके पास आंवला है, तो क्या अपना कुछ ऐसा स्टार्टअप करने की आप सोच रहे हैं कि आप खुद भी कुछ प्रोड्यूस करें या फिर सिर्फ इन्हें मार्केट में बिक्री के लिए छोड़ना
1: नहीं,
0: चाहते हैं?
1: डेफिनेटली हम करेंगे, क्योंकि इससे आपकी किसान की इनकम बढ़ती है। आप अपने प्रोडक्ट के लिए, जैसे आंवले की कैंडी है या आंवले का पाउडर है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। वो आप वहाँ पे लगावें तो समझो कि जो 1 किलो आंवला आप 14 रुपये में बेचते हैं वही आपका बिकेगा 200 रुपये किलो में। आप च्यवनप्राश बनाते हैं तो हमारे कई साथी हैं, मेरे साथ के ही रिटायर हुए, उन्होंने 1-2 जनों ने लगा भी रखा है। तो डेफिनेटली हम इस पे जाएंगे, एक बार हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए तो उस पे भी हम जाएंगे।
0: तो आप थे गणपत सिंह जी राणावत और आज कार्यक्रम में आपने पर्यावरण संरक्षण और उससे जुड़े पहल पर एक महत्वपूर्ण विचार साझा किए और कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू गजेंद्र सिंह जी और सक्तावर साहब, इन्होंने मुझे बुलाया, इस में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें मुलाकातें, जिसमें आज के हमारे मेहमान थे पर्यावरण प्रेमी और पूर्व बैंक अधिकारी गणपत सिंह राणावत जी, जिनसे बात कर रहे थे गजेंद्र सिंह राठौर।

101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी। और श्रोताओं, शाम तो हो चुकी है, शाम के 6 बजे तक आज आप रहने वाले हैं मेरी यानी आपकी अपनी रेडियो दोस्त ऋचा पानेरी के साथ। और अब आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफ़र पर, साथ ही करेंगे कुछ प्यारी सी बातें और आपको सुनवाएंगे कुछ खूबसूरत फिल्मी गीत। और बातों में सबसे पहले आपको कहने जा रहे हैं एक प्यारा सा मैसेज। जब भी बात होती है पॉजिटिविटी की और मोटिवेशन की, तो कहा जाता है कि हाथों की लकीरों पर मत कर भरोसा ऐ मेरे दोस्त, हाथों की लकीरों पे मत कर भरोसा ऐ मेरे दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जी हाँ, तो आज का हमारा पहला जो मैसेज है वो है सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज यानी कि अभी थोड़े टाइम में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स दिए हैं, यानी किसी भी तरह के कोई एग्ज़ाम्स स्टूडेंट्स दे रहे हैं, चाहे वो छोटे एग्ज़ाम्स हो या हायर लेवल के एग्ज़ाम्स हों, जैसे कि अभी नीट की वापस से परीक्षा हुई है, बच्चों ने बहुत एफर्ट्स पुट इन किए हैं। पर उन बच्चों से बस यही कहना है कि नीट जिन्होंने अटैम्प्ट किया है, अपने हिस्से की मेहनत बच्चों आपने कर ली है और आपने अपना बेस्ट दिया है, बाकी आगे जो होगा वो बेस्ट ही होगा। तो पॉजिटिव बने रहिए और सुनते रहिए 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेडियो लेक सिटी।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: हम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो जी हाँ दोस्तों, सतर्कता की बात अगर कहें तो आजकल इन दिनों एक बहुत ही चीज़ है जो ध्यान में आई है, वो है WhatsApp पे आ रहा एक चालान। जी हाँ, जैसे हम लोग अवेयरनेस हमारे अंदर बढ़ जाती है और हम सतर्क रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं और यही हमारे लिए बन जाता है डिसएडवांटेज। जी हाँ, आजकल WhatsApp पे एक ऐसा चालान आ रहा है जो APK.चालान के नाम से आपके मोबाइल पे आता है और आप सोचेंगे कि मेरा कहीं ई चालान तो नहीं बन गया और इस चक्कर में लोग उसे खोल लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसे किसी भी तरह के चालान को हमें ओपन नहीं करना है, क्योंकि ये लिंक हमारे

तो दोस्तों आज की इवनिंग लोकल विंडो का सफर यहीं तक। आज आपके साथ ही मैं आपकी रेडियो दोस्त ऋचा पानेरी और आज की इवनिंग लोकल विंडो से अब दीजिए मुझे इजाजत। अब आप जुड़ेंगे आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा यानी विविध भारती मुंबई के मुंबई से। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में बजे हैं शाम के 7 और अब होगा कार्यक्रम जयमाला आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र से।

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है जिगरी दोस्त।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अनुरोध, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

धर्मवीर इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: विविध भारती पर।
1: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुनिए। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, तर्ज है कल्याण जी आनंद जी की और फिल्म का नाम है गीत।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। क्रांति, इस फिल्म का नगमा आपको सुनवाते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत रचना संतोष आनंद की, संगीत रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जय माला कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, धुन बनाई है शंकर जय किशन ने और फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिए एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है खिलौना। पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, नगमा निगार है आनंद बख्शी, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की।

0: मशहूर हो जाए।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है खिलौना।

इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से आज आपने सुने फिल्म खिलौना के कुछ नगमे विविध भारती से।

हवा महल में आज नाटिका आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं, वो आए घर में हमारे, लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक सत्येंद्र शरत।

0: चाची अब कभी खत्म भी होगा आपका ये अखबार? सुबह से कभी इस सोफे पर, कभी उस सोफे पर, कभी इस कुर्सी पर, कभी उस पलंग पर, कभी अखबार, कभी चाय, कभी सिगरेट। ओफो, मैं कहती हूँ कोई और काम भी है आपको? ये सारा दिन यूं ही सोफे तोड़ते रहेंगे? जरा हालत तो देखिए घर की, कहीं अखबार बिखरा हुआ है तो कहीं सिगरेट के टुकड़े, कहीं जूठे बर्तन है तो कहीं जूते, मैले कपड़े हैं तो सोफे पर, एस्ट्रे है तो पलंग पर, घर के कबाड़ी की दुकान बना हुआ है, आपे के कार्टून बने हुए हैं।
1: मगर तुम भी कोई अनारकली तो दिखाई नहीं दे रही रमेश की माँ। तुम्हारी सूरत देखकर तो ये भी पता नहीं चलता कि तुम इस घर की मालकिन हो या नौकरानी।
0: और इसकी वजह सिर्फ आप हैं। आप यहाँ से उठे, मुझे सफाई करने दें, मैं नहाऊं तो किसी शुमार कतार में आऊं। सच तो ये है कि आपके आलस ने मुझे आलसी बना दिया है।
1: ओ जी छोड़ो सौभाग्यवती, क्या सुबह सुबह सफाई और सुस्ती की बातें ले बैठी हो। जरा इस सोफे पर सुस्ता कर देखो, क्या आनंद आता है। जरा इस आराम कुर्सी पर बैठकर ये नॉवेल तो पढ़ो, देखो क्या मजा आता है। जरा मेरी तरह बेफिक्री से टांगे पसार कर।

0: आराम करके देखो, फिर देखो घर की सफाई जरूरी मालूम होती है या देह का सुख। ये सफाई, ये बनावट, ये सजावट तो बाहर के लिए है रानी, दूसरों को दिखाने के लिए, यानी अपने आप से धोखा।
1: धोखा?
0: हाँ, भला आदमी हर वक्त घर की सफाई संभाल में लगा रहे तो आराम किस वक्त करे है? मैं पूछता हूँ, घर आखिर होता किस लिए है? घर का सुख कहते किसे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, अब जाओ और दो कप चाय बना कर लाओ, एक मैं पीऊंगा और एक तुम पीना है।
1: अच्छा अच्छा। मगर मैं कहने जा रही थी, और नहीं तो अपने नौजवान बेटे की तो फिक्र कीजिए, तालीम खत्म करके आवारा फिर रहा है, इसके लिए कोई नौकरी कोई लड़की आखिर कब तक उसे।
0: अरे भगवान, क्यों चिंता करती हो, नौकरी आजकल मिलती नहीं और लड़की वो खुद मेरा मतलब ब्याह लाएगा।
1: क्या कह रही हो?
2: गुड मॉर्निंग डैडी।
0: ओ गुड मॉर्निंग प्रिंस ऑफ वेल्स।
2: डैडी आज बड़ा मजा आया शहर।
0: हाँ, मुझे भी,
2: मौसम बहुत अच्छा था।
0: हाँ, यहाँ भी
2: हमने पार्क में खूब दौड़ लगाई डैडी।
0: हाँ, हाँ, किसके साथ?
2: किसके साथ? हाँ, जी वो मेरा मतलब है।
0: हाँ, हाँ, हाँ, बोलो बोलो, डरो नहीं बेटे, बोलो
2: जी,
0: ना।
2: वो
0: हाँ, हाँ।
2: डैडी
0: कौन है वो?
2: डैडी बहुत अच्छी लड़की है, एक बड़े सरकारी अफसर की इकलौती बेटी है, अच्छा मकान है, नौकर है, चाकर है, और डैडी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और बहुत ही मिलनसार, आज की सोसाइटी की है इसलिए घूमने फिरने मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं समझती। और माँ धार्मिक विचारों की है।
1: अच्छा।
2: हाँ, अभी कल ही की तो बात है, हमने एक दुकान से किताबें खरीदी, मैंने बहराम डाकू नावल खरीदा और उसने जानती है क्या खरीदा?
1: क्या?
2: स्त्री सुबोधनी।
1: स्त्री सुबोधनी?
0: शाबाश बेटा शाबाश, मेरे बेटे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, देखा।
2: मगर डैडी हमारे घर और उनके घर में बड़ा फर्क है।
0: क्यों क्यों?
2: क्या बताऊं, हमारा घर तो बिल्कुल बेडअप है, मगर उनका घर सफाई और सजावट का एक नमूना है, कहीं धूल का जर्रा तक नहीं, रख रखाव ऐसा कि बस वाह देखते रह जाओ, हर चीज हर वक्त करीने से सजी हुई, हर कोना टिप टॉप। लेकिन हमारा घर,
1: ये सब तुम्हारे डैडी का कसूर है, मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिलती इनकी वजह से।
2: मगर रसोई की हालत भी तो कहने देखने लायक नहीं है माँ, वहाँ भी रखरखाव नाम को नहीं है।
0: अरे हाँ, रसोई से याद आया, मैंने कहा रमेश की माँ, वो एक कप चाय।
1: हे भगवान।
2: डैडी मैं कह रहा था कि अगर कहीं शोभा ने हमारा घर इस हालत में देख लिया तो गजब हो जाएगा डैडी, वो कभी इस घर में कदम भी ना रखेगी वो।
0: अरे देखना तो बेटा किसका फोन है।
2: देखता हूँ डैडी। हेलो, ओ शोभा, हेलो। हाँ, मैं रमेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या अभी 15 मिनट में? मगर शोभा सुनो तो, है बंद कर दिया। मम्मी डैडी,
0: क्या हुआ
2: शोभा? शोभा डैडी।
1: अरे शोभा, क्या हुआ शोभा को?
2: शोभा आ रही है हमारे घर डैडी, अभी सिर्फ 15 मिनट में।
1: तो अच्छा है, मैं अपनी होने वाली बहू को आज ही देखूं।
2: वो तो ठीक है माँ, सब ठीक है माँ, मगर जरा घर की हालत तो देखो, क्या यही नजारा दिखाओगे उसे?
1: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अजी सुनते हो, अब उठिए भी।
2: सारा घर कबाड़खाना बना हुआ है, अगर शोभा ने ऐसे देख लिया तो गजब हो जाएगा।
0: मगर वो चाल
2: डैडी, ये क्या कछुए की चाल दिखा रहे हैं, तेजी से उठिए ना प्लीज, भाग कर जाइए और शेव कीजिए। अच्छा, जी हाँ, अच्छा, शेव हाँ, कीजिए और कपड़े पहनिए।
0: हाँ, हाँ,
2: क्या अपनी होने वाली बहू के सामने यूं ही बने रहेंगे?
0: अरे तो
2: मगर मगर कुछ नहीं डैडी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे खानदान की आन और शान दिखाने का मौका है, और आप हैं कि दाढ़ी बढ़ाए बनियान पहने जैसे बिल्कुल।
0: ओफो, मगर आज तो छुट्टी है, आराम का दिन है, भला अपने घर में भी देखो।
2: बस हो गया ना भाषण डैडी, जल्दी चलिए बनिए संवरिए और मेकअप कीजिए। हाँ, और मम्मी मम्मी तुम हमारे डायलॉग क्या सुन रही हो? चलो फुर्ती से कमरा साफ करो। हाँ, रसोई सवारो और फिर अपने आप को भी दुरुस्त करो।
1: अरे हाँ हाँ, मैं तो अभी जाती
2: हूँ। ऐसे कैसे काम होगा, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। डैडी ये अपने शेविंग सेट तो लेते जाइए।
3: हाँ हाँ।
2: और मम्मी तुम चलकर रसोई संभालो, इस कमरे को मैं दुरुस्त करता हूँ, लेकिन जरा जल्दी। हाँ, ये अखबार है। हाँ, ये बर्तन, ये फूलदान, अरे जूते भी यही है। वाह वाह वाह, मैले कपड़े और ये सिगरेट के टुकड़े। हमारा घर है या किताबें, वाह वाह, सब किताबें भी यही है। चुराबे हैं ये, और ये छतरी, दिया सिलाई को भी यहाँ हो रहा है। वाह वाह डैडी, वही काला सूट पहनेगा जो मुझे पिछले साल सिलवाया था। और मम्मी तुम

0: हाँ बेटी।
1: अरे तुम तो तैयार भी हो गई। हाँ हाँ, वाह वाह मम्मी, कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ हाँ, ये हुई ना बात।
0: अरे यार तुम मेरी तारीफ छोड़ो और अपनी तैयारी करो। सुनो, अरे देखो तो कैसी लग रही हो। चलो चलो चलो चलो चलो, चलो
1: मम्मी मैं भी तैयार हो लूँ।
0: चलो।
1: मेरे बुशर्ट का बुशर्ट, हाँ मिल गई मिल गई मिल गई। लीजिए, अब कंघी गायब है, न जाने कहाँ चल। वो हो, हाँ ये भी है, मिल गई मिल गई। ओफो, ये घर है या ला ला ला। ये हुई ना बात दादी, बिल्कुल हीरो लग रहे हो।
2: हीरो के बेटे, मुझे गर्मी लग रही है।
1: बस थोड़ी देर की तो बात है डैडी। हाँ बिल्कुल थोड़ी देर की। और मम्मी, मम्मी भी कैसे चंच रही है, बिल्कुल रानी जैसी। मम्मी यहाँ आओ, यहाँ बैठो। हाँ इधर इधर इधर, हाँ इस सोफे पर। हाँ डैडी, आप इनके साथ बाएं तरफ, नहीं बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ। हाँ यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ कितनी सुंदर जोड़ी है।
2: मगर बेटा,
1: बस डैडी बस बस बस बस बस बस, हिलिए बोलिए नहीं। और ये लीजिए अखबार, ये पकड़िए, इसे यूं पकड़ के बैठिए। हाँ
2: ऐसे।
1: और मम्मी मम्मी आप यूं कीजिए कि ये स्वेटर बनिए।
0: ला मुझे दो।
1: हाँ ये लीजिए, और बस इसी पोज में, बिल्कुल
0: ठीक है।
1: हाँ हाँ, बस अब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मुस्कुराइए।
0: बिल्कुल बदला है ये तो।
1: शाबाश, वाह क्या शानदार तैयारी हुई है, घर भी नुमाइश की तरह बन समर गया है। डैडी शायद वो आ गई। आया, अभी आया। हेलो शोभा, आओ आओ अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो।
3: नहीं रमेश, मैं इस वक्त नहीं रुक सकती, एक सहेली के घर जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है। मैं दरअसल तुम्हारी ये किताब वापस करने आई थी।
1: नहीं नहीं नहीं शोभा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो अंदर आना ही होगा।
3: हाँ सॉरी रमेश, इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं आ सकती, फिर कभी सही। ओके बाय।
1: मगर मगर सुनो तो शोभा, शोभा गई डैडी, वो किताब देकर चली गई।
2: और इसने अंदर झांका तक नहीं।
1: मगर मगर वो
2: डैडी, मैंने पाउडर सुर्खी तक लगाया, पसीना पसीना होते हुए भी सूट बूट पहना, और उसने शक्ल तक नहीं दिखाई।
1: मगर मगर डैडी उसे बहुत जरूरी काम।
4: रमेश के मोह में बिल्कुल पागल हो जाऊंगा।
1: मगर डैडी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, हमारा हमारा बिगड़ा क्या है आखिर, कुछ ना कुछ संवरा ही तो है।
4: मुझे सबक देते हो, मैंने कभी जिंदगी में इतनी स्पीड से काम नहीं किया, और जिस पोज में तुमने मुझे बिठाए रखा ना, मेरा तो अंगांगा कट गया।
0: अब छोड़िए भी, जो होना था सो हो गया है, अब फिर से आराम कर लीजिए।
4: हाँ जरूर करूंगा आराम, और पहले की तरह ही खुले बदन खुले मिजाज। हाँ टांगे पसार कर और सोफा लताड़ कर। हाँ इस तरह।
1: माफ करना मम्मी, मैंने आपको नाहक परेशान किया, अब तुम भी जाकर पहले की तरह कपड़े बदल लो और डैडी के लिए चाय बना दो।
0: अच्छा बेटा।
4: ये रहा तुम्हारा सूट, यहीं पड़ा रहा है सोफे पर। वो कहाँ है मेरा मेरा अखबार, उसे भी पहले की तरह ही बखेर के रखूंगा, ऐशरे में पड़े सिगरेट के टुकड़ों को भी उसी तरह फैलाऊंगा। हाँ मुझे बिल्कुल पहले जैसा माहौल चाहिए, और रसोई से वो झूठे बर्तन भी उठा लो। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ जाओ, अब ठीक है, बिल्कुल पहली हालत घर की, और अब मैं सोफे पर टांगे पसार कर नाविल पढ़ूंगा। ये हुई ना बात अपने घर की, क्या बेफिक्री है, क्या सुख है, क्या आराम है, क्या मजा है। सच कहा है किसी ने, जो सुख चौबारे न बलख ना बुखारे।
0: ये लीजिए चाय।
4: लवेला, ये हुई ना बात।
2: मैंने कहा तुम भी बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो।
0: पहले जैसी ही लग रही हूँ।
4: अरे जरा देखना तो बेटा कौन है दरवाजे पर।
1: अच्छा डैडी। शोभा
3: है, इतना घबरा क्यों गए।
1: कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है तुम।
3: हाँ मैं, क्यों कोई एतराज है।
1: एतराज नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कोई एतराज नहीं है, मगर मगर तुम तो।
3: भाई मैं अपनी सहेली के यहाँ गई तो मालूम हुआ कि वो कहीं और गई हुई है, सो वापिस आकर तुम्हारे घर आ गई। ओहो अब ये हाथ तो हटाओ ना, मुझे अंदर आने दोगे या नहीं।
1: सॉरी।
3: नमस्ते माता जी, नमस्ते पिताजी।
1: नमस्ते नमस्ते
3: नमस्ते। अरे ये बात क्या है, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं।
1: कुछ नहीं शोभा, कोई बात भी तो नहीं। शोभा तुम्हें देर हो जाएगी।

0: फिर कभी।
1: जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पर, बहुत थक गई हूँ।
2: हाँ हाँ बेटी, यहाँ बैठो सोफे पर।
1: धन्यवाद। कितना आराम है यहाँ, कितना सुख।
2: जी
1: हाउ स्वीट, कितना प्यारा है ये घर, सचमुच बिल्कुल असली रूप का। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं?
2: शोभा, तुम्हें हमारा घर अच्छा लगा?
1: ओ रियली, घर हो तो ऐसा जहाँ बेफिक्री और आजादी ही आजादी हो। एक हमारा घर है रमेश, जहाँ हर वक्त हर चीज इस तरह बनी रखी रहती है जैसे वो घर ना हो, कोई अजायब घर हो। नौकर है कि सारा दिन सजावट में लगे रहते हैं, न मर्जी का बैठना न मर्जी का लेटना। कहीं बैठने लगो तो यहाँ ना बैठना बेटा, अभी ठीक किया है। कहीं लेटने लगो तो यहाँ नहीं शोभा जी, अभी सिलवटें दुरुस्त की हैं। अंदर जाने लगो तो अरे रे रे रे रे, इधर नहीं आना शोभा रानी, अभी सफाई की है। कुछ उठाने लगो मैली हो जाएगी। उठते बैठते सोते जागते इंचों सेंटीमीटरों का हिसाब है हमारे घर में।
0: लेकिन शोभा, घर का रख रखाव सही पहनाव अभी तो जरूरी है जिंदगी के लिए।
1: इस पोजीशन में नहीं बैठो साड़ी खराब हो जाएगी, टेढ़े ना लेटो कपड़ों की क्रीज खराब हो जाएगी। ये करोगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, वो करोगे तो डैडी बुरा मान जाएंगे। घर ना हो गया मिलिट्री ऑफिस हो गया। मगर इस घर में एक अपनापन है, एक आजादी है, सुख चैन और आराम की आजादी।
0: ये भी खूब रही, बहुत खूब, देखो तो है।

वो आए घर में हमारे, ये नाटिका अभी आपने सुनी। लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक सत्येंद्र शरद। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी, देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। लीजिए सुनिए आशा भोसले और साथियों को। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, संगीत है उत्तम सिंह का और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आइए सुने अगला गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है धड़कन।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
4: तो लेन देन
3: वो हम

0: डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है जुदाई।

0: यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं जुबीन गर्ग की आवाज में। नगमा निगार हैं सईद कादरी, म्यूजिक है प्रीतम चक्रवर्ती का और फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन लाया, कौन
2: लाया। इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काशफी नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले

0: इनमें विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिस्तेग बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल

0: पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर 94.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं उषा खन्ना और फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है मन की आंखें।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है स्वामी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है तकदीर।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में, फिल्म दो बदन से। गीत है शकील बदायूनी का, संगीत है रवि का।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमा निगार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं रवि और फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद।

कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: विविध भारती के दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म संसार के एक बेहद प्रभावशाली अभिनेता की।
1: लंदन देखा, पेरिस देखा,

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।

0: ना जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।

सन 1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं।

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थीं।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सब की तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सब की तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।
2: मस्ताना अल्लेना, सिर्फ एक तू है।

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं यह तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: आप लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपरा को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।
1: हम हैं इस पल यहां।

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं, जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं, ये बताएंगे बेटा कल तुझे।

0: अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।
1: मस्ताना अल्लेना।

0: अकेला।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमरीश पुरी पर,
2: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
3: आज के फनकार।

देखते हैं जिधर भी उधर तुम ही दिखाई देते हो ओ हमदम। ये दामन मोहब्बत का है, ये दुनिया हमारी, इसे छोड़कर कहां जाएं हम।

गुम हुए हैं नजारे, भला ये क्या है बात, तेरे काजल का असर देख, ये दिन अब हुआ है रात। नैनों का नैनों से मिलना, दिल का दिल को पुकारना, हाँ यही है वो मुलाकात।

0: जमाने के ताने जज्ब करते हैं रोज, रहते हैं कांटों के संग ये, इनकी हिमाकत को समझो, मासूम है और इसलिए बहक जाते हैं ये, इन फूलों की नजाकत को समझो।
1: कहा आपका ये बजा ही सही के हम

पायल की छन छन, बिजली की चमकन, लोच कमरिया का संभाले न संभलता है, चुनरी की ढलकन, नजरों की अटकन, जरा सोच ये दिल बहलाए न बहलता है।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वर्जदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: विकोटर मरे नहीं कॉस्मेटिक।

0: FM 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, रात के 11 बजने को है। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार।
1: मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
3: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित